0: RM2.
1: Radio Musty feels a musty.

RM2 Radio Musty in the mix. Radio Musty in the mix.

0: Radio Westy
1: in the mix.
0: Radio Westy feels a Westy
1: in the mix.
2: Papa.
3: Hi, sister. How are you, my boy? How are you? Where's your mama? What is happening here, Mitak?
4: Ji, क्या उन्हें भी आना था?
3: Of course, my son. उनको बुलाने के लिए हमने कर्नल मीर को भेजा स्पेशली. वो नहीं आएगी तो पार्टी अधूरी रह जाएगी, क्योंकि आज न सिर्फ हमारी डार्लिंग सरिका का बर्थडे है, पर मिसेस महेंद्र प्रताप के स्वागत के लिए सारे मेहमान और आर्मी के ऑफिसर्स इंतजार कर रहे हैं. वो नहीं आएगी तो केक तय करेगा, खाना नहीं मिलेगा, सिर्फ विस्की मिलेगी. चॉइस द लिमिट.
5: लेकिन जो लोग विस्की नहीं पीते जनरल, उनके लिए?
3: उनके लिए अंगूर खाएंगे वो लोग और गाना गाएंगे. God bloody good idea! I like this idea! Well, party को रंगीन बनाने के लिए करा होना चाहिए, करा! सारे officers, मेहमान, सरिका, हम सबको एक मिनट की मोहलत देते हैं. Volunteer करो अपने आप को और गाना गाओ, और नहीं गाओगे तो जनरल गाना गाना शुरू हो जाएगा.
2: नहीं नहीं नहीं पापा, आप मत कहिएगा, तो सब लोग भाग जाएंगे.
3: सब लोग भाग जाएंगे? I'm sorry, love.
2: अरे हाँ, सचिन बहुत अच्छा गाना गा.
3: अरे रिस्की पार्टी, कम ऑन एंड स्टार्ट सिंगिंग मैन, कम ऑन स्टार्ट सिंगिंग मैन. अभी पल पे तो यो
2: अंकल, लेकिन छोड़ो, बहाने मत बनाओ. कह दो ना, मेरी खातिर भी नहीं, प्लीज.

0: वेलकम टू RM2।
1: आता है मुझको प्यार में जल जाना।
2: इट्स ऑल डे लॉन्ग बॉलीवुड हिट्स म्यूजिक।
3: चेक दिस आउट।
2: रेडियो मस्ती। Radio Musti, feel the musti.
4: Nimura, nimura, nimura.
3: Check this out.
2: Radio Musti, the latest news and the greatest mix of music.

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: North, South,
2: 103.5.
1: East, West,
2: 96.4.
1: Center,
2: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music.
1: Radio Musti.
0: Feel the Musti. Feel the Musti.
3: A very good morning आप सभी को. आज शनिवार 23 मई 2026 की सुबह है और अभी आप घड़ी मिलाते चलिए ठीक 5 बज रहे हैं.
2: Chillax with Radio Musti,
0: your number one Bollywood radio station.

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है, दिन के वक्त जब ये फुहारे।
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

5:07 हो रही है और वीकेंड का सुहाना सफर शुरू हो गया है चिलैक्स ऑन रेडियो मस्ती के साथ। मैं हूँ आपकी अपनी ही रिया आपके साथ। सो

0: वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को, सुप्रभात। सैटरडे की सुबह हमें एक अलग ही सुकून होता है ना, ना जल्दी का स्ट्रेस, ना मंडे वाली टेंशन, बस हल्की सी ठंड अभी। क्यों? क्योंकि विंटर बहुत ही नज़दीक है, यहाँ विंटर आ चुका है पता नहीं है, बट सवेरे को ये ठंड महसूस होती है एंड साथ में ये शांत हवाएं और दिल को छू जाने वाले गाने। अगर आप भी अभी किचन में है, चाय बना रहे हैं, या अभी अभी उठे हैं, या अभी रवाना हो रहे हैं, यह है कि कई लोग हैं जो काम करते हैं सैटरडे संडेज के दिन, सो आपको हम आपको आज भी कहते हैं, और आप जो कुछ भी कर रहे हो या बस कंबल में लिपट कर इस सुबह को फील कर रहे हैं, सो स्टे ट्यून्ड हमारे साथ है, क्योंकि अगले ये दो घंटे बहुत ही खूबसूरत होने वाले हैं। चिलैक्स के साथ है लेकर आए हैं बहुत ही खूबसूरत दोपहर गानी आपके नाम, सो थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया और थोड़ा सा मैजिक हम जरूर क्रिएट करेंगे यहाँ पर इन गानों के जरिए। एंड यस सर, नॉट टू फॉरगेट आपके डेडिकेशन, आपके मैसेजेस ऑन 5499-1294। शुरू करते हैं, शुरू तो हमने कर दिया है लेकिन अभी इसे जारी रखेंगे एक बहुत ही खूबसूरत गाने के साथ है।
1: Chillax with Radio Masti,
2: your number one Bollywood radio station.

0: Lounge with Radio Masti.
1: 5:24 हो चुके हैं और रिलैक्स ऑन रेडियो मस्ती पर सैटरडे मॉर्निंग वाइब्स ब्यूटिफुली कंटिन्यू हो रही है। सुबह का ये समय क्या वैसे भी बहुत स्पेशल होता है, स्पेशली जब दुनिया थोड़ी शांत हो और हवा में एक सॉफ्ट सी फ्रेशनेस हो और इस मोमेंट को और भी खूबसूरत बना देती है ये एवरग्रीन मेलोडीज। कुछ गाने ऐसे होते हैं जो पहली लाइन से ही स्माइल दे देते हैं और कुछ डायरेक्टली दिल को टच कर जाते हैं। पर वीकेंड का पहला दिन हमें याद दिलाता है कि लाइफ सिर्फ काम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का नाम नहीं है। कभी कभी बस रुक कर एक गाना फील करना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। अपने लिए समय निकालना भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। तो आज का सैटरडे पॉजिटिविटी के नाम, सकारात्मकता के नाम, खुशियों के नाम और उन ब्यूटिफुल ओल्ड गानों के नाम, द फर्स्ट आवर ऑफ रिलैक्स जो हम हमेशा लेकर ही आते हैं आपके नाम। एंड आई होप आपको गाने पसंद आए। सो स्टे रिलैक्स्ड, स्टे चिलैक्स्ड और हमारे साथ यू ही आप कनेक्टेड रहिए। वी गॉट ब्यूटिफुल ट्रैक, जैसे कि ये नेक्स्ट गाना बहुत ही सूदिंग है, बहुत ही खूबसूरत है एंड राइट ऑन द स्पॉट।

0: राइट जो यहाँ पर आपके मैसेजेस की ओर बढ़ने का समय हो चुका है, बहुत सारे मैसेजेस अभी हम पहले व्हाट्सएप की ओर देखेंगे। यहाँ पर भी काफ़ी लोगों का साथ मिल रहा है और बहुत ही अच्छा लगता है जब आप इतना सारा प्यार न्योछावर करती है। सो वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को वंस अगेन। गुड मॉर्निंग प्रणाम आपको जयसन जी, आप ठीक है? सब ठीक ठाक जाए, सैटरडे बहुत ही अच्छा जाए, बस हम यही चाहते हैं। सो आपके नाम तेम्बा, जीवन, उमिरन, अंगुतिया, आकाश, शर्वन, रामदेवा, मेविन, सभी दोस्तों के नाम नेक्स्ट ट्रैक आप डेडिकेट करना चाहते हैं, अभी काम कर रही है। सो वो को आज आपको एंड अब्दुल और सारा बानू जी हमारे साथ है, कनेक्टेड है। लो जी सब बढ़िया। और यहाँ पर ऑल्सो हमारे साथ भांति रामभरो से है और आप है वाली रिफायत से एक गाने रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो हम ज़रूर चलाएंगे, एक बहुत ही प्यारा ऐसा गाना, किशोरदा का गाना चलाएंगे आपके नाम। एंड यहाँ पर आज बेटी उत्तम सुमारू का जन्मदिन है, सो हैप्पी बर्थडे टू यू उत्तम, बहुत ज़्यादा प्यार एंड गुड विशेस। एंड विश करते हैं आपको पापा सूर्यदेव, मामा माला, बेटी है शिरवानी, बेटी है दक्ष, कशिश, आपके तीन भाई हैं किशन, सुयश, शिरवन एंड हमारी ओर से भी आपको हैप्पी हैप्पी बर्थडे। जो यहाँ पर अमृता जी का साथ मिल रहा है पॉइंट साबले से, हेलो कैसी है आप, सब बढ़िया जा रहा है, सैटरडे मॉर्निंग क्यों नहीं जाएगा, इट्स अ वीकेंड, स्पेशली एक स्माइल तो बननी चाहिए ना, तो आप स्माइल करते रहिए और हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। सरोज जी हाउ आर यू, कैथो बोन से साथ निभा रही है और डेडिकेटिंग नेक्स्ट ट्रैक फॉर राजन, पूनम, मोनिका और गाने की जो सिलेक्शन है आपको बहुत ही पसंद आ रहा है, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट ट्रैक आपके नाम भी जाता है। एंड अनु है हमारे साथ वेल से विशिंग आपकी प्यारी बेटी आशना को अ वेरी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे आपको आशना, जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं और बहुत सारा प्यार कमिंग फ्रॉम पापा राजीव, आकाश, अंशु, निशा और द होल फैमिली। एंड यहाँ पर धरेश्वर जी आपकी प्यारी पत्नी सुनीता के नाम हम ज़रूर गाना डेडिकेट करेंगे, साथ में संजीव, निशा एंड द होल दाविदोस परिवार, ऑल्सो फॉर देव एंड रेखा जो इस समय कनेक्टेड है। वेल वी हैव एक और मैसेज यहाँ पर, सुया बियाड़ी हमारे साथ जुड़ी हुई है, अब है कुंगमा से और अपने पति लालदेव और पूरे परिवार के नाम एक खास गाना रिक्वेस्ट करी है। ऑलराइट चलाते हैं और एक दो मैसेजेस और रह गए जो हम थोड़ी देर में वापस जरूर लेकर आएंगे।
1: You're listening to RM2, a Radio Masti.

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Masti.
1: चलिए 6:45 बज रहे हैं और हम आपको बताएंगे कि आज का दिन कैसे कटेगा क्योंकि इट्स योर राशि टाइम. शुरू करते हैं.
2: एरीज मेष राशि.
1: आज का दिन नई शुरुआत के लिए अच्छा रहेगा. मन में उत्साह बना रहेगा और घर का माहौल भी खुशहाल रहेगा. किसी पुराने काम में सफलता मिल सकती है और परिवार के साथ समय बिताने का मौका आपको मिलेगा. लकी नंबर है आज आपका 7.
2: टॉरस वृषभ राशि.
1: आज मन थोड़ा भावुक रह सकता है लेकिन दिन अच्छा बीतेगा. काम धीरे धीरे पूरे होंगे. किसी अपने से अच्छी बात सुनने को मिल सकती है. खर्च सोच समझ कर करें. शाम का समय सुकून भरा रहेगा. लकी नंबर है आज आपका 2.
2: जेमिनी मिथुन राशि.
1: आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा. रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है. दोस्तों या परिवार से सहयोग मिलेगा. छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने से बच के रहे. दिन के अंत में मन खुश रहेगा. लकी नंबर है आज आपका 5.
2: कैंसर कर्क राशि.
1: आज घर और परिवार पर ध्यान रहेगा. मन शांत रहेगा और अच्छे विचार आएंगे. किसी पुराने दोस्त से बात हो सकती है. सेहत का थोड़ा ध्यान रखें और आराम भी कीजिए. बहुत ही जरूरी है. दिन अच्छा और संतुलित रहेगा. लेकिन नंबर है आज आपका 9.
2: लियो सिंह राशि.
1: आज आपका दिन उत्साह से भरा रहेगा. लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे. काम में तारीफ मिल सकती है और परिवार में खुशी का माहौल रहेगा. अपने मन की बात खुलकर कह सकते हैं. आज आपका लकी नंबर है 1.
2: वर्गो कन्या राशि.
1: आज का दिन सामान्य रहेगा लेकिन अच्छा रहेगा. छोटी मेहनत का भी अच्छा फल मिलेगा आपको. किसी नए काम की योजना बन सकती है. मन को शांत रख कर काम करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी आपको. शाम को अच्छी खबर मिल सकती है. लकी नंबर है आज आपका 4.
2: लिब्रा तुला राशि.
1: आज रिश्तों में मिठास बनी रहेगी. मन खुश रहेगा और दिन हल्का महसूस होगा. घर में किसी शुभ बात की चर्चा हो सकती है. पैसों के मामले में समझदारी रखें और अपने लिए भी थोड़ा समय निकालें. लकी नंबर है आज आपका 6.
2: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि.
1: आज सोच आपकी सकारात्मक रहेगी. मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है. किसी पुराने काम की चिंता दूर होगी और परिवार का साथ मिलकर और मन मजबूत रहेगा. यात्रा का योग भी बन सकता है. लकी नंबर है आज आपका 8.
2: सजिटेरियस धनु राशि.
1: आज का दिन नई उम्मीद लेकर आएगा. मन में अच्छे विचार आएंगे. काम में आगे बढ़ने का मौका भी आपको मिलेगा. किसी अपने का साथ हिम्मत आपको देगा और जल्दबाजी से बचे और धैर्य भी रखे. लकी नंबर है आज आपका 3.
2: कैप्रिकॉर्न मकर राशि.
1: आज जिम्मेदारियां बढ़ सकती है लेकिन आप उन्हें अच्छे से निभाएंगे. घर में खुशी का माहौल रहेगा. किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है. सेहत का ध्यान रखें और समय पर आराम भी कीजिए. लकी नंबर है आज आपका 10.
2: एक्वेरियस कुंभ राशि.
1: आज मन रचनात्मक रहेगा. नई बातें सीखने का मन करेगा और किसी खास व्यक्ति से अच्छी बातचीत हो सकती है. दिन भर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी और अपने काम पर ध्यान बनाए रखें. लकी नंबर है आज आपका 3.
2: पाइसेस मीन राशि.
1: आज का दिन शांति और खुशी लेकर आएगा. मन की उलझन कम होगी. परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा. कोई पुरानी इच्छा पूरी हो सकती है आपकी. भगवान का नाम लेकर दिन की शुरुआत करें. लकी नंबर है आज आपका 11.

0: फ्रेंड्स, ये थी आज की राशि आपके नाम। आई होप कि आपका दिन बहुत ही अच्छा कटे और दिन अच्छा ही कटेगा क्योंकि इट्स सैटरडे, वीकेंड का दिन है और ब्यूटीफुल गानों का साथ है रहेगा तो दिन अपने आप ही बहुत ही खूबसूरत बन जाएगा। तो चलिए, रिया की ओर से आपको शुभ दिन और शुभ शनिवार।
1: Your daily horoscope, RM2 Radio Musti. Welcome to RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
3: Hits music only.
2: Feels a musti.

0: RM2 Radio Masti.
1: Uthera meri jaan.
2: चलिए इसी गाने के साथ हम मुशर करते हैं प्यारी सी ममा मेहरबीन को अ वेरी हैप्पी बर्थडे. आप हैं प्लेंडी पापाई से और आपकी बेटी गुड़िया ने आपको विश किया है. सो गुड़िया की ओर से आपको बेस्ट विशेस, हैप्पी बर्थडे. एंड यहाँ पर पापा है साथ में, तनवीर खाला है, मामू रोशन और सभी परिवार वालों की ओर से आपको हैप्पी बर्थडे. एंड साथ में यहाँ ममा का जन्मदिन है, आज 79 इयर्स की हो गई है. विशिंग हर गुड हेल्थ एंड लॉन्ग लाइफ. हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे फ्रॉम विनीता, आनंद, अरुण, निष्ठा. और यहाँ पर आपका नाम कट गया है, बट कोई बात नहीं, हम ममा को हैप्पी हैप्पी बर्थडे.

0: समय हो चुका है संक्षिप्त समाचारों का, तो आइए इसे हम टीना के साथ सुनते हैं। नमस्कार आपको टीना।
1: नमस्कार, संक्षिप्त समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें। मॉरीशस के श्रम बाजार में सुधार देखने को मिल रहा है, ऐसा स्टैटिस्टिक्स मॉरीशस द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों से पता चलता है। वैसे साल 2025 की तीसरी तिमाही में बेरोजगारी दर घटकर 5.6% हो गई, जबकि इससे पहले ये 5.9% थी। यूनियन ऑफ बस इंडस्ट्री वर्कर्स ने इस गुरुवार फिर से एक प्रेस वार्ता के दौरान चिंता जताई और सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र की स्थिति पर सवाल उठाए। यूनियन ने सबसे पहले सड़कों पर चल रही बसों की कमी की ओर ध्यान आकर्षित किया। उनका कहना है कि इसका सीधा असर रोजगार और क्षेत्र के कर्मचारियों की कार्य परिस्थितियों पर पड़ रहा है। और यूनियन के सचिव आलन किस्नन ने यह भी अफसोस जताया कि सामूहिक समझौते पर अब तक अंतिम फैसला नहीं हो पाया है, जबकि इस पर बातचीत 2 वर्षों से अधिक समय से चल रही है। और कैबिनेट ने नोट किया कि सार्वजनिक अवकाश यानी पब्लिक हॉलीडेज 2026 की सूची में बदलाव किया जाएगा, ताकि गणेश चतुर्थी पर्व 2026 अब बुधवार 16 सितंबर 2026 की जगह मंगलवार 15

सितंबर 2026 को मनाया जाए। ये बदलाव मॉरिशस मराठी मंडली फेडरेशन के अनुरोध पर किया जा रहा है और फेडरेशन ने बताया कि पहले 15 सितंबर 2026 की तारीख गणना में हुई गलत व्याख्या के कारण प्रस्तावित की गई थी। विदेश में अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने गुरुवार को भारत को बेहतरीन साझेदार बताया और कहा कि भारत जितना ईंधन खरीदना चाहता है अमेरिका बेचने को तैयार है। अपनी पहली भारत यात्रा के बारे में उन्होंने कहा कि ये यात्रा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे उन्हें क्वाड देशों के मंत्रियों से मिलने का मौका मिलेगा। और अंत में मौसम का हाल।

0: मस्कारीन्स के दक्षिण पश्चिम में पाए जा रहे एंटीसाइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर ठंडी हवा की लहर चल रही है। साथ ही दक्षिण में पाए जा रहे सक्रिय बादल भी हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। पूर्वानुमान आज सुबह और दोपहर बाद के समय देश भर में मौसम सुहाना रहेगा, लेकिन रात्रि के समय दक्षिणी इलाकों, पूर्वी इलाकों और ऊंचे इलाकों पर रह रहकर वर्षा होगी और अन्य जगहों पर आसमान साफ रहेगा। तापमान सेंटर पातू पर न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा दक्षिण पूर्व की तरफ से 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके कुछ प्रभावित जगहों पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकती है। प्रवाह रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा और दक्षिण पश्चिम की तरफ 3 मीटर तक ऊंची लहरें भी उठेंगी। दूर समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है, खासकर पश्चिमी और दक्षिणी लगूनों में। वैसे सूर्योदय आज 6:34 पर और सूर्यास्त शाम के 5:39 पर।
1: Your weather forecast on RM2
2: Radio Musti.
0: तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। हमें आगे आ दीजिए। नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
3: Chillax with Radio Musti.
2: Your number one Bollywood radio station.

0: Chillax with Radio Musty. गुड मॉर्निंग वंस अगेन सभी को सुप्रभात। छह बजकर 11 मिनट हो रहे हैं और चिलैक्स ऑन रेडियो मस्ती का सेकंड आवर शुरू हो चुका है। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी ही रिया और सैटरडे की इस प्यारी सी सुबह में अब समय है थोड़ी सॉफ्ट और थोड़ी रोमांटिक सीजन का। इस नए आवर की शुरुआत हमने की एक बहुत ही खूबसूरत गाने के साथ है, प्यार किया तो निभाना, एक ऐसा गाना जो सीधा दिल को छू जाता है। वैसे भी वीकेंड मॉर्निंग्स पर रोमांटिक सॉन्ग्स का फील ही कुछ अलग होता है, कुछ हटके होता है। हर किसी ठंड सुकून भरी सुबह और बैकग्राउंड में प्यारी मेलोडीज, बस परफेक्ट मूड बन ही जाता है। और आज का सैटरडे थोड़ा स्लो रखिए, जल्दी किस बात की है। चाय का कप हाथ में लीजिए, अपने फेवरेट लोगों को एक स्माइल दीजिए और म्यूजिक को दिल से महसूस कीजिए, क्योंकि प्यार भरे गाने सिर्फ सुने नहीं जाते, वो दिल को हल्का और खुश कर देती है। तो हमारे साथ यूं ही चिलैक्स में आप कनेक्टेड रहिए, वी हैव गॉट ब्यूटीफुल ट्रैक्स यहाँ पर, ताकि आपकी इस ब्यूटीफुल चेहरे पर एक ब्यूटीफुल स्माइल बनी रहे। एंड आई जस्ट विश कि ये वीकेंड, ये सैटरडे बहुत ही खास जाए सभी के लिए। आप के दिन में जो कुछ है करने को, मैंने ये सोचा है वो सोचा है, आप सब कुछ पूरा कर सकें, और अगर पूरा नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, क्योंकि और भी मौके ज़रूर मिलेंगे, बट आपने कोशिश की टू फुलफिल ऑल ऑफ दैट, यही मायने रखता है। सो स्टे कनेक्टेड हमारे साथ। बात करते करते 6:13 भी हो चुके हैं, तो चलाते हैं नेक्स्ट गाना। हमारे सभी लिसनर्स के नाम बहुत सारा प्यार एंड गुड विशेस ऑन दिस ब्यूटीफुल सैटरडे मॉर्निंग, रिया की ओर से हमारे सभी लिसनर्स के नाम।
1: Chillax with Radio Musty,
2: your number one Bollywood radio station.

0: टू रेडियो मस्ती।
1: अश्विन हमारे साथ है, कनेक्टेड है एंड आप हैप्पी टू से। वैसे गाना आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सो ये गाना आपके नाम, आपके पूरे रामकरण परिवार के नाम, उदित नारायण जी और अलका याग्निक जी की आवाज़ में ये खूबसूरत गाना इस सैटरडे मॉर्निंग को और भी खूबसूरत बना रहा है। सो एंजॉय दिस वन एंड हैप्पी सैटरडे आपको।

0: समाचार। स्टैटिस्टिक्स वर्सेस के अनुसार देश में बेरोजगारी दर घटकर 5.6% हो गई है। इसे श्रम बाजार में सुधार का सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। मॉरिशस पुलिस फोर्स और न्यू मेक्सिको नेशनल गार्ड के बीच सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये साझेदारी आपदा प्रबंधन और सुरक्षा क्षेत्रों पर केंद्रित होगी। यूनियन ऑफ बस इंडस्ट्री वर्कर्स ने सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र की स्थिति पर चिंता जताई है। यूनियन ने बसों की कमी और कर्मचारियों की कार्य परिस्थितियों का मुद्दा उठाया। विदेश में अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को बेहतरीन साझेदार बताया है। उन्होंने कहा कि अमरीका भारत को उसकी जरूरत के अनुसार ईंधन उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। अरब समाचार विस्तार से। मॉरिशस के श्रम बाजार में सुधार देखने को मिल रहा है, ऐसा स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों से पता चलता है। साल 2025 की तीसरी तिमाही में बेरोजगारी दर घटकर 5.6% हो गई है, जबकि इससे पहले ये 5.9% थी। ये गिरावट कई आर्थिक क्षेत्रों में फिर से बढ़ती गतिविधियों और रोजगार के अवसरों में सुधार का संकेत देती है। कुल मिलाकर ये एक उत्साहजनक स्थिति मानी जा रही है, जो देश में रोजगार के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव को दर्शाती है। लेकिन जमीनी स्तर पर खासकर युवा डिग्री धारकों और कुछ कामगारों के लिए स्थिति उतनी आसान नहीं दिखती। कई लोगों को नौकरी पाने में कठिनाई हो रही है और कुछ को ऐसी नौकरियां मिल रही है जो उनकी पढ़ाई और योग्यता के अनुरूप नहीं है। ज़रा जानकारी अशिता रखो के साथ।
1: स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के अनुसार मॉरिशस में लगभग 5,56,400 लोग रोजगार में हैं, जबकि बेरोजगारों की संख्या लगभग 32,800 आंकी गई है। वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में बेरोजगारी दर घटकर 5.6% पर आ गई है, जो पहले 5.9% थी। अर्थशास्त्री मनीषा दुकुनी के अनुसार वास्तव में इसमें गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन जमीनी हकीकत को भी ध्यान में रखना आवश्यक है।
2: Premièrement, pour les 16 à 24 ans, le taux de chômage est beaucoup plus élevé. C'est presque
1: 16 से 24 वर्ष के बीच के उम्र वालों के लिए बेरोजगारी की दर कई अधिक है। पांच में से एक युवक के पास नौकरी नहीं। दूसरा, बेरोजगारी का प्रभाव महिलाओं पर भी।

0: ई बहुत पड़ता है, इसीलिए वैश्विक गिरावट निरंतर असमानता को दर्शाता है। हम अभी भी ऐसी स्थिति में हैं जहां युवाओं और महिलाओं का एकीकरण अभी भी कठिन है, विशेषकर ऐसी कई प्रतिभाशाली व क्वालिफाइड महिलाएं हैं जो बच्चा होने के बाद वापस नौकरी पर जा सकती थी, पर इनके लिए वापसी का रास्ता बहुत मुश्किल हो जाता है। नौकरी की तलाश, अस्थाई अनुबंध और कभी कभी योग्यता से मेल न खाने वाले रोजगार, इन सब के बीच वास्तविक स्थिति अब भी मिश्रित बनी हुई है। हालांकि रोजगार बाजार के संकेतक सुधार दर्शा रहे हैं, लेकिन स्थिर और योग्यता के अनुरूप नौकरी तक पहुंच अब भी आबादी के एक हिस्से के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।
1: रूस और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग को लेकर एक नया समझौता हुआ है। इसी के तहत रूस पुलिस और अमेरिका के न्यू मेक्सिको स्टेट नेशनल गार्ड के बीच साझेदारी को और मजबूत किया जाएगा, खासतौर पर सुरक्षा और आपात स्थिति से निपटने की तैयारी में। और अमेरिकी डेलीगेशन की मौजूदगी में SMF द्वारा कानून व्यवस्था बनाए रखने की तकनीकों का एक विशेष प्रदर्शन प्रस्तुत किया जाएगा। इस तरह मॉरिशस और अमेरिका के बीच सुरक्षा सहयोग को नई मजबूती मिली है। मॉरिशस पुलिस और अमेरिका के न्यू मेक्सिको स्टेट नेशनल गार्ड के बीच तय इस समझौते के तहत आपदा प्रबंधन, आपात स्थिति में प्रतिक्रिया और सुरक्षा प्रशिक्षण जैसे सेक्टरों में दीर्घकालिक साझेदारी कायम की गई है। ज्यादा जानकारी इस रिपोर्ट में।
2: यह अभ्यास डिजास्टर रेस्पॉन्स यूनिट के अफसरों की प्रतिभा को दर्शाता है। ये ड्रिल एक इमारत के ध्वस्त होने से संबंधित है। यह अमेरिका और मॉरिशस के बीच हस्ताक्षर किए गए समझौते में शामिल एक क्षेत्र है। ये न्यू मैक्सिको के राष्ट्रीय रक्षा दल और मॉरिशस की पुलिस फोर्स के बीच लंबे समय की साझेदारी से संबंधित हैं। मेजर जनरल मिगेल आगिला ने कहा, आपात स्थिति से निपटने और प्रशिक्षित होने के लिए आदान प्रदान का फायदा उठा पाएंगे, इस साझेदारी से एक दूसरे से सीख पाएंगे। पुलिस कमिश्नर रामप्रसाद सुरजवाली ने कहा, सुरक्षा को लेकर और साथ में क्लाइमेट चेंज की सभी स्थिति से निपटने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। उनके पास उचित साधन और उपकरण हैं, हमारी मदद करेंगे। हम सुनिश्चित करेंगे कि पुलिस और SMF के जवान भी उनकी तरह ऑपरेशंस के लिए प्रशिक्षित हों।
3: SMF ou la police aussi formée dans même capacité qu'ils vont faire pour une opération.
2: राष्ट्रों के साथ साझेदारी प्रोग्राम एक अमेरिकी सहयोग पहल है जो कि 30 सालों से स्थित है। इस संधि के बदौलत मॉरिशस इस प्रोग्राम से फायदा उठाने वाला 24वां अफ्रीकी देश बन गया है। मॉरिशस में अमेरिकी दूतावास के शौशिद आफिया ने कहा, ये प्रोग्राम कई दशकों तक चलेगा। ये दीर्घावधि की संधि है जिसका मकसद समझ बूझ, साझेदारी और दोनों देशों के बीच मित्रता को मजबूत करना है। गृह मामलों की सचिव फंगवन पुरन ने कहा, ऑपरेशन की एक योजना बनाएंगे जहां सुरक्षा और आदान प्रदान को केंद्र में रखेंगे। इस सहयोग की बदौलत मॉरिशस आपदा की स्थिति में हस्तक्षेप और तैयारी की अपनी क्षमता मजबूत कर रहा है ताकि जनता की बेहतर सुरक्षा की जा सके।
1: जी हाँ, मॉरिशस पुलिस और अमेरिका के न्यू मेक्सिको स्टेट नेशनल गार्ड के बीच साझेदारी को और मजबूत किया जा रहा है, खासतौर पर सुरक्षा और आपात स्थिति से निपटने की तैयारी में। अमेरिकी डेलीगेशन की मौजूदगी में SMF द्वारा कानून व्यवस्था बनाए रखने की तकनीकों का एक विशेष प्रदर्शन प्रस्तुत किया गया। याचना मिश्रा को सुनते हैं।
4: स्थिति तनावपूर्ण है। SMF के ये जवान एक उग्र भीड़ को शांत करने के लिए अतिरिक्त सहायता के रूप में बुलाए गए। चेतावनियों के बावजूद प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार रहे। उनका सामना करने के लिए इस विशेष इकाई के सदस्य एकजुट हुए। वे प्रदर्शनकारियों को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने के लिए समन्वित कार्रवाई अपनाते हैं। आर्मर्ड वाहनों का इस्तेमाल अंतिम विकल्प है।
5: L'SMF, c'est la lance réseau de la police en ce qui concerne le cadre contrôle. Alors, si nous ne pouvons ni en dernier.
4: SMF police ka antim vikalp hai, hum ant mein aate hain armored vahanon ke saath.

0: कुछ अभियानों में विभिन्न इकाइयों के बीच सहयोग की भी आवश्यकता होती है। कई बार बचाव दल को कठिन क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए पुलिस हेलीकॉप्टर की सहायता लेनी पड़ती है। रस्सियों के सहारे नीचे उतरने वाले इन अभियानों को अंजाम देने के लिए लगभग रोजाना प्रशिक्षण आवश्यक होता है। और जहां तक ड्रग्स के खिलाफ अभियानों का सवाल है, मोशन पुलिस का हस्तक्षेप समूह नियमित रूप से आत्सु की सहायता के लिए तैनात किया जाता है।
1: यूनियन ऑफ बस इंडस्ट्री वर्कर्स ने इस गुरुवार फिर से एक प्रेस वार्ता के दौरान चिंता जताई और सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र की स्थिति पर सवाल उठाए। यूनियन ने सबसे पहले सड़कों पर चल रही बसों की कमी की ओर ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि इसका सीधा असर रोजगार और इस क्षेत्र के कर्मचारियों की कार्य परिस्थितियों पर पड़ रहा है। यूनियन के सचिव एलन किस्टन ने यह भी अफसोस जताया कि सामूहिक समझौते पर अब तक अंतिम फैसला नहीं हो पाया है, जबकि इस पर बातचीत 2 सालों से अधिक समय से चल रही है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। यूनियन का मानना है कि इसी कारण ड्राइवरों और कंडक्टरों की कार्य परिस्थितियों में सुधार रुक गया है। वे असुरक्षा और ठोस कदमों की कमी के कारण निराशा और उत्साह की कमी का सामना कर रही है। उनको सुनते हैं।
2: Un manque d'autobus, ils tous tout mal compagnés en général. Les mauvaises causes TBS, UBS.
3: बसों की कमी पाई जा रही है, जो आमतौर पर सभी बस कंपनियों से संबंधित है। इसमें TBS, UBS, रोजिल ट्रांसपोर्ट, मॉर्शन तथा NTC भी शामिल है। यहाँ बस कंडक्टर और चालक को भरपाई करनी पड़ रही है, जहाँ लगभग हर सप्ताह ये हिंसा के शिकार हो रहे हैं। ये सामान्य बात नहीं, और ऐसे में कौन इस क्षेत्र में अपने बच्चों को नौकरी के लिए भेजना चाहेगा? कोई नहीं। कारण है सुरक्षा की कमी। जहां कौन अपने बच्चे को इस परिवहन उद्योग में काम के लिए भेजेगा, जब 7 से 8 साल बाद उसे लोकल लीव तथा सिक लीव प्राप्त होते हैं। इसलिए ये कहना गलत होगा कि हमने इस उद्योग को अपनाया नहीं है। इस तरह का बर्ताव भी अस्वीकार्य है। हमने मांग की थी कि हर 2 महीने पर स्थिति का जायजा लेने के लिए हम परिवहन मंत्री से भेंट करें, पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। इसमें क्या गलत होगा कि पुलिस हमसे भी आके पूछे कि हॉटस्पॉट, खतरों इत्यादि के जगह कौन कौन से हैं? हम सबों के बीच बातचीत जरूरी है, क्योंकि हम इस उद्योग से अन्यों की तुलना में भली भांति परिचित हैं। इससे विश्वास बढ़ेगा और इससे संबंधित आने वाले 2 नए कानून भी सराहनीय हैं।
1: और इस बैठक में मौजूद जनरल वर्कर्स फेडरेशन के अश्विन गुदाई ने भी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के बीच असमानता कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने बुजुर्गों और विद्यार्थियों के लिए मुफ्त परिवहन योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी में हो रहे कथित दुरुपयोग की भी आलोचना की। उनका कहना है कि इस व्यवस्था में बड़ी मात्रा में पैसा खर्च होने के बावजूद सड़कों पर बसों की कमी अब भी रोजाना यात्रियों को प्रभावित कर रही है। उनको सुनते हैं।
2: जब
3: हम परिवहन स्थिति को देखते हैं, तो ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि लोग बस के इंतजार में रहते हैं और कोई सुविधा उपलब्ध नहीं। ये जरूरी है कि चंद बस सर्विस कंपनियों को समय रहते उचित सावधानी बरतनी होगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहे, क्योंकि इसमें जनता का पैसा लगा हुआ है। और ये अस्वीकारनीय है कि छात्रों, कमजोर वर्ग के लोगों के लिए मुफ्त ट्रांसपोर्ट सेवा उपलब्ध कराने के लिए सब्सिडी दी जा रही है, पर फिर भी उन्हें बस स्टॉप पर छोड़े जाते हैं। कई बार बुजुर्ग लोगों, विकलांग व कमजोर तथा छात्रों को बस में नहीं लिया जाता, क्योंकि उनसे बस मालिक को पैसे नहीं प्राप्त होंगे, जबकि उन्हें पहले ही इसके लिए पैसे चुकाए जा चुके हैं।
1: और यूनियन ऑफ बस इंडस्ट्री वर्कर्स का कहना है कि

मुफ्त परिवहन को लेकर किए गए कई वादे खासकर चुनाव प्रचार के दौरान अब तक ठोस कदमों में नहीं बदले गए हैं। यूनियन ने भी अफसोस जताया कि सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र की लगातार समस्याओं पर अधिकारियों की ओर से अब तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। यूनियन ने मुर्शिद के कामगारों को बेहतर मान्यता देने की भी मांग

है कि कुछ विदेशी कर्मचारियों को स्थानीय कर्मचारियों की तुलना में अधिक सुविधाजनक परिस्थितियां मिल रही है। और कैबिनेट ने नोट किया कि सार्वजनिक अवकाश यानी पब्लिक हॉलीडेज 2026 की सूची में बदलाव किया जाएगा ताकि गणेश चतुर्थी पर्व 2026 अब बुधवार 16 सितंबर की जगह मंगलवार 15 सितंबर को मनाया जाए। ये बदलाव मॉरिशस मराठी मंडली फेडरेशन के अनुरोध पर किया जा रहा है। फेडरेशन ने बताया कि पहली 15 सितंबर की तारीख गणना में हुई गलत व्याख्या के कारण प्रस्तावित की गई थी। और सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के बीच असमानता को कम करना एक जरूरत और तत्काल आवश्यकता है, ये बात जनरल वर्कर्स फेडरेशन के अश्विन गुदाय ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने बुजुर्गों और विद्यार्थियों के लिए मुफ्त परिवहन योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी में हो रही कथित दुरुपयोग की भी आलोचना की। उनका कहना है कि इस व्यवस्था में बड़ी मात्रा में पैसा खर्च होने के बावजूद सड़कों पर बसों की कमी अब भी रोजाना यात्रियों को प्रभावित कर रही है। और विदेश में अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने गुरुवार को भारत को बेहतरीन साझेदार बताया और कहा कि भारत जितना ईंधन खरीदना चाहता है अमरीका बेचने को तैयार है। अपनी पहली भारत यात्रा के बारे में उन्होंने कहा कि ये यात्रा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे उन्हें क्वाड देशों के मंत्रियों से मिलने का मौका मिलेगा। विदेश की खबरों के बारे में मौसम का हाल सुनते हैं। मस्करेंस के दक्षिण पश्चिम में पाए जा रहे एंटीसाइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर ठंडी हवाओं का असर है, साथ ही दक्षिण में पाए जा रहे सक्रिय बादल भी हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। पूर्वानुमान आज सुबह और दोपहर बाद के समय मौसम सुहाना रहेगा। रात्रि के समय दक्षिणी इलाकों, पूर्वी इलाकों और ऊंचे इलाकों पर हल्की वर्षा होगी और अन्य जगहों पर आसमान साफ रहेगा। तापमान सेंट्रल प्लेटों पर न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा दक्षिण पूर्व की तरफ से 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी जिसके झोंके कुछ प्रभावित जगहों पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकते हैं। प्रवाह रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा और दक्षिण पश्चिम की तरफ 3 मीटर तक ऊंची लहरें भी उठेंगी। दूर समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है, खासकर पश्चिमी लगूनों में और दक्षिणी लगूनों में। सूर्योदय आज 6:34 पर हुआ और अब सूर्यास्त शाम के 5:39 पर होगा।

0: देश विदेश की खबरों के बारे में आज की प्रमुख खबरों को दोहराते हैं। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के अनुसार देश में बेरोजगारी दर घटकर 5.6% हो गई है। इसे श्रम बाजार में सुधार का सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। मॉरिशस पुलिस फोर्स और न्यू मेक्सिको नेशनल गार्ड के बीच सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये साझेदारी आपदा प्रबंधन और सुरक्षा क्षेत्रों पर केंद्रित होगी। यूनियन ऑफ बस इंडस्ट्री वर्कर्स ने सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र की स्थिति पर चिंता जताई है। यूनियन ने बसों की कमी और कर्मचारियों की कार्य परिस्थितियों का मुद्दा उठाया। विदेश में अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को बेहतरीन साझेदार बताया है। उन्होंने कहा कि अमरीका भारत को उसकी जरूरत के अनुसार ईंधन उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। देशी के साथ ये समाचार समाप्त हुए। इसे आप तक पहुंचाने में हमें कादर का साथ मिला, उन्हें धन्यवाद कहेंगे। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: Cotillon Street, Cité Madeleine. Trangbormi, Cotillon Street, Cité Madeleine, Trangbormi, Charlie Sal, 40 years old, Sri Jagdishwar Kisnarain, Sri Jagdishwar Kisnarain, जो जगदीश नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, कि मृत्यु हो गई। उनके अर्थी आज दिन के एक बजे उनके घर कुसियों स्ट्रीट सिटी मादलैन थोंगबो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही भोले की श्मशान भूमि ले जाएगी। क्रिमिशन टुडे 8:01 PM।

balonsat don't verkas to street poetry me numberunsat don't verkas to street poetry me Chan Besal ki 96 years old ki Shrimati Krishnauti Kedu Shrimati Krishnauti Kedu پیدایشی نام دیبی دویال پیدایشی نام دیبی دویال اور جو موسی کیدو نام سے زیادہ جانی جاتی تھی کہ مرتیو ہو گئی ان کی ارتھی آج دن کے دو بجے آج دن کے دو بجے ان کے گھر نمبر 59 دانت فیا کاستو سٹریٹ پورٹوی سے اٹھا کر دفنانے کے لیے لسالین کی شمشان بھومی لے جائے جائے گی فیونرل ٹوڈے ایٹ 2 پی ایم رامدو رود بونا کرمی رامدو رود بونا کرمی بان بیسال کے 92 years old کے شری دو دل منی سنکا شری دو دل من شری دو دل منی سنکا شری دو دل منی سنکا جو رامننن نام سے زیادہ جانے جاتے تھے کرمی کی ہو گئے ان کی ارتھی कल रविवार को शाम के चार बजे उनके बेटे श्री बेबी संका के घर रामदू रोड बोनाकर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोनाकर की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 4 PM एरोसलेन प्लैंडे पापाएमी एरोसलेन प्लैंडे पापाएमी 47 साल के 47 ईयर्स ओल्ड के श्री सुरेंद्र बिकारी जो अजय नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी कल रविवार को दिन के साढ़े दस बजे उनके घर एरोसलेन प्लैंडे पापाए से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लैंडे पापाए की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुमारो एट 10:30 AM Roy Road Bayash Montailong Me Roy Road Bayash Montailong Me 67 saal ki 68 years old ki Shrimati Nalini Baura Paidash naam Padarat aur jo Nalini naam se zyada jani jati thi ki mrityu ho gayi unki arthi aaj din ke 1 baje unke पति श्री सुभाष बहुरा के घर रोज बयाश मुतालोंग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए खैफ गया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुडे एट 1 PM नंबर 14 होट प्रिजों मोंगोश बुबासामी नंबर 14 होट प्रिजों मोंगोश बुबासामी 75 साल की 75 years old की कुमारी विद्यावती सीता जो प्रतिभा नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई है उनके और वो नंबर 14 तफ़ीसो मोगोश बुबासा रहने वाली है उनकी मृत्यु हो गई उनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे उनके बेटे श्री सुबे बेबी संध्रा गासन के घर नंबर 14 रोड प्रिजों मोंगोश बबासा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शेबेल की श्मशान भूमि ली जाएगी क्रिमिशन टुडे एट 11 AM पेटिट काबान रोड कौन दमास पावेमी 63 साल के 63 years old के श्री केवल भट्टू जो अनिल शुफर बुस नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थी आज दिन के साढ़े ग्यारह बजे उनके घर पचित का बंड्रो उत्कौंद मास पावे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कौंद मास की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुडे एट 11:30 AM टेम्पल रोड बोबुआ मुकामी 58 साल के 58 years old के श्री देवानन भट्टू जो पुघ्रिये नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई उनके अर्थी आज दिन के दो बजे उनके भाई श्री प्रीतम भट्टू के घर टेम्पल रोड बब्बा मुका से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिया कुंस्तांस एम्पिया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुडे एट 2 PM नंबर 22 रू इंडिपेंडेंस पोर्ट विमे 80 साल की 80 years old की श्रीमती साबित्री दालू जो अमृता नाम से ज़्यादा जानी

0: चाहती थी कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी आज दिन के एक बजे आज दिन के एक बजे उनके भतीजे श्री अश्विन दालू के घर नंबर 22 रुई इंडिपेंडेंस पोर्टवी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थोंगबो की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी क्रिमिशन टुडे आज 1 PM रोड बासन कैथोबोन में 65 साल के 65 years old के श्री अजय कुमार करमचंद जब्बू श्री अजय कुमार करमचंद जब्बू जो कुमार नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई और वे एवेन्यू कोलविल बेलरोज रहते थे की मृत्यु हो गई उनकी अर्थी वैसे वे कैथोबो नगर पालिका के पूर्व कर्मचारी भी थे उनकी अर्थी आज सपहर 3:30 बजे उनकी पत्नी श्रीमती सुचिता जब्बू के घर रोदबासन कैथोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्वामा मैल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 3:30 PM शोक में डूबे सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है
1: NBC Play, NBC Radio.tv. Chillax with Radio Masti.
2: Your number one Bollywood radio station.

एंड इसी गाने के साथ इट्स टाइम फॉर मी टू से बाय टू ऑल ऑफ यू. आशा करती हूँ कि ये म्यूजिकल सफर आपको पसंद आया. हमारी मुलाकात जल्द ही होगी, कल सवेरे होगी. तब तक यू टेक केयर, बाय बाय एंड कीप स्माइलिंग. हैप्पी सैटरडे सभी को.

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: North, South,
2: 103.5.
1: East, West,
2: 96.4.
1: Center,
2: 99.4.
0: RM2
2: Radio Musti.
0: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
1: Radio Musti.
0: Feel the Musti.
3: सुबह के 7 बजे हैं।
2: टाइमलेस तड़का
0: RM2
1: रेडियो मस्ती
2: टाइमलेस तड़का।

0: Podcast तड़का
1: RM2 Radio Mystery
2: उड़ियो ना दरियो, एक ही तो जिंदगी है। गुड मॉर्निंग, इट्स सैटरडे 23rd of May 2026 और आप जुड़ गए हैं RM2 रेडियो मस्ती के साथ अपने ही टाइमलेस तड़का में विद निर्मणि। 9 बजे तक आपको बूस्टअप देने के लिए हम यहीं पर होंगे एंड ये हाफ डे भी कट जाएगी। जो दोस्त जो भी कहां पर जा रहे हैं वो कोशिश टू यू स्टे सेफ ड्राइव सेफ एंड द म्यूजिक कंटिन्यूज
0: RM2 रेडियो मस्ती।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: कभी वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती। टाइमलेस तड़का।
1: RM2 Radio

0: Sports Magazine is brought to you by Quality Deco, the Flow Expert.
1: Sports News, latest updates.
2: Sports News.
3: Radio Musti in the mix.
4: चलिए अभी के लिए सुनते हैं latest sports updates आपसे विकास से. Good morning.
5: Good morning, Nilmani, and a very good morning to all sports fans. FIFA World Cup 2026, Vishwa Cup 2026 का final countdown उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है. आज से ठीक 19 दिन बाद 11 जून की रात मेक्सिको सिटी के ऐतिहासिक स्टेडियम द स्टाडियो अज़्टेका में मेक्सिको वर्सेस दक्षिण अफ्रीका ये होगा ओपनिंग मैच. और मेक्सिको के अलावा ये विश्व कप यूएसए और कनाडा में भी लग रहा है, तीन देशों में. और इस 48 देशों 48 कंट्रीज और उनके स्क्वाड की घोषणा जारी है. मॉरिशस का चहेता देश इंग्लैंड इस दफा पूर्ण तैयारी के साथ आया है. कोच थॉमस टुखेल ने 26 खिलाड़ियों का स्क्वाड का ऐलान कर सबके होश उड़ा दिए. न हैरी मैग्वायर है, न फिल फोडेन, न कोल पाल्मर और न ही ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड. द इंग्लैंड स्क्वाड इज अ बिग गैम्बल, किंतु कोच थॉमस टुखेल को अपने चुने 26 खिलाड़ियों पर पूरा विश्वास है. वी हैव 2600% कमिटेड प्लेयर्स, कहा थॉमस टुखेल ने. जो इस प्रकार हैं गोलकीपर्स जोर्डन पिकफोर्ड, डीन एंडरसन, जेम्स ट्राफोर्ड. डिफेंस में मार्क ग्वेही, डैन बर्न, रिस जेम्स. साथ में टिनो लिवरामेंटो, एजरी कोनसा, निको ओरेली, जारेल क्वांसा, जेड स्पेंस और जॉन स्टोन्स. मिडफील्ड में जूड बेलिंगम, एलियट एंडरसन, एबेरेची एडजे, जोर्डन एंडरसन को भी चुना गया है. कोबी माइनू फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड, डिक्लन राइस और मोगन रोजर्स. और अटैक में हैरी केन के साथ एंटोनी गॉर्डन, ओली वाटकिंस, बुकायो साका, मार्कस राशफोर्ड, नोनी माडुएके, ओली वाटकिंस और आइवान टोनी, जो 31 साल की आयु में सबसे बड़ा सरप्राइज पिक बनकर आया है. अलोंग विज जॉर्डन एंडरसन, कोबी माइनू, जेड स्पेंस, एजरी कोनसा और लिवरपूल का एक्स जारेल क्वांसा. याद रहे कि इंग्लैंड का पहला मैच 17 जून को है क्रोएशिया के विरुद्ध, फिर 23 जून की रात इंग्लैंड वर्सेस गाना और 27 जून को पनामा के खिलाफ एट द न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम. इंग्लैंड में ही रहते हैं किंतु एफए प्रीमियर लीग की बात करें, जिसका कल संडे को आखिरी सप्ताह खेला जाएगा. कल इसके आखिरी हफ्ते के मैच खेले जाएंगे और अब कोई खास सस्पेंस न रहा, खासतौर पे चैंपियन टीमों को लेकर. आर्सेनल चैंपियन बन चुका है बिना खेले ही. मैनचेस्टर सिटी, मैनचेस्टर यूनाइटेड और एस्टन विला यूरोपियन चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफिकेशन हासिल कर चुके हैं. एक पांचवा स्थान भी बचा है और शायद एक छठा भी. और ये पांचवा स्थान हर हालत में बेजान लिवरपूल के पास जाना चाहिए या जा सकता है, क्योंकि वो बोर्नमुथ से 3 अंक आगे है और 6 गोलों का अंतर भी है. लिवरपूल बोर्नमुथ से 6 गोल आगे भी है, इसलिए एडवांटेज लिवरपूल कह सकते हैं. किंतु आने स्लॉट का समय है, इसलिए जमाना खराब भी है. यूरोपा लीग स्पॉट के लिए भी जमकर लड़ाई होगी और खास तौर पे टोटेनम हॉटस्पर और वेस्ट हैम यूनाइटेड के बीच द बैटल ऑफ रिलेगेशन. लंदन की एक टीम अवश्य गिरेगी क्योंकि लंदन इज फॉलिंग. उधर बोर्नमुथ को उम्मीद करनी है कि एस्टन विला हारकर पांचवें स्थान पर रहे, ताकि छठे स्थान पर भी बोर्नमुथ यूरोपियन चैंपियंस लीग के प्लेऑफ में जा सके. ऐसा भी संभव है और ऐसा पहली बार होगा. यूरोपा लीग के लिए भी जमकर लड़ाई होगी, इसलिए इन सब के बारे में सुनते रहिए क्योंकि एक से बढ़कर एक मैच खेले जाएंगे. सो कल के मैच इस प्रकार हैं. कल मैनचेस्टर यूनाइटेड एवे जाएगी कल के आखिरी मैच

में ब्राइटन के मैदान पे कल रात 7 बजे से सभी मैच खेले जाएंगे। बर्नली वर्सेस वुल्वरहैम्पटन वांडरर्स, क्रिस्टल पैलेस का मुकाबला आर्सेनल से, द चैंपियन द गनर्स पैलेस के सिलहर्स पार्क में अपनी ट्रॉफी उठाएंगे 22 साल बाद, हार्दिक बधाई। फुलहम वर्सेस न्यूकासल यूनाइटेड, लिवरपूल एनफील्ड में होगा ब्रेंटफोर्ड के विरुद्ध, चौथा या पांचवा स्थान, अभी भी लिवरपूल चौथा स्थान हासिल कर सकता है। मैनचेस्टर सिटी वर्सेस एस्टन विला, बड़ा गर्मा गर्म मुकाबला होगा, द विलेंस को चाहिए चौथा स्थान, यूरोपा लीग वे जीत चुके हैं, उनको भी हार्दिक बधाई। नॉटिंगहम फॉरेस्ट वर्सेस बोर्नमुथ, सन्डरलैंड चेल्सी, टोटेनहम हॉटस्पर खेलेगी अपने लंदन स्टेडियम में एवर्टन के विरुद्ध, हारना मना है, बस एक अंक चाहिए टोटेनहम हॉटस्पर को। वेस्ट हैम यूनाइटेड वर्सेस लीड्स यूनाइटेड, ये भी द हैमर्स के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण मैच है, उनको भी जीत कर उम्मीद करनी है कि टोटेनहम हॉटस्पर हार जाए। सो इतना सब कुछ प्रीमियर लीग के मैचों को लेकर। पेप गार्डियोला कल मैनचेस्टर सिटी के साथ अपना आखिरी मैच खेलेगा, 10 साल की यात्रा समाप्त हुई जिसके दौरान गार्डियोला ने 17 ट्रॉफीज जीती, जिनमें 6 प्रीमियर लीग टाइटल और 1 चैंपियंस लीग ट्रॉफी भी है। अब क्लब को नई स्फूर्ति, नया जोश, नई एनर्जी चाहिए, कहा पेप गार्डियोला ने। चेल्सी का पुराना मैनेजर एवं गार्डियोला का एक्स असिस्टेंट एंजो मारिस्का इज द फ्रंट रनर टू रिप्लेस पेप गार्डियोला, और ऐसे में देखना है कि अब कौन आएगा ये लेगेसी आगे बढ़ाने के लिए मैनचेस्टर सिटी में। थैंक्स फॉर एवरीथिंग मुसाला, एक और लेजेंड जा रहा है, शायद वो कल अपना आखिरी मैच खेल भी ना पाए। ऑन स्लॉट ने इस बात की पुष्टि करने से इनकार किया कि मोहम्मद सलाह को खेलने दिया जाएगा आखिरी मैच एनफील्ड में या नहीं, क्योंकि अभी सप्ताह के दौरान मोहम्मद सलाह ने काफ़ी निंदा की थी ऑन स्लॉट को, इनडायरेक्टली उसकी टैक्टिक को लेकर, उसके स्टाइल को लेकर। मोहम्मद सलाह को चाहिए फुल मेटल जैकेट, फुल अटैक, जैसे पहले योगन क्लोप में था। सो इतना सब कुछ मोहम्मद सलाह को भी लेकर, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, इतना सब कुछ दिया लिवरपूल को। कुछ और नतीजे सुनिए, इटली के सीरिया में कल फ्योरेंटिना और अटलांटा ने मैच ड्रॉ किया 1-1। कुप दे फ्रांस में रेसिंग क्लब दे लांस ने निस को 3-1 से हराकर पहली बार के लिए कुप दे फ्रांस का खिताब हासिल किया। आज इंग्लैंड के लीग चैंपियनशिप के प्रमोशन प्लेऑफ का फाइनल खेला जाएगा बिटवीन हल सिटी एंड मिडल्सब्रो, बस एक फाइनल और कौन जाएगा प्रीमियर लीग में। स्पेन के लालीगा में आज सभी मैच खेले जाएंगे, आखिरी सप्ताह, रियल मड्रिड अपने संतियागो बेनाबेयू में होगी एथलेटिक के विरुद्ध, एफसी बार्सिलोना एवे टू वेलेंशिया, बार्सिलोना चैंपियन बन चुका है, और आज स्कॉटिश कप का फाइनल भी खेला जाएगा सेल्टिक और डनफर्मलाइन के बीच, सेल्टिक चैंपियनशिप जीत चुका है, अब स्कॉटिश कप भी आज वो जीत सकता है, जबकि जर्मनी के डीएफबी पोखल में फाइनल में बायर्न म्यूनिख का मुकाबला आज वीएफबी स्टुटगार्ट से होगा। टेनिस में कल रविवार से फ्रेंच ओपन रोलां गारोस भी शुरू हो रहा है, ऐसे में शीर्ष टॉप खिलाड़ियों ने वादे के मुताबिक अपने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस 15 मिनटों में ही रफा दफा कर दिए। ये 15 मिनट उन 15% रेवेन्यू का प्रतीक है, सिंबल है, जो इस टूर्नामेंट से उन्हें प्राइज मनी के रूप में मिल रहा है। इन खिलाड़ियों को प्राइज मनी में मिल रहे हिस्से को लेकर आपत्ति है, केवल 15%, इसलिए केवल 15 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद बस यहीं पर फुल स्टॉप। वर्ल्ड नंबर 1 अरीना साबालेंका और यानिक सिनर सहित 4 बार फ्रेंच ओपन चैंपियन इगा स्वियातेक और कोको गाउफ ने भी इस कलेक्टिव एक्शन में हिस्सा लिया, किंतु पूर्व विश्व चैंपियन नोवाक जोकोविच इस विवाद से इसलिए दूर रहा क्योंकि वो इस डिस्कशन का हिस्सा नहीं था। फॉर्मूला 1 मोटर रेसिंग चैंपियनशिप आज फिर जारी रखी जा रही है कनाडा ग्रां प्री के साथ। स्प्रिंट क्वालिफाइंग में जॉर्ज रसेल की जीत हुई, पर जनरल रैंकिंग में एंटोनेली शीर्ष स्थान पे है 100 अंक लिए, रसेल उससे 20 अंक पीछे है। और फाइनली क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉप टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 55 रनों से हरा दिया। ईशान किशन के 79 रन और टीम के कुल 255 रनों के सामने आरसीबी की पूरी टीम 200
रनों पर ही सिमट गई। ऐसे में 55 रनों से जीत हुई सनराइजर्स हैदराबाद की। अब इन दोनों टीमों के बीच केवल दो अंकों का

0: अंतर है आज इसी आईपीएल में। लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से है। तो ये थी खेल कूद संबंधी चंद जानकारियां सुबह के 7:39 आज्ञा दीजिए। नमस्कार और शुभ दिन।
1: धन्यवाद विकास जी।
2: दिस मैगजीन वॉज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी देखो द फ्लो एक्सपर्ट
3: RM2
2: रेडियो मस्ती।

0: RM2.
1: Radio Musty feels a musty.
2: And ऐसे ही पहला पहर आपके टाइमलेस तरीके का एंड करता है तो यहीं पर स्टे ट्यून क्योंकि कुछ ही देर में आप सुनने वाले हो भोजपुरी में समाचार. अभी के लिए ये गाना एंजॉय करते हैं आज के सैटरडे को ब्यूटीफुल बनाने के लिए.

0: नमस्ते भोजपुरी में समाचार सुना जा मॉरिशस के श्रम बाजार में सुधार देखे की मिलता ई स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस देने से जारी ताज़ा आंकड़ा से पता चलता साल 2025 के तीसरा तिमाही में बेरोजगारी दर घट के 5.6% हो गल बातें जबकि ये कर लिया कि 5.9% के रहर ई गिरावट कई गो आर्थिक क्षेत्र में पीनों से बढ़ रहे गतिविधि और रोजगार के मौका में सुधार के संकेत देवता कुल मिला के ये गो उत्साहजनक स्थिति मानल जाता जो देश में रोजगार के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव के दर्शावता किंतु जमीनी स्तर पर खासकर के युवा डिग्री धारक लोग के और कई को कामगार रखा दिन स्थिति उतना आसान नहीं दिखता कई को जना की नौकरी पावे में कठिनाई होता और कई को के नौकरी मिलता जो उनकर पढ़ाई और योग्यता के अनुरूप नई बातें मूसलाधार बारिश और तेज बारिश के बखत एगो राष्ट्रीय एकीकृत प्रोटोकॉल अब पूरा मॉरिशस में सरकारी और प्राइवेट दोनों क्षेत्र पर लागू करल जाए ई फैसला कल मंत्रिमंडल की बैठक में लेवल कर श्रम मंत्री रिजाउद्दीन मक की अध्यक्षता में होल कैगो अंतर मंत्रालयी बैठक के बाद तैयार करल गल ई नवा ढांचा अब सब मॉरिशन कर्मचारी और शिक्षा क्षेत्र पर बिना कोनो भेदभाव के लागू हो अब नियम स्पष्ट बातें और उस सब कर्मचारी पर लागू हो चाहे वो फुल टाइम पार्ट टाइम या शिफ्ट सिस्टम पर काम करे लंजा अब जब वाकुआ मौसम विभाग दिने से तेज बारिश की चेतावनी जारी कर जाए तो आधिकारिक निर्देश सब पर समान रूप से लागू हो खाली राष्ट्रीय संकट समिति के अधिकार रही कि वो आप आधिकारिक घोषणा से जगह के खाली करे के घरे रहे के या यात्रा पर सख्त रोक लगावे के आदेश दियन जा ये जरूरी कदम मानल जाता जेकर उद्देश्य सबके सुरक्षा सुनिश्चित करे के और उद्देश्य के आर्थिक गतिविधि के जारी रखे के बातें कैबिनेट नोट कर लग के सार्वजनिक अवकाश यानी पब्लिक हॉलीडेज 2026 के सूची में बदलाव कर जाए जमीन गणेश चतुर्थी पर्व अब बुधवार 16 सितंबर के बजाय मंगलवार 15 सितंबर की मनावल जाए ई बदलाव मॉरिशस मराठी मंडली फेडरेशन के अनुरोध पर कर गल बातें फेडरेशन बोलन की पहले 15 सितंबर 2026 की तारीख गणना में होल गलत व्याख्या खातिर प्रस्तावित करल गल रहा मॉरिशस और अमेरिका अपन सहयोग की जस्ती मजबूत करता मॉरिशस पुलिस फोर्स और न्यू मैक्सिको नेशनल गार्ड के बीच एक समझौता पर हस्ताक्षर कर गल बातें ये साझेदारी आपदा प्रबंधन सुरक्षा और आपातकालीन सहायता पर केंद्रित बातें मैदान में डिजास्टर रेस्पॉन्स यूनिट के अधिकारी एगो अभ्यास में हिस्सा ले लंजा जिकर में एगो इमारत के गिरे नियन स्थिति बनावल कर रहा जिकर बखत वो आपातकालीन हालात में अपन कार्रवाई की क्षमता के प्रदर्शन कर लंजा विदेश में अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत के बेहतरीन साझेदार बतैलन और बोलन कि भारत जितना ईंधन खरीदे खोजता अमरीका बेचे के तैयार बातें अपन पहल का भारत यात्रा के बारे में वो बोलन कि ई यात्रा उनका क्वाद देश के मंत्री से मिले के मौका देवता तो ये रहल भोजपुरी में समाचार आप लोग के ध्यान का चिन्ह धन्यवाद
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: 8:08 हो चला है, चली जानते हैं मौसम का हाल।
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
4: 103.5.
3: East, West,
4: 96.4.
3: Center,
4: 99.4.
5: RM2
4: Radio Musti.
5: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Musti.
5: Feel the Musti.
0: 8:09 ho chala hai.
6: It's the weather broadcast with winners.
7: On est tous winners.
8: मस्कारीन्स के दक्षिण पश्चिम में पाए जा रहे एंटीसाइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर ठंडी हवा की लहर चल रही है। साथ ही दक्षिण में पाए जा रहे सक्रिय बादल भी हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। पूर्वानुमान आज सुबह और दोपहर बाद के समय देश भर में मौसम सुहाना रहेगा।

0: रहेगा लेकिन रात्रि के समय दक्षिणी इलाकों पूर्वी इलाकों और ऊंचे इलाकों पर रह रहकर वर्षा होगी और अन्य जगहों पर आसमान साफ रहेगा। तापमान सेंटर पातू पर न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा दक्षिण पूर्व की तरफ से 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी जिसके झोंके कुछ प्रभावित जगहों पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकती है। प्रवाह रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा और दक्षिण पश्चिम की तरफ 3 मीटर तक ऊंची लहरें भी उठेंगी। दूर समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है खासकर पश्चिमी और दक्षिणी लगूनों में। वैसे सूर्योदय आज 6:34 पर और सूर्यास्त शाम के 5:39 पर।
1: Your weather forecast on RM2.
2: Radio Musti.
3: Cette fête des mères, faites plaisir sans vous compliquer la vie. Du 22 mai au 7 juin, Winners célèbre nos héros de tous les jours. Beauté, gourmandise, maison, accessoires, petites attentions, retrouvez les meilleures idées pour tous les budgets à prix Winners. Passez en magasin et trouvez le cadeau parfait pour dire merci à nos héros. Les tasses maman et papa à 149,95 € et le coffret déodorant et eau toilette Ulrich de Varence à 459,95 €. Pas oublier, ex-can to pay, gagne plus points Weave. À tous les mamans et papa, merci.
4: On est tous winners!
1: Timeless Tarka.
2: RM2.
5: Radio Musti.
1: Timeless Tarka.

0: is Tadka.
1: RM2 Radio Masti.
2: कहते हैं बहती हवा की तरह बनो, बस फ्लो करते जाओ, हर लम्हे को खुल के जीने का मौका सबके पास होता है। आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे ये आप पर निर्भर है। तो स्वागत करते हैं आपका फिर से सेकेंड आवर आपके ही टाइमलेस तड़का में, एंड आई होप कि आपका सैटरडे आपकी तरह खूबसूरत हो। तो यही बड़ा रमचू रेडियो मस्ती पर स्टे ट्यून, क्योंकि आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहीं पर आप इन्जॉय कीजिए और बनाते हैं इस सैटरडे को द बेस्ट।
1: Welcome to RM2 Radio Musti.
3: Radio Musti.
4: Hits, music only.
3: Feels a musti.

0: Express तड़का
1: RM2 Radio Masti।
2: हल तो हमेशा होता है यार, किसी भी प्रॉब्लम का समाधान आपके अंदर ही होता है। अगर आज रॉन्ग साइड ऑफ द बेड से उठे हो, इसका ये मतलब नहीं कि पूरा दिन वेस्टेड जाएगा। अपने आप को ग्राउंड करो, डू सम ग्राउंडिंग वर्क, ब्रीद इन ब्रीद आउट। आरएम जो वीडियो मस्ती यही पर है टू मेक यू फील बेटर, तो स्माइल कीजिए और नेक्स्ट गाने की ओर बढ़ते हैं।
0: RM2 रेडियो मस्ती।

0: टाइमलेस तड़का।
1: RM2 Radio

0: Express Tadka.
1: RM2 Radio Musti.
2: And yes, it's 8:38 on RM2 Radio Musti. Timeless Tadka का सिलसिला जारी है. And yes, आपके प्यारे प्यारे messages हमें मिल चुके हैं. कुछ ही देर में उन्हें पढ़ने वाले हैं. तो अगर आपके कोई dedications है, 54991294 पर do send us. हम यहीं पर हैं आपका message पहुंचाने के लिए.
3: Avant le défi, de long shift. Commence par une bonne décision. Nescafé.
2: जिंदगी में हमेशा पूरी स्टेयरकेस दिखनी जरूरी नहीं होती है. कभी कभी बस पहला स्टेप, पहला कदम लेना ही सबसे बड़ी जीत होती है. It's day one, oh one day, up to you.
3: Avant le défi, de long shift. Commence par une bonne décision. Nescafé.
0: RM2
1: Radio Musti.

0: SBS तड़का
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: मस्त समय है। 8:45 ऑन RM2 रेडियो मस्ती और आपके मैसेजेस पढ़ लेते हैं। अभी आप है, नाम नहीं लिखा लेकिन मैसेज तो है, आप कह रही है प्लीज प्ले सॉन्ग दिल को करार आया फ्रॉम सिंगर नेहा कक्कर आपकी लव स्वीट हार्ट अनुषा के लिए। एंड यू हैव श्वेता हुकुम जी बोना कर से डेडिकेट कर रहे हैं नेक्स्ट गाना उनके हबी रोशन के लिए और आप उन्हें बताना चाहते हैं कि आप उन्हें कितना प्यार करते हैं और आप सभी को विश कर रहे हैं ए ग्रेट सैटरडे। एंड वी हैव ऋषभ जो आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं, विशेज फ्रॉम दीदी जानवी, चाची आशा, चाचा अरविंद, अर्नेस्ट फ्लोरेंस से। एंड वी हैव कुमार दाबीजन जी एज यूजुअल जो एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम को और बजा रहे अपना गिटार फुल वॉल्यूम में, तो आपको कहेंगे हैव अ नाइस डे वर लिसनिंग टू RM2 वेरी मस्ती। ऐसे ही स्टे ट्यून्ड टू अस क्योंकि नेक्स्ट ऐप के लिए अमेजिंग गानों के बरसात लेकर आ रहे हैं। एंड द म्यूजिक कंटिन्यूज ऑन RM2 वेरी मस्ती।
0: Timeless Tadka
1: RM2
3: Radio Masti
0: Timeless Tadka

0: 48 teams, 104 matches. रेडियो मस्ती की टीम के साथ चलिए यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मेक्सिको।
1: रेडियो मस्ती के साथ रोड टू द वर्ल्ड कप। धीरे धीरे ही सही, लेकिन हम बढ़ रहे हैं वर्ल्ड कप के नजदीक। तो चलिए जानते हैं सम लेटेस्ट अपडेट्स अरविंद जी से।
2: रोड टू वर्ल्ड कप 2026, चलो वर्ल्ड कप की ओर। आज ग्रुप के की बारी है, इसमें है पोर्टुगल, कोलंबिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कोंगो,

0: और उज्बेकिस्तान. मिक्स ऑफ यूरोपियन पावर हाउस टैलेंट, साउथ अमेरिकन रेजिलियंस, हिस्टोरिक अफ्रीकन रिटर्न एंड एन एशियन डेब्यूटेंट. पोर्टुगल के लिए 9th वर्ल्ड कप अपियरेंस. कतर 2022 में क्वार्टर फाइनल तक आ पाई थी क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम. 2025 का यूएफए नेशंस लीग चैंपियन, जिसमें CR7 41 साल का खिलाड़ी, ऑल टाइम मेंस इंटरनेशनल गोल स्कोरिंग लीडर, फिर से इतिहास रच रहा है अपने छठे 6 वर्ल्ड कप में भाग लेके. इस टीम में रोनाल्डो के साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड का कप्तान ब्रूनो फर्नांडेस भी हैं. साथ में हैं रूबेन डियास, योआओ कांसेलो, जोगो दालो, नूनो मेंडेस, मैथ्यूस नूनेज, बर्नार्डो सिल्वा, वितिन्हा, योआओ नेवेज, रूबेन नेवेज, राफाएल लियाओ, योआओ फेलिक्स, गोंजालो रामोस, पेड्रो नेटो. ये सब नाम सुनकर लगता है पोर्टुगल वर्ल्ड कप जीतने के लिए फेवरेट टीमों में से एक है. कोलंबिया 2024 में कोपा इटालिया फाइनलिस्ट, कप्तान है रामेस रोड्रिगेज, साथ में स्कोरिंग मशीन लुइस जाज. कोलंबिया के लिए ये 7th वर्ल्ड कप पार्टिसिपेशन है. कतर 2022 में नहीं थी कोलंबिया की टीम. जाज के साथ है योन जुगान, योन कोडोबा और जेफरसन लेहना. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो कोच है फ्रांस का सेबास्टियन दे साब्र. ले लेओपा दूसरी बार के लिए वर्ल्ड कप में आए हैं, मतलब आफ्टर 52 ईयर्स. क्वालिफिकेशन में अपने ग्रुप में सेकंड पोजीशन, प्ले ऑफ राउंड में कमरून और नाइजीरिया को एलिमिनेट किया, फिर जमैका को. न्यूकासल यूनाइटेड का योवान विसा, रियल बेटिस का सेड्रिक बाकुम्बो, वेस्ट हैम यूनाइटेड से आरोन वान बिसाका, बर्नी से अक्सेल चुआनजेबे आदि नामी खिलाड़ी हैं इस टीम में. एंड फाइनली उज्बेकिस्तान, पहला वर्ल्ड कप पार्टिसिपेशन. कोच हैं फाबियो कनाबारो, द व्हाइट वुल्व्स सिटी का कुसानोव इस टीम में है. सो दैट वॉज ग्रुप के. चलो वर्ल्ड कप की ओर.
1: फीफा वर्ल्ड कप 2026 11 जून से 19 जुलाई. कैच ऑल द न्यूज, व्यूज, प्रीव्यूज एंड लेटेस्ट

And yes, इसी के साथ टाइम हो चला है फॉर मी टू गो एंड फॉर मनीषमा टू से हाय. तो नेक्स्ट आने वाली है बॉलीवुड ब्रंच के साथ मनीषमा. तो यही पर स्टे ट्यून्ड ऑन आरएम2 रेडियो मस्ती एंड कीप वाइबिंग.

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: North, South,
2: 103.5.
1: East, West,
2: 96.4.
1: Center,
2: 99.4.
0: RM2
2: Radio Musti.
0: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
1: Radio Musti.
0: Feel the Musti.
3: टाइम चेक सुबह के 9 बजे हैं।

0: शुभ समाचारों के साथ स्टूडियो में उपस्थित हो चुकी है टीना। नमस्कार टीना।
1: नमस्कार। संक्षिप्त समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें। मॉरिशस के श्रम बाजार में सुधार देखने को मिल रहा है, ऐसा स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों से पता चलता है। साल 2025 की तीसरी तिमाही में बेरोजगारी दर घटकर 5.6% हो गई है, जबकि इससे पहले ये 5.9% थी। ये गिरावट कई आर्थिक क्षेत्रों में फिर से बढ़ती गतिविधियों और रोजगार के अवसरों में सुधार का संकेत देती है। मॉरिशस और अमेरिका ने अपने सहयोग को और मजबूत करते हुए मॉरिशस पुलिस फोर्स और न्यू मैक्सिको नेशनल गार्ड के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये साझेदारी आपदा प्रबंधन, सुरक्षा और आपातकालीन सहायता पर केंद्रित है। मैदान में डिजास्टर रेस्पॉन्स यूनिट के अधिकारियों ने एक अभ्यास में हिस्सा लिया, जिसमें एक इमारत गिरने जैसी स्थिति बनाई गई थी। इस दौरान उन्होंने आपातकालीन हालात में अपनी कार्रवाई की क्षमता का प्रदर्शन किया। सरकार अब खराब मौसम की स्थिति से निपटने के लिए एक ही रणनीति अपना रही है। मूसलाधार बारिश और तेज वर्षा के समय के लिए एक राष्ट्रीय एकीकृत प्रोटोकॉल अब पूरे मॉरिशस में सरकारी और प्राइवेट दोनों क्षेत्रों पर लागू किया गया है। ये फैसला कल हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। श्रम मंत्री रिजा उद्दीन की अध्यक्षता में हुई कई अंतर मंत्रालयी बैठकों के बाद तैयार किया गया ये नया ढांचा अब सभी मॉरिशस कर्मचारियों और शिक्षा जगत पर बिना किसी भेदभाव के लागू होगा। अब नियम स्पष्ट है और सभी कर्मचारियों पर लागू होगा, चाहे वे फुल टाइम, पार्ट टाइम या शिफ्ट में काम करते हों। कैबिनेट ने यह भी नोट किया कि सार्वजनिक अवकाश यानी पब्लिक हॉलीडे 2026 की सूची में बदलाव किया जाएगा, ताकि गणेश चतुर्थी पर्व अब बुधवार 16 सितंबर की जगह मंगलवार 15 सितंबर को मनाया जाए। ये बदलाव मॉरिशस मराठी मंडली फेडरेशन के अनुरोध पर किया जा रहा है। फेडरेशन ने बताया कि पहले 15 सितंबर की तारीख गणना में हुई गलत व्याख्या के कारण प्रस्तावित की गई थी। और 9 बजे के इन समाचारों के बाद आज के चर्चा कार्यक्रम में आज ड्रग से जुड़ी समस्याओं पर बात की जाएगी। किरण जानकी के मेहमान होंगे डॉक्टर नीतीश संत, कोऑर्डिनेटर ट्रीटमेंट एंड रिहैबिलिटेशन नेशनल एजेंसी फॉर ड्रग कंट्रोल से। तो जरूर सुनिए रेडियो मॉरिशस पर आज की चर्चा कार्यक्रम। और विदेश में ईरान और ओमान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों से सेवा शुल्क वसूलने की योजना पर बातचीत कर रहे हैं। अमेरिका ने इस कदम का कड़ा विरोध किया है और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए, हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: Body Branch RM2 Radio Must See.

0: वैसे आपके दिल की बात और आप हमारी दिल में बस सबसे पहले आते हैं। 9:09 हुए हैं। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? आई होप कि आज का दिन आपके लिए शुभ हो, आज का दिन आपके लिए सही हो एंड आई गेट द बेस्ट ऑफ सॉन्ग सिलेक्शन। वैसे मैं तो 9 से लेकर 12 बजे तक यही रहूंगी, लेकिन ऑफिशियली मैं ना ऑन एयर बस एक ही घंटे काम कर पाऊंगी। बाद में हम आपको ले चलेंगे स्टूडियो के बाहर, मिलवाते हैंगे आपसे विद वेदिता। सभी के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ यहाँ पर और RM2 रेडियो मस्ती। आज मनीषमा आपके साथ, आपकी सगी, आपके दोस्त, सभी के लिए लेते एक छोटा सा ब्रेक, देन बनो तेरा साइकिल लागे सेक्सी। टाइम टू वेक अप, टाइम टू हैव अ वंडरफुल डे। हियर वी गो, गेट रेडी।
1: RM2 रेडियो मस्ती। Join the RM2 team this Saturday, 23rd of May, for an open day at SBM Flak. RM2 will be live from 10 a.m. to noon. Come and discover SBM's special offer.

0: to
1: Radio Musti.
0: Celebrate Mother's Day with Fabulous Trend. Come and visit us on the 30th of May for a special Mother's Day promo of 30% discount on all items with surprises and gifts for everyone. Any amount you spend on that day, we will offer you same amount of other products as gift. A buffet will be served to everyone present. Fabulous Trend, Nouvelle France. Open us from 9 a.m. till midnight. See you there. RM2
1: Radio Musti.
2: कुछ अमेजिंग गानों के साथ चल पड़े हैं आपका साथ निभाने के लिए यहाँ पर और हम टू रेडियो मस्ती एंड ऑफ कोर्स मस्ती के साथ गुड मॉर्निंग भी कहना चाहते हैं टू ऑल दोस लेट वेकर्स. जिंदगी जियो और ये हसीन जिंदगी है साथ निभाने के लिए यहाँ पर चाय कॉफी मम्मी पापा के साथ कुछ काम कर लो आज तो कुछ खास बना दो. सैटरडे का दिन है सुबह का टाइम है 9:20 हुए हैं.

Story Brunch RM2 Radio Masti. Tell you, waiting for your messages and dedications on 549 and 1294 पर amazing morning is out to you. वैसे खरीदारी कर रहे हैं कुछ लोग, तो मैसेज कर रहे हैं कि यार अभी तो हम ड्राइव कर रहे हैं, वैसे ब्रेकफास्ट के बाद अभी have to do some shopping. So all the best goes out to you. Have a wonderful

0: Family Brunch
1: RM2 Radio Masti.
2: And here we go for your messages, ladies and gentlemen. Yeah, but hi, can you please play beautiful and lovely song for my lovely brother-in-law Kunal, who is celebrating his birthday today, and wishing you beautiful, beautiful life ahead and lots of blessing from lovely sister-in-law Varuna and lovely brother-in-law bhi hai saath mein. Hello, Benita, Mohan, Afon, Jisak. Aaj meri maa ka जन्मदिन है. मेरी माँ का नाम है सुमन कासू ऑफ बोनाकेरी एंड डेडिकेशन गोज आउट टू ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड प्लीज प्ले ब्यूटीफुल माँ का सॉन्ग फॉर हर. ओके जी, वैसे अगर देखा जाए तो मदर्स डे कमिंग, सो कल हम चला देंगे आपके लिए. और ऑफकोर्स एंड नॉट कल, लेकिन जब भी हमारे जो टाइम मिलेगा आज भी हम चला पाएंगे ये गाना. एंड बिकॉज यू नो द थीम ऑफ मदर्स डे हैज ऑलरेडी रीच RM2 रेडियो मस्त, आप तो जानते ही है. गुड मॉर्निंग, I want to dedicate a beautiful song for Murvashi Mans. Today is my birthday, and to all Sukhi family, Mans family, Pito se aur Pichit Ravya se saath nibha rahe hai. Hello, God bless you. Have a wonderful day ahead. Good morning, team. Radio Masti, how are you? Next song is out to Abdul and Saida Manu. Good morning, Didi. How are you? Yale Sham of Suriname. Aboard two movies. Ishkda Chehra. Okay, ji, I will try to play the song for you, lekin right after this one.
0: Body Brunch
1: RM2 Radio Masti.

0: की बात ना छोड़ो यार, ये बात छोड़ ही दो, यहाँ पर आगे थी सम रियली रियली नाइस खबर आपके साथ शेयर करने के लिए. सो आगे थी हवा हॉरोस्कोप ऑफ द डे, बी रेडी.
1: योर डेली हॉरोस्कोप RM2 रेडियो मस्ती.
0: 9:38 हुए हैं, आप जुड़े हैं RM2 रेडियो मस्ती के साथ. आज है सैटरडे 23rd of May 2026. तो आज का राशिफल शुरुआत करते हैं विद एरीज.
2: एरीज मेष राशि,
0: आज आपकी इनर्जी लेवल फुल ऑन रहेगी. जो काम काफी टाइम से पेंडिंग था उसमें प्रोग्रेस मिलेगी आपको. बस गुस्से पर थोड़ा सा काबू कीजिएगा. जी हाँ, कंट्रोल और नियंत्रण, बॉस ये सही बात होती है. लव लाइफ में स्वीट सरप्राइजेस पॉसिबल है.
2: टॉरस ऋषभ राशि,
0: आज कंफर्ट और पीस दोनों मिल सकते हैं आपको. फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मूड भी बना रहेगा. फाइनेंशियल मैटर्स में स्मार्ट डिसीजन लेना ये बेनिफिशियल होगा, ये आपके लिए बेहतर होगा.
2: जेमिनी मिथुन राशि,
0: कम्युनिकेशन आज आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहेगा. न्यू पीपल से, नए लोगों से मिलने का और जुलने का ये जो चांस मिल सकते हैं आपको, दिल की बात क्लियरली बोलिएगा. मिसअंडरस्टैंडिंग्स अपने आप ही दूर हो जाएगी.
2: कैंसर कर्क राशि,
0: इमोशंस थोड़े अप एंड डाउन हो सकते हैं लेकिन इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग रहेगी. ये तो आप जानते हैं, ये तो है आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट. किसी क्लोज इंसान का सपोर्ट मिल सकता है जो पॉजिटिव फील करवाएगा आपको. सेल्फ केयर पर फोकस करें.
2: लियो सिंह राशि,
0: स्पॉटलाइट आज आपके नाम रहेगी. कॉन्फिडेंस हाई रहेगा और लोग आपकी बातों को नोटिस करने वाले हैं. करियर रिलेटेड गुड न्यूज भी मिल सकती है आपको आज या कल.
2: वर्गो कन्या राशि,
0: आज प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन से काफी काम स्मूथली हो जाएगा. हेल्थ और रूटीन पर ध्यान दीजिएगा, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. स्मॉल छोटे छोटे एफर्ट्स और बड़े बड़े

0: रिजल्ट्स ले आ जाएंगे।
1: लिब्रा तुला राशि,
0: बैलेंस मेंटेन करना आज बहुत ही ज्यादा जरूरी रहेगा। रिलेशनशिप्स मैटर्स में ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी है। क्रिएटिव आइडियाज आपको अप्रिसिएशन दिलाएगा।
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि,
0: आज आपका डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। किसी हिडन अपॉर्चुनिटी का फायदा मिल सकता है आपको। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, ओके, और दे विल गाइड यू द राइट पाथ।
1: सजिटेरियस धनुराशि,
0: ट्रैवल या आउटिंग का मूड बन सकता है, सो कुछ प्लान कीजिएगा। पॉजिटिव वाइब्स और एडवेंचरस एनर्जी आपको हैप्पी रखेगी। आज ओवरथिंकिंग अवॉइड ही करें।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
0: हार्डवर्क का रिजल्ट धीरे धीरे नजर आएगा आपको। पेशेंस, धैर्य रखिएगा, सक्सेस काफी करीब है। फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए आज अच्छा दिन है।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि,
0: नए आइडियाज और फ्रेश थिंकिंग आज आपको अलग शाइन करेगी। यस, ये आपके चेहरे पर निखर आ जाएगा। और फ्रेंड्स का साथ फन कन्वर्सेशन पॉसिबल हो सकती है। दिल और दिमाग दोनों को बैलेंस रखिएगा।
1: पाइसेस मीन राशि,
0: और लास्ट हमारे पाइसेस लोगों के लिए आज क्रिएटिविटी और इमोशंस दोनों स्ट्रॉन्ग रहने वाले हैं। म्यूजिक, आर्ट या स्पिरिचुअल एक्टिविटीज आपको पीस देंगे। जी हाँ, अगर आप नेचर में भी आप टहलना चाहते हैं तो आप जाइएगा बेशक। किसी पुराने दोस्त से कॉन्टेक्ट हो सकती है, ध्यान रखिएगा। वैसे दैट वॉज योर हॉरोस्कोप ऑफ द डे। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन RM2 रेडियो मास्टर।
2: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
3: Body Branch. RM2 Radio Musti.

0: Party Brunch RM2 Radio Masti.
1: वैसे पूछे जो कोई तो तेरा नाम दो, यहाँ पर नाम लेंगे जरूर। यहाँ पर बहुत सारे नाम आए हैं और नामों का ये जो सिलसिला है फॉर पीपल हैविंग देयर बर्थडे टुडे सेलिब्रेटिंग टुगेदर विद कुशल जी तुन जो लावण जी के रहने वाले हैं। कुशल जी, हैप्पी बर्थडे एंड विशेस कमिंग फ्रॉम मामा करुणा, पापा रोशन है कियांश, आशी, मेघना, तुषाल, नाना देवराज, विद्यानी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, और माधवी भी जो कि हमारे साथ दे रहे हैं फ्रॉम मेडिकल क्लिनिक, और जो सोनी डैडी any beautiful songs. Thank you for the beautiful playlist for my colleagues. Mrs. Renu, jo ki in charge hai abhi, Aureli and Benja ke liye bhi,

इंग्लिश विंग्लिश शिल्पा राव की आवाज में बदला नजर एज वी यू लेडीज एंड जेंटलमैन. यहाँ पर नेक्स्ट सॉन्ग इज आउट टू माय हस्बैंड समर हु इज वर्किंग राइट नाउ एट अमोरे रिविया डू रंपो. आई वांट टू टेल हिम दैट आई लव हिम सो सो मच फ्रॉम वाइफ बेबी. हाय हाइज शेखर लिसनिंग फ्रॉम यूएसए वुड लाइक टू डेडिकेट द नेक्स्ट सॉन्ग फॉर माय वाइफ संध्या एंड डॉटर है रिया. थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल म्यूजिक. आप पसंद कर रहे हो यही तो हम जीत गए. अभी यहाँ पर थोड़ी देर में हम आपको ले चलेंगे स्टूडियो के बाहर कहाँ बोले होश फ्लैग में जहाँ पर है वेदिता. अभी के लिए आप ये गाना एंजॉय कर लो.

0: listening to Radio Misty.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Pa-da-pa-pa-pa. I'm loving it.
1: And Alokik, gel air freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2.
0: Radio Musti.
4: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Musti.
4: Feel the Musti.
5: Time check. सुबह के 10 बजे हैं. अभी के लिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपके साथ टीना. नमस्कार आपको.
6: नमस्कार. संक्षिप्त समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें. मॉरिशस और अमेरिका ने अपने सहयोग को और मजबूत करते हुए मॉरिशस पुलिस फोर्स और न्यू मैक्सिको नेशनल

0: गौर के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये साझेदारी आपदा प्रबंधन, सुरक्षा और आपातकालीन सहायता पर केंद्रित है। मैदान में डिजास्टर रेस्पॉन्स यूनिट के अधिकारियों ने एक अभ्यास में हिस्सा लिया, जिसमें एक इमारत गिरने जैसी स्थिति बनाई गई थी और इस दौरान उन्होंने आपातकालीन हालात में अपनी कार्रवाई की क्षमता का प्रदर्शन किया। यह अभ्यास इस लंबे समय के समझौते के तहत होने वाले सहयोग का एक हिस्सा है, जिसमें अनुभवों का आदान प्रदान और विशेष प्रशिक्षण भी शामिल है। मंत्रिमंडल ने श्रम मंत्रालय को मर्चेंट कामगारों को कनाडा में रोजगार दिलाने की प्रक्रिया आसान बनाने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। ये पहल फ्रेंच भाषा बोलने वाले कामगारों की गतिशीलता परियोजना और अन्य समान कार्यक्रमों के तहत शुरू की गई है। इस कनाडियन परियोजना का उद्देश्य ओटावा को फ्रेंच भाषी आवर्जन को बढ़ावा देने के प्रयासों में सहायता देना है। इसका मकसद अंतर्राष्ट्रीय भर्ती प्रक्रिया को व्यवस्थित करना और फ्रेंच बोलने वाले नए लोगों को अल्पसंख्यक फ्रेंच समुदायों में स्थायी रूप से बसने में मदद करना है। साथ ही मॉरिशस की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को भी ध्यान में रखना है और इस परियोजना का वित्त पोषण इमिग्रेशन रेफ्यूजी ए सिटोयनटी कनाडा द्वारा किया जाएगा, जो इन मामलों के लिए जिम्मेदार संघीय मंत्रालय है। यूनियन ऑफ बस इंडस्ट्री वर्कर्स ने फिर से एक प्रेस वार्ता के दौरान चिंता जताई और सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र की स्थिति पर सवाल उठाए। यूनियन ने सबसे पहले सड़कों पर चल रही बसों की कमी की ओर ध्यान आकर्षित किया। उनका कहना है कि इसका सीधा असर रोजगार और इस क्षेत्र के कर्मचारियों की कार्य परिस्थितियों पर पड़ रहा है। और विदेश में ईरान और ओमान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से सेवा शुल्क वसूलने की योजना पर बातचीत कर रहे हैं। अमरीका ने इस कदम का कड़ा विरोध किया है और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में एक शोक समाचार। कोचियों स्ट्रीट सिटी मैडलेन थ्रोंगबो में 40 साल के 40 इयर्स ओल्ड के श्री जगदीश्वर किस नारायण, जो जगदीश नाम से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी आज दिन के एक बजे उनके घर कोचियों स्ट्रीट सिटी मैडलेन थोंगबो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थोंगबो की श्मशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: Uniquement chez King Savers, du 22 mai au 10 juin, les strips Chicken Tizer d'un kilo sont à 249,80 €. Les 500 grammes agneau pour grillade Butcher's Choice sont à 304,80 €. King Savers, in sports, we believe.
2: Come and celebrate Mother's Day with RM2 this Saturday, 30th of May at Fabulous Strand, Nouvelle France. Special Mother's Day promo of 30% discount on all items. Surprises, gifts and a buffet will be served for everyone present. RM2 will be live as from 5 PM to 10 PM, so don't miss out.
1: RM2
3: Radio Musti.
4: Body Branch RM2 Radio Musti. Body Branch RM2 Radio Musti.

0: एक्चुअली जी यहाँ पर जैसे कि हमने बार बार आपसे कहा है कि आज सुबह को 9 से लेकर 10 हम आपके साथ और 10 से लेकर 12 बजे हम आपको ले चलेंगे स्टूडियो के बाहर, जहाँ पर लग रहा है कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ सरप्राइजिंग थिंग्स, और हम डायरेक्टली बात करने वाले हैं विद वेदिता जो कि है भूले होश में। ज्यादा डिटेल के लिए उनसे ही बात कर देते हैं। गुड मॉर्निंग टू यू वेदिता।
1: हेलो लोगों से मिलने का मौका मिलता है तो हमारे चेहरे का नूर कुछ और बढ़ जाता है। ये बात तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। चलो भाई यहाँ

0: पर जब स्टूडियो के बाहर होते हैं तो लोगों से मिलना भी होता है, तो जैसा आपने कहा कि मैं बुलेहोश में हूँ, अब बुलेहोश में मैं कर क्या रही हूँ, यहाँ पकौड़ी तो थोड़ी नहीं बेच रही हूँ मैं, यहाँ पे मैं आई हूँ स्टेट बैंक में। अब स्टेट बैंक में या तो फिर मैं पैसे निकाल रही हूँ या तो फिर मैं पैसे रख रही हूँ, ऐसा आप सोच रहे होंगे, तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पर आज हम आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं। आप अगर स्टेट बैंक के साथ अपना जो पैसा है यहाँ पर अगर आप रखते हैं और यहाँ पर आपको क्या क्या एडवांटेजेस मिलते हैं, तो ये सारी चीज़ें सारी बातें हैं, कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है जो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। और ये है SBM का ओपन डे। जी हाँ, अगर आप लोग आसपास में हैं, घर में हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, धीरे धीरे करके हम आपको सारी डिटेल्स देते जाएंगे। और यहाँ पर SBM की जो पूरी टीम है, सबके सब एकदम फ्रेश, एकदम खुश, एकदम प्यार के साथ आपका वेलकम करने के लिए यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। तो जैसा मैंने कहा, इट्स अ ब्यूटीफुल सनी मॉर्निंग और यहाँ पर हम पूरी टीम के साथ मिलकर आपका वेलकम करने के लिए रेडी हैं फॉर द ओपन डे। एंड जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ ना कि सैटरडेज जो होता है लोग देर से सोना पसंद करते हैं और साथ ही साथ उनके लिए जो इन्फॉर्मेशन होता है वो कभी वो खो देते हैं, तो हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और SBM का जो ओपन डे है आज, इसमें हम आपका वेलकम करने के लिए एकदम तैयार हैं। तो चलिए देर न करते हुए मनीषमा, यहाँ पर हम गीतों के साथ हमारे सभी लिसनर्स का एंटरटेनमेंट करेंगे, लेकिन साथ ही साथ कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। हम लोग हैं स्टेट बैंक बुलेहोज में, आप लोग अगर आस पास में हैं तो आ सकते हैं, बिकॉज इट्स एन ओपन डे। अगर यहाँ पर आप खाता खोलना चाहते हैं, यहाँ पर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो पता है वीकडेज में सभी काम करते हैं और जब तक हम काम ख़त्म करके बैंक आते हैं तब तक बैंक बंद हो जाता है, और कभी कभी हमें छुट्टी लेनी पड़ती है, हाफ डे लेनी पड़ती है, तब आके हम बैंक आते हैं, तब अपना काम कर सकते हैं। कभी कभी तो हमारा काम एक दिन में पूरा भी नहीं होता, फिर एक और दिन की छुट्टी लेनी पड़ती है। आज तो सैटरडे है भाई, सैटरडे में आप हाई गर्मा गर्म ब्रेड चाय का तो पिमा खा रहे होंगे, अब उसके बाद क्या करना है, फिर वही मोबाइल के साथ वही टीवी। हाँ, देखना चाहिए, नहीं बोलती हूँ नहीं देखना चाहिए, लेकिन जब ज़रूरी काम होना, स्पेशली जो बैंक से कनेक्टेड हो, तो उसके लिए आज अभी आप आ सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं बुलेहोश के स्टेट बैंक में, जहां पर ये खूबसूरत लड़कियां आपका वेट करने के लिए एकदम रेडी हैं। क्या बात है, कहते हैं वी आर ऑल सेट, तो चलिए हम भी सेट हो जाते हैं आपका वेलकम करने के लिए एट स्टेट बैंक बुलेहोश। जी हाँ, और क्या बताऊँ मैं, म्यूजिक तो है हमारे साथ, ऐसा करते हैं हम बोलते हैं कि कविश को कुछ अच्छे अच्छे गाने पर चला दे, यहाँ पर रेडियो पर हमारे लोग तो सुन ही रहे हैं। इन्फॉर्मेशन थोड़ी देर में कुछ और लेकर आएंगे, अभी के लिए यहां पर जो हम मस्ती करते हैं उसको जारी रखते हैं।
1: RM2 रेडियो मस्ती।

0: वेलकम टू रेडियो मस्ती एंड यस रेडियो मस्ती की टीम आज आई है बुले रूज सेंटर फ्लैग फॉर दिस ओपन डे एट SBM। जी हाँ, अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई मिसेस डेल्फिन मामूद से, जो यहाँ SBM फ्लैग की ब्रांच सुपरवाइजर हैं, और उन्होंने आपको बताया कि ये जो ओपन डे है, यहाँ पर उनका काम होता है कि जो लोग हैं उनके कई सारे गोल्स होते हैं लाइफ में, और साथ ही साथ वो एक घर बनाना चाहते हैं। घर बनाने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, घर बनाने के लिए, शादी करने के लिए, बच्चों की पढ़ाई करने के लिए, और पैसों की किसको ज़रूरत नहीं होती है। लोग यहाँ पर काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, और उनको आप अपने घर पे नहीं रख सकते, तो पैसों को क्या करना पड़ता है, पैसों को आपको बैंक में रखना पड़ता है। तो वही बैंक में आपको कौन सी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, और अगर आपकी सैलरी इस बैंक में जहाँ पर आप मान लो काम कर रहे हैं, वहाँ से अगर आपकी सैलरी जो है वो बैंक में अगर आप रखते हैं, तो आप को कौन से एडवांटेजेस मिलते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। सो गाइस, हम आपका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। हम लोग तो एक्चुअली पूरी टीम अभी SBM फ्लैग में है, लेकिन अगर आप चाहे तो आप बाकी के जो ब्रांचेस हैं वहाँ पर भी जा सकते हैं, लाइक शिमें ग्रेनिये फ्लैग, गुडलैंड्स, गांवबे, काथोबोन, रोजबेल, रोजिल, सैफियत, श्योले एंड वाकवा, वहाँ पर भी आज ओपन डे है, तो आप लोग वहाँ पर भी जा सकते हैं। आपके मन में, आपके दिल में, आपके दिमाग में कोई भी ऐसा सवाल है जिसका जवाब आप ढूंढ रहे हैं, सो आपको जाना होगा SBM। सो यहाँ मैं आपको बता दूं कि हमारी एक पूरी सी टीम है यहाँ पर जो काम कर रही है। SBM खुला हुआ है, सैटरडे में बैंक बहुत कम रियली खुले रहते हैं, लेकिन आज ये बैंक खुला हुआ है सिर्फ इसलिए ताकि आप वीकडेज में जब काम करते हैं आपको मौका नहीं मिलता बैंक जाने का, और ऐसे में आपको छुट्टी लेनी पड़ती है। आपकी छुट्टी जो है एक दिन का पैसा कभी कभी कट जाता है, लेकिन आज सैटरडे है, आप घर पर हैं, आपके लिए ही रखा गया है ये ओपन डे। मौके का फायदा उठाइए, वो कहते हैं ना मौके पे मारो चौका, तो यही हम आपके लिए लेकर आए हैं, एक ऐसा मौका जहां पर आप पैसे से रिलेटेड, कोई भी बैंक से रिलेटेड, लोन से रिलेटेड, शायद अगर आप पैसा उधार लेना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, तो क्या होता है, कैसे होता है, ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में हैं, तो चलिए सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा आज अभी यहां, और यहाँ नहीं तो जहाँ आपका SBM है वहाँ पे ज़रूर मिलेगा। अभी मैं देख रही हूँ भाई साहब अभी आए, उनके साथ काफ़ी प्यार से उनसे बात की गई, उनको कई सारे सवाल थे, बेचारा मुस्कुराता हुआ हंसता हुआ मैं देख के गया। इसका मतलब ये है कि उनको मेरे सवालों का जवाब दो, जवाब मिल गया। यहाँ कविश बहुत हंस रहा है, कह रहा है कि बड़े गाने गा रहे हैं, तो हाँ भाई बैंक में बैठे हैं, हंसना तो बनता ही है। चलिए इसी के साथ म्यूजिक कंटिन्यूज ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती, और यहाँ पर हम हंस रहे हैं, खुश हो रहे, और वहां पर मनीषमा है ना, मनीषमा
1: हैं जी, मैं तो हूँ ही यहाँ पर। वैसे यहाँ पर म्यूजिक के साथ साथ कुछ टिप्स भी देने वाले हैं, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।
2: फैशन टिप्स पावर्ड बाय हलकरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स। बॉली ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
1: तो चलिए जी, यहाँ पर अगर वीकेंड शॉपिंग वाइब्स के लिए आप जाना चाहते हो, तो ये जो इजी ब्रीजी लुक होता है बहुत ही कंफर्टेबल होता है, कम्फी कॉटन ड्रेस या वाइड लेग पेंट्स विद अ कैजुअल टी शर्ट या फिर टी, आपको रखेगा कूल और फैशनेबल दोनों। साथ ही साथ आप ऐड कर सकते हो अपने फैशन के लिए, आज स्टाइल के लिए भी क्रॉस बॉडी बैग चूज कीजिएगा, ताकि हैंड्स फ्री रह पाएंगे और आपकी शॉपिंग में ज्यादा कंसंट्रेशन हो सकती है। और बैग में एक छोटा सा बैग बैग में बैग क्या कहते हो यार, शॉपिंग है, समझा करो। और यहाँ पर मिनिमल मेकअप के लिए आप ऑप्ट कीजिएगा, यू नो ज्यादा भारी मेकअप मतलब सैटरडे यार हमको गर्मी लग जाती है ठंडी में, लेकिन मिनिमल मेकअप के साथ साथ मेसी पॉनीटेल और कम्फी स्नीकर्स।

0: बोला तो था वाइट स्नीकर्स होनी चाहिए। चलिए जी, परफेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए गो फॉर दिस ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल फैशन टिप्स। फैशन का गोल्डन रूल है, लुक फ्रेश, फील लाइट और एंजॉय करो एवरी शॉपिंग मोमेंट विद कॉन्फिडेंस।
1: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाय हल्कोरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स।

0: एंड यस वेलकम टू रेडियो मस्ती. वेलकम वेलकम, स्वागत है आप सबों का. अब अगर आप चाहते हैं कि हम सच में आपका वेलकम करें, आप साक्षात हमारे सामने आना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको आना होगा SBM बुले रूज में. और आपको मैं बताऊं कि यहाँ पे जो ओपन डे चल रहा है, इसके चलते बैंक जो है अभी खुला हुआ है. आपके मन में, आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं. जी हाँ, बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजना है परदेश, उसके लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है. घर में शादी है, पर्सनल लोन, उसके लिए पैसों की ज़रूरत है. अब ऐसी कितनी सारी चीज़ें हैं, जैसे घर बनाना है, गाड़ी लेनी है, तो इन सब चीज़ों के लिए पैसे तो लगते ही हैं. अब पैसे कहाँ से आएंगे? अब पैसे आएंगे वहीं पे बैंक से. और हम लोग हैं SBM बैंक में, और स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस आज उन्होंने रखा है एक ओपन डे. और ओपन डे इसलिए, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि वीक डेज में लोग काम करते हैं, उनको टाइम नहीं मिलता, मौका नहीं मिलता. तो यहाँ पर इनिशिएटिव लिया गया कि भाई ऐसे लोगों को हम कैसे मदद पहुँचा सकते. तो मदद आप तभी पहुँचा सकते हैं जब आप कुछ अच्छा करने की सोच रहे हैं, और उसके लिए तो कहते हैं ना, दरवाजे खुल जाते हैं. इसीलिए हमने रखा है ओपन डे, दरवाज़ा खुला है आपके लिए. आपके पास कोई भी सवाल है, कोई भी प्रॉब्लम है, सोल्यूशन आपको मिलेगा पैसे से रिलेटेड यहाँ पर आकर. अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई मेरे तो इतने ही पैसे मिलते हैं, इसमें मुझे कितना पैसा मिलेगा लोन पे, और मुझे कितना पैसा चुकाना पड़ेगा, कब तक चुकाना पड़ेगा, कब तक चुकाऊंगा, और क्या क्या चाहिए मुझे, तो ये सारी चीज़ें हैं सवाल आपके दिमाग में. आप आकर पूछ सकते हैं. पूरी टीम है यहाँ पर SBM की जो आपकी सेवा में कार्यरत है. जी हाँ, तो आपको करना क्या है, आपको अगर कुछ और एडवाइस, गाइडेंस या सपोर्ट चाहिए, ऑल यू हैव टू डू कि आप जाकर किसी भी SBM ब्रांच में, वहाँ अभी भी आज भी ओपन डे है, तो आज भी मतलब आज है ओपन डे, और आप जा सकते हैं एट SBM बिले शिमेघे गुडलैंड्स गॉम्बे काथोबोन रोजबेल रोजिल सैंपियर ट्रियोले एंड वाकुआ. जी हाँ, ये मैं आपको रिपीट करती जाऊंगी, कहीं आपने अगर मिस कर दिया तो आप कैचअप कर लेंगे. सो रिमेंबर गाइस, इट्स बिलेयर शिमेग्रेनिये गुडलैंड्स गॉम्बे काथोबोन रोजबेल रोजिल सैंपियर ट्रियोले वाकुआ एंड सेंट्रल फ्लाक. सेंट्रल फ्लाक यानी बुले रूज, जहाँ पर हमारी रेडियो मस्ती की टीम है. तो ऐसा करते हैं, हम आपको थोड़ी देर में मिलवाएंगे एक और यहाँ के स्टाफ से, और उनसे हम कुछ और सवाल करेंगे. फिलहाल के लिए म्यूजिक कंटिन्यूज ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती.
1: बॉली ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती.
2: चलिए, आपने सही कहा है वेदिता कि म्यूजिक कंटिन्यूज है. यहाँ पर म्यूजिक की बात करेंगे, एंड द सिंगर सन जोबिन नौटियाल, जो कि इंडिया के मोस्ट पॉपुलर प्लेबैक सिंगर है, नोन फॉर हिज सोलफुल रोमांटिक सॉन्ग्स एंड इमोशनल वॉइस. यहाँ पर वो आ रहे हैं लेडीज एंड जेंटलमैन. सो ये जो गेम है इज पावर्ड बाय ग्रेविटी जीरो एंड टिकेट बॉक्स .mu. मोबाइल लीजिएगा 549-1294 पर आप मैसेजेस भेजिएगा. स्टे ट्यून्ड ऑन RM2 रेडियो मस्ती. आज आपके लिए ये chance had to win and be part of the grand musical celebration. जी हाँ, ये जो विजेता है, अगर आप हमें सही जवाब दे, you win a platinum ticket to assist the spectacular Jobin Nautiyal live concert, जो कि लगने वाला है Saturday 30th of May 2026 को. Okay जी, और ये जो concert है रात्रि के 8 बजे होने वाली है. आपको सिर्फ बताना है कि जो अनफॉरगेटेबल इवनिंग विद जोबिन नौटियाल है, जो सैटरडे को लगने वाला है 30th मई को, कहाँ लगने वाला है, द एड्रेस ऑफ द लाइव कंसर्ट ऑफ जोबिन नौटियाल बताएगा.

0: 549-1294 पर अभी के लिए लेते एक छोटा सा ब्रेक, टाइम तो दे दूंगी आपको टू पार्टिसिपेट विद अस हियर ऑन RM2 रेडियो मासी 549-1294 पर विद अ फुल नेम एंड एड्रेस.
1: RM2
2: रेडियो मस्ती.
1: बिहाइंड एवरी पीस एट फैब इंडिया देयर इज अ पेयर ऑफ स्किल्ड हैंड्स, artisans who weave, dye, print and craft with passion, keeping centuries of tradition alive. Today, that craftsmanship is here for you to discover. Explore Fab India's handcrafted clothing and beautiful home pieces at Centerpoint Mall, Triano. Fab India, a celebration of craftsmanship.
3: Quittez un réfrigérateur Samsung Top Mount 460 litres 10 pour 29,990 roupies. En plus, tu gagnes micro-ondes en cadeau. Ça a bien pris là et cadeau. Zissi dans la case, ma code 3-6-N qui te pour gagner ça. Eh oui, fin profite ben meilleur offre de ben réfrigérateur Samsung que 3-6-N et clos 3-6-N.mu avec facilité crédit par Sim Finance ou Reduce Capital ou même 12 mois zéro l'intérêt quand on paye avec ou God Crédit.
2: 3-6-N. Bien plus encore.
1: RM2
2: Radio Musti.
1: RM2
2: Radio Musti.

0: RM2 Radio Musti
1: Bolly Brunch
2: RM2 Radio Musti. Welcome to SBM Central Flag. जी हाँ, SBM Central Flag में लगा है ये Open Day, जहाँ पर हमारी टीम आई हुई है. Open Day क्यों? मैंने अभी थोड़ी देर में कहा था ना कि दरवाजे खुल जाते हैं. That is why we said Open Day. आज यहाँ आपका दिन है, सो यू कैन कम हियर. मन में दिमाग में कोई भी सवाल हो, हंसी मत करो. हाँ चलो, यहाँ पर हम सीरियसली बात कर रहे हैं. देखो भाई, और सीरियसली बात करें तो इंसान को अगर पैसे की कमी है तो बिना किडनी के सभी घूमते, अगर बैंक नहीं होता तो इसीलिए हम किडनी ने

0: ऑफिसर जो SBM फ्लैक में काम करती हैं, एंड आई वुड लाइक अश्विना टू टेल अस मोर अबाउट द होम लोन ऑफरिंग टुडे. हेलो अश्विना जी.
1: हेलो वेदिता. हेलो लिसनर्स ऑफ ऑरइम टू.
0: ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द होम लोन, राइट?
1: यस. So the SBM home loan supports all types of property projects, for example, buying, building, renovating, or even refinancing.
0: Mm-hmm.
1: We know that every project is different, so we focus on simple and personalized support.
0: And the planning is very important.
1: Definitely, planning is very important. A home loan is a long-term commitment, so we help customers understand their options and choose what fits their budget.
0: All right, so any special offers today?
1: Yes, of course.
0: It's an open day.
1: Yes, it's an open day. So customers can benefit from preferential interest rates depending on their profile, a cashback option of 1% on the loan amount, and special rates for loan transfers. They also get access to the SBM Home Club card with discounts on home-related purchases.
0: ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत बड़ी बात है. Great news. Thank you so much. So listeners, अगर आप सोच रहे हैं कोई home project की, तो आज का दिन बहुत ही शुभ है. आप अपने शुभ चरण इस बैंक में लाइएगा. लेकिन अगर आप फ्लैक में नहीं आ पा रहे हैं, तो आप जा सकते हैं बेलेयर, शेमे ग्रेनिये, फ्लैक, गुडलैंड्स, ग्रांड बे, क्वाट्रो बोन, रोजबेल, रोजिल, सेंट पियर ट्रियोले, या तो फिर वाक्वा. एनी फाइनल वर्ड अश्विना?
1: Just come meet us here at SBM Flag. We will be open until 2 PM.
0: All right.
1: You.
0: मैं यही जानना चाहती थी कि कितने बजे तक आप आ सकते हैं. ऐसा नहीं कि हमारी टीम तो यहाँ पर 12 बजे तक होने वाली है, तो 12 बजे सब खत्म चले गए. ऐसा नहीं है, हम लोग 2 बजे तक यहाँ पर होंगे. कोई बात नहीं है, यहाँ पर हम मस्ती करेंगे आपके साथ, गाने सुनेंगे, डांस करेंगे. खुशी का मौका है भाई. यहाँ पर बात करते हैं जहाँ पैसों की, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं कोई कारण होता है, इंसान खुश हो जाता है. किसी को अगर लोन का कारण मिल जाता है कि चलो भाई लोन मिल गया, हमारा घर बन गया, या तो फिर हमारी गाड़ी आ गई, या तो फिर हमारे बच्चे पढ़ाई के लिए बाहर चले गए, तो खुशी की तो बात होती है ना. तो आइए, आप खुशी का मौका यहाँ पर अगर ढूंढ रहे हैं तो आपको मिलेगा हमारे साथ SBM में. और हम लोग हैं एट SBM बुले रूज. अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं तो, अगर नहीं तो ठीक है, आप SBM के अदर ब्रांचेस में भी जा सकते हैं. लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन. हाँ, यहाँ पर कविश मुझे बोल रहा है, बोल दे, फिर से बोल दे, लोग भूल जाएंगे, वरना तुझे ढूंढते हुए यहाँ आ जाएंगे. हाँ, मैं सेंट्रल फ्लैक में हूँ, लेकिन आप बेलेयर, शेमे ग्रेनिये, गुडलैंड्स, ग्रांड बे, क्वाट्रो बोन, रोजबेल, रोजिल, सेंट पियर ट्रियोले और वाक्वा जा सकते हैं. थैंक यू सो मच अश्विना होमेर. चलिए, तो ये है अश्विना होमेर, लोन ऑफिसर एट SBM फ्लैक. तो लोन की जितनी भी काम है ये संभालती है. तो अगर लोन के चलते आपके पास कोई भी सवाल है, अश्विना जी यहीं पर हैं, आपसे बात करेंगी. और आपके जितने भी सवाल हैं ना, जो आपके दिमाग में ढिशुम ढिशुम कर रहे हैं, वो सारे जवाब आपको मिलेंगे इनके साथ. म्यूजिक कंटिन्यूज ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती.
2: बॉली ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती.
3: म्यूजिक विल बी बैक ऑफ कोर्स. वेदिता, यहाँ पर हमने थोड़ी देर पहले पूछा था सवाल कि द लाइव कंसर्ट ऑफ जुबिन नौटियाली कहाँ पर लगने वाला है. द राइट आंसर इज SVICC 5. लेडीज एंड जेंटलमैन, जी हाँ, SVICC 5 30th of May को लगने वाला है, शाम को 8 बजे. द अनफॉरगेटेबल इवनिंग विद जुबिन नौटियाल. हमारे साथ हमारे लकी विनर है, उनका नाम है निशी बालिया, जो रहती है ऊपर का एड्रेस देख रही हूँ, कितना लंबा है, ये मॉरिशस में ही पाया जा रहा है ना. सो अभी ये जो क्यूपिप है नीचे आ गया. थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग निशी, एंड कंग्रेचुलेशंस अगेन निशी जी. जी हाँ, आपको क्या मिल रहा है? You won a platinum ticket to assist the spectacular Jubin Nautiyal live concert. Thank you so much for participating in the concert. It's proudly organized by Gravity Zero in collaboration with Ticketbox.mu. For early booking, please contact and send and buy your tickets on www.ticketbox.mu for all reservations. और या तो फिर सिंपली कॉल कीजिएगा ऑन द हॉटलाइन 214-6464 214-6464. थोड़ा सा ब्रीफ दे देते ना, जो भी नोट आगे सारे गानों के साथ साथ उनकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है, आई लव हिम एंड सारी जो उन्होंने जब शुरुआत की

You're listening to RM2, a Radio Masti. रेडियो मस्ती के सभी लिसनर्स का एक बार फिर से हम वेलकम स्वागत करते हैं. यस, आप सोच रहे हैं हम कहाँ हैं. वी आर लाइव फ्रॉम स्टेट बैंक बुले रूज. और अभी थोड़ी देर पहले लोन से रिलेटेड काफ़ी सारे सवाल हमने किए आश्विना उमेर से, जो कि यहाँ की लोन ऑफिसर हैं. और उन्होंने बताया ना कि यहाँ पर वो सपोर्ट करते हैं ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट, जैसे बाइंग, बिल्डिंग, रिनोवेटिंग या तो फिर रिफाइनेंसिंग. ये सारे काम जो हैं इनमें आपको मदद देती है वो. और उन्होंने ये भी कहा है कि आप बेनिफिट कर सकते हैं. बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो आप चूज़ कर सकते हैं. एंड कैशबैक ऑप्शन भी 1% का होता है ऑन द लोन अमाउंट. और स्पेशल रेट्स फॉर लोन ट्रांसफर्स. तो आपको एक्सेस भी मिलता है टू द SBM होम क्लब कार्ड विद डिस्काउंट्स ऑन होम रिलेटेड परचेसेस. तो अगर आप आना चाहते हैं, यहाँ पर हमारी टीम रेडियो मस्ती की है एट सेंटर फ्लैग, जबकि आप अपने आसपास का जो बैंक है वहाँ

0: पर जा सकते हैं, लाइक बेलेयर, शमे घे, गुडलैंड, घावे, कैट्रोबोन, रोजबेल, रोजिल, सैंपियर, ट्रियोली एंड वाकवा. वंस अगेन लेट मी टेल यू कि यहाँ पर SBM फ्लैक में हम लोग हैं एंड ये बैंक खुला रहेगा 2 बजे तक. अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं, आपके पास कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड मनी, जी हाँ, अब पैसे से रिलेटेड, यानी होम लोन से रिलेटेड, कार लोन से रिलेटेड, स्टडी से लेकर, रिनोवेशन से लेकर, आपको पैसे की ज़रूरत है और आप नहीं जानते हैं कि कैसे क्या करना है. सैटरडे का दिन है, आप घर पर हैं, आराम आपको करने का कल भी मौका मिलेगा, कल संडे है, लेकिन अभी अगर आप आते हैं आपके आसपास में जो बैंक है SBM का, वहाँ पर आप जाते हैं तो जितने भी सवाल आपके मन में हैं आप पूछ सकते हैं. और इसके लिए आपको दिन में, यानी कि वीक डेज में छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बैंक जो है 2 बजे तक खुली है, तो मौके का फ़ायदा उठाइए. यहाँ पर सुबह से काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं, उनके मन में बस एक सवाल है और उन सवालों के जवाब के लिए आ रहे हैं. तो अगर आप लोग इधर आ रहे हैं शॉपिंग के लिए आ रहे हैं, सब्ज़ी खरीदने आ रहे हैं, या तो फिर कपड़े खरीदने आ रहे हैं, घर में पार्टी है, कोई भी सामान आपको चाहिए, या तो फिर आप बैंक से पैसे निकालने आ रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आपके पास कोई भी सवाल है कंसर्निंग लोन्स, या किस तरह से आप अपने आप को फाइनेंस कर सकते हैं, अपने घर को अगर आप थोड़ा बड़ा बनाना चाहते हैं, सो लोन से रिलेटेड भी कोई सवाल है, आप यहां पर आ सकते हैं. पूरी टीम आपके साथ SBM सेंट्रल फ्लैग बुले रूज में हम हैं अंटिल 2 PM. और हम थोड़ी देर में बढ़ने जा रहे हैं समाचारों की ओर, जो आप सुनेंगे 11 बजे. फिर उसके बाद यहीं से कुछ और सवालों के जवाब के साथ मिलते हैं.
1: वेलकम टू RM2 रेडियो मस्ती.
2: Radio Musti.
3: Hits music only.
2: Feels a Musti.

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: North, South,
2: 103.5.
1: East, West,
2: 96.4.
1: Center,
2: 99.4.
0: RM2
2: Radio Musti.
0: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
1: Radio Musti.
0: Feel the Musti.
3: टाइम चेक दिन के 11 बजे हैं। चलिए वीकली सुनते हैं संक्षिप्त समाचार टीना जी से। नमस्कार आपको।
4: नमस्कार। और संक्षिप्त समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें। सरकार अब खराब मौसम की स्थिति से निपटने के लिए एक ही रणनीति अपना रही है। मूसलाधार बारिश और तेज वर्षा के समय के लिए एक राष्ट्रीय एकीकृत प्रोटोकॉल पूरे मॉरिशस में सरकारी और प्राइवेट दोनों क्षेत्रों पर लागू किया गया है। ये फैसला कल हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। श्रम मंत्री रजा उद्दीन की अध्यक्षता में हुई कई अंतर मंत्रालयीय बैठकों के बाद तैयार किया गया ये नया ढांचा अब सभी मॉरिशन कर्मचारियों और शिक्षा जगत पर बिना किसी भेदभाव के लागू होगा। अब नियम स्पष्ट है और सभी कर्मचारियों पर लागू होगा, चाहे वे फुल टाइम, पार्ट टाइम या शिफ्ट में काम करते हो। जब वाकवा मौसम विभाग द्वारा तेज बारिश की चेतावनी जारी की जाएगी तब आधिकारिक निर्देश सब पर समान रूप से लागू होगा। मॉरिशस और अमेरिका ने अपने सहयोग को और मजबूत करते हुए मॉरिशस पुलिस फोर्स और न्यू मैक्सिको नेशनल गार्ड के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये साझेदारी आपदा प्रबंधन

0: प्रबंधन सुरक्षा और आपातकालीन सहायता पर केंद्रित है और मैदान में डिजास्टर रेस्पॉन्स यूनिट के अधिकारियों ने एक अभ्यास में हिस्सा लिया जिसमें एक इमारत गिरने जैसी स्थिति बनाई गई थी और इस दौरान उन्होंने आपातकालीन हालात में अपनी कार्रवाई की क्षमता का प्रदर्शन किया। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के बीच असमानता को कम करना एक जरूरत और तत्काल आवश्यकता है, ये बात जनरल वर्कर्स फेडरेशन के अश्विन गुदा यानी एक प्रेस सम्मेलन के दौरान कही। उन्होंने बुजुर्गों और विद्यार्थियों के लिए मुफ्त परिवहन योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी में हो रहे कथित दुरुपयोग की भी आलोचना की। उनका कहना है कि इस व्यवस्था में बड़ी मात्रा में पैसा खर्च होने के बावजूद सड़कों पर बसों की कमी अब भी रोजाना यात्रियों को प्रभावित कर रही है। और विदेश में अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमरीका भारत के साथ ऊर्जा सहयोग बढ़ाने को लेकर बातचीत कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये मुद्दा उनकी नई दिल्ली यात्रा के दौरान चर्चा का अहम हिस्सा होगा। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुई। थोड़ी देर में एक शोक समाचार। नंबर 33 बीचवुड गार्डन्स इल्फोर्ड इंग्लैंड में, नंबर 33 बीचवुड गार्डन्स इल्फोर्ड इंग्लैंड में 57 साल के 57 ईयर्स ओल्ड के श्री राजीव कुमार गोपुल, श्री राजीव कुमार गोपुल जो राजीव नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और जो HSBC के पूर्व मैनेजर थे की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी बुधवार 27 मई को सपहर साढ़े तीन बजे उनके घर नंबर 33 बीचवुड गार्डन्स इल्फोर्ड इंग्लैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फॉरेस्ट पार्क इंग्लैंड की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन ऑन वेंसडे 27 मई एट 3:30 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv.

भाई गाना सुन रही थी मैं दिल भर दिल भर, और यहाँ पर दिमाग कहता है एंड ऑफ द मंथ बिल भर बिल भर। तो ये दिन भर दिमाग के साथ खेलता रहता है, कुछ भी खरीदना है और इतने सारे चीज़ें हैं आपको करने के लिए। भाई शादी करनी है, ये लड़का मेरे सामने बैठा है कहता है पैसे होंगे तभी तो शादी होंगी। आजकल शादियों में इतने पैसे खर्च होते हैं, फिर कहता है कि घर भी तो बनाना है, फिर कहता है घर है तो गाड़ी भी तो होनी चाहिए। अब अगर शादी हो गई, पति पत्नी एक साथ लोन ले सकते हैं, जॉइंट अकाउंट हो सकता है, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये होगा कैसे? अरे वैसे ही होगा जैसे हमेशा होता है, आप लोगों को पता नहीं आपको क्या करना है। इसीलिए यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ओपन डे, SBM की तरफ से ओपन डे। एंड यहाँ पर हमारी रेडियो मस्ती की टीम जो है आ गई है एट सेंट्रल फ्लैक। जी हाँ, जैसा हमने कहा कि आज ओपन डे है, SBM फ्लैक में हम लोग हैं, लेकिन बाकी के जो SBM है लाइक बेलेयर, शमे, घनिये, फ्लैक, गुडलैंड, गॉम्बे, कार्ट्रबोन, रोजबेल, रोजिल, सैंपियर, ट्रियोले एंड वाकवा, वहां पर भी आप जा सकते हैं।

0: और वहां पर भी आपको ये सारे एडवाइस मिल सकते हैं जो यहां पर आपको मिल रहा है। तो जैसा मैंने कहा कि एक ओपन डे है और आपको फाइनेंस से रिलेटेड, लोन से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड ऑफ कोर्स यहां पर कोई भी क्वेश्चन है आप आकर इनसे पूछ सकते हैं। अब चाहे आप लोग घर पे हैं, चाहे आप लोग सोच रहे हैं कि भाई आज हाफ डे है, तो ऐसा करो आप हाफ डे के बाद यानी 12 बजे के बाद भी आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दरवाजे आपके लिए 2 बजे तक खुले हैं। तो मतलब ये है कि आपके पास पूरा टाइम है, ज़्यादा नहीं, आप अगर 5 मिनट भी इनसे बैठ लें और इनसे कोई सवाल कर लें तो आराम से आपको सिखा सकते हैं, बता सकते हैं सारी डिटेल्स के साथ। मान लो आपकी इतनी सैलरी है और आपको लोन की ज़रूरत है, तो इस सैलरी के साथ आपको कितना लोन मिलेगा और लोन के चलते आपकी सैलरी में कितने पैसे कटेंगे, अब कितना पैसा। ऐसा नहीं कि आप बोलोगे कि भाई मुझे इतने पैसे मिलते हैं आप ऐसा करो सारे पैसे काट लो, ऐसा नहीं चलता मेरे भाई। यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आपकी सैलरी में एक हिस्सा होता है जो ये लोग कट करते हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है, आप घर बना रहे हैं, ज़मीन है आपके पास, घर बनाना है, या तो फिर आप ज़मीन खरीद रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको लगता है झंझट है, लेकिन ये फटाफट आपको जवाब दे देते हैं, क्योंकि इनको पता है ना, इनका काम ही है आपको समझाना, आपको बताना। हर कोई हर एक चीज़ में एक्सपर्ट होता है ना, इसीलिए तो ये ओपन डे रखा गया है ताकि आपके समस्याओं का समाधान मिल सके। सो SBM की तरफ से ये जो ओपन डे है होगा 2 बजे तक। आप चाहे तो हमसे मिलने के लिए SBM प्लाक आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको चाय पकौड़ा मैं नहीं दे सकती, आप घर पे आना उसको लेने के लिए। यहाँ पर आपको बस एडवाइस मिलेंगे, और हाँ, आपको डरना नहीं है, किडनी बेचना नहीं पड़ेगा आपको। SBM आ जाइए, लोन ले लीजिए, फिर आपकी जितनी भी परेशानियाँ हैं उन सब का समाधान आपको मिल जाएगा। तो चलिए म्यूज़िक के साथ आगे बढ़ते हैं, बुले गूज स्टेट बैंक की पूरी टीम के साथ एक बार ज़ोरदार तालियाँ हो जाए। ये चलो भाई, सब यहाँ पर है हमारे साथ और आपका वेट कर रहे हैं। कोई भी सवाल हो झिझकना नहीं, आ जाना। और अभी के लिए कविश, चलो हम एक और गाना सुनते हैं।
1: Radio Musti in the mix. Radio Musti feels a musti in the mix.

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio.

0: Radio Mesti
1: in the mix.
0: Radio Mesti feels a Mesti
1: in the mix.
2: And yes, ladies and gentlemen, hello, welcome, स्वागत है आप सबों का हमारे प्रोग्राम में. जी हाँ, प्रोग्राम क्या मैं बताऊँ आपको, यहाँ पर स्पेशल हो रहा है आज का हमारा ये जो प्रोग्राम है, क्योंकि हम हैं लाइव फ्रॉम SBM बुले रूज सेंट्रल फ्लैग. अभी आप सोच रहे हैं कि हम SBM में क्या कर रहे हैं, तो मैं एक बार फिर आपको बता दूँ कि यहाँ पर चल रहा है एक ओपन डे, जहाँ पर हम आपका वेलकम करने के लिए, स्वागत करने के लिए एकदम रेडी हैं. तो मैं यहाँ पर बात कर रही थी थोड़ी देर पहले कि अगर आपको लोन्स चाहिए तो आपको क्या करना है. तो चलिए, कुछ और अभी सवाल हैं हमारे मन में और ये सवाल हम पूछना चाहेंगे. अभी हमारे साथ हैं चांदनी सुबी और ये हैं पर्सनल बैंकर एट SBM फ्लैग. बिसाइड्स द SBM होम लोन ऑफर्स, व्हाट एल्स इज अवेलेबल टुडे, ये हम जानेंगे चांदनी सुबी जी से. हेलो.
3: हेलो विदिता. हेलो एवरीवन. We are also showcasing leasing and credit cards.
2: Okay.
3: Leasing is a flexible way to finance vehicles or equipment with manageable repayments.
2: Mm-hmm.
3: Our credit cards offer convenience, security, contactless payments and access to discounts through SBM's discount program.
2: So it's really about simple everyday financial solutions, right?
3: Exactly. It's also about speaking directly with customers, understanding their needs and guiding them properly. I would like Vedita to remind all listeners of RM2 that we currently have a special offer on the SBM home loan with several benefits for borrowers.
2: So it's a great opportunity for all the listeners today.
3: Indeed, Vedita. Just come and talk to us. We are here to help.
2: Thank you. Thank you so much. So that was Chandni Sobhi, personal banker at SBM Flak. Dekha aapne, inhone bola ki itna aasan hai. And my dear listeners, main aapko batau, SBM branches aapke jo aas paas hai, wo ekdam khule rahenge aaj 2 baje tak, sham 2 baje tak. Aur aapko miss nahi karna hai, aapko bas aana hai. Aur jo bhi sawal hai concerning money, loans, home loans, aapko ghar kharidna hai, गाड़ी खरीदनी है, सो आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा कि आपके सैलरी के हिसाब से आपको कितना लोन मिल सकता है और किस तरह से आपको फाइनेंस कर सकते हैं. सो याद रखिए कि हम लोग हैं यहाँ पर

0: 12 बजे तक एट SBM सेंट्रल प्लाक। अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं, बस एक सिंपल हेलो कहना चाहते हैं, सो यू कैन कम हियर। एंड बाकी अगर पैसे से रिलेटेड है ना, तो उसके लिए आपके लिए दरवाजे खुले हैं 2 बजे तक, सो यू कैन कम हियर एनी टाइम, लेकिन बिफोर 2 PM। तो पूरी टीम जो है SBM की आपका स्वागत करने के लिए और आपके सवालों का जवाब देने के लिए रेडी है। वी कंटिन्यू सम ग्रेट म्यूजिक राइट हियर ऑन रेडियो मस्ती लाइव फ्रॉम SBM सेंट्रल प्लाक।
1: RM2 Radio Musti. Feel the Musti.

0: Welcome to RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: Hits, music only.
1: Feels a musti.
3: चलिए भाई, यहाँ पर ढूमकेट पे ढूमका तो हम भी लगा रहे हैं। इतने सारे लोग हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं आज SBM, वैसे तो हम हैं अभी SBM सेंट्रल फ्लैक में। आप लोग अगर जाना चाहते हैं तो आप लोग बाकी के जो ब्रांचेस हैं SBM के, वहाँ के भी जो ब्रांचेस हैं खुले रहेंगे 2 बजे तक। लाइक वी सेड कि आज हम लोग हैं लाइव फ्रॉम SBM सेंट्रल फ्लैक बुले रूज। यहाँ पर ओपन डे है, और ओपन डे क्यों होता है, ये एक ऐसा दिन होता है जहाँ पर आपके लिए बैंक जो है वीक डे से ना होकर वीकेंड में, यानी कि सैटरडे में एक दिन खुलता है, जहाँ पर बैंक सैटरडे में नॉर्मली बंद होता है। तो आज इन्होंने अपने दरवाजे इसलिए खास आपके लिए खोले हैं ताकि जो लोग वीक डेज में काम करते हैं उनको मौका नहीं मिलता है बैंक जाने का। आप लोन से रिलेटेड सवाल पूछना चाहते हैं, आप चाहे आपके पास कोई भी लाइक रिनोवेशन का काम है, आपको गाड़ी लेनी है, बच्चों के लिए स्टडी लोन लेना है, कोई भी घर में आपको काम करना है, पर्सनल लोन लेना है, तो इन सारी चीज़ों में अब आपकी सैलरी कितनी है, कितने पैसे कटते हैं, कितना पैसा चुकाना पड़ता है, बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब एक्चुअली आप लोग ढूंढते हैं। तो इन्हीं सवालों के जवाब के लिए हम यहाँ पर आपके लिए हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया है एक ओपन डे जो कि SBM की तरफ से है। सो आप अगर यहाँ पर आकर किसी से भी बात करना चाहते हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई चांदनी सोबी जी से जो कि यहाँ पर पर्सनल बैंकर हैं SBM फ्लैक, उन्होंने बताया कि बिसाइड SBM होम लोन्स ऑफर्स और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो आपके लिए अवेलेबल हैं। लीजिंग के बारे में भी उन्होंने बताया था, क्रेडिट कार्ड्स ऑफर भी इन्होंने बताया था, एंड सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल हैं। आपको बस आकर यहाँ पर उनसे डायरेक्टली बात करना होता है, एंड उनका काम है उनसे बात करके अंडरस्टैंडिंग देयर नीड्स एंड गाइडिंग देम प्रॉपरली। तो यहाँ आप लोग आ सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और SBM ब्रांचेस जो हैं आपके पास वहाँ पर आप जा सकते हैं। अगर आप फ्लैक के आसपास नहीं हैं तो कहीं दूर हैं, सुबेले शमै ग्रेनिये फ्लैक गुडलैंड घोंबे कैट्रोबोन रोजबेल रोजिल सैं पियट्रियोले और अवाक्वा, ये SBM के वो ब्रांचेस हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं। और आपके मन में कोई भी सवाल है कंसर्निंग लोन्स, कंसर्निंग एनी क्वेश्चन जहाँ पर आपको पैसों की ज़रूरत है घर के लिए, शादी के लिए, तो यहाँ पर आकर आप अपने सारे सवालों का जवाब पा सकते हैं। सो चलिए, हम आपके साथ रहेंगे 12 बजे तक एक्चुअली, और साथ में यहाँ पर अगर आप लोग दूसरे ब्रांचेज में हैं तो वहाँ पर भी आप जाकर अपने सवालों का जवाब पा सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए, एंड SBM फ्लैक जो है यहाँ पर हमारी पूरी टीम हमारे साथ हैं, वी हैविंग अ रियली गुड टाइम। इनसे मैं भी बहुत सारे सवाल कर रही हूँ, तो अगर आपके भी मन में सवाल हैं तो ज़रूर आप यहाँ पर आ सकते हैं, या फिर बाकी के ब्रांचेज जो हैं वहाँ पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं।
4: RM2 Radio Musti.

0: तो यहाँ पर हमारी बातें हो रही हैं SBM की पूरी टीम के साथ एंड वी आर लाइव ऑन रेडियो मस्ती. SBM जो है स्टेट बैंक बुलेहूज, यहाँ पर जो टीम है हमारे साथ, इनकी बहुत सारी वार्तालाप, बहुत सारी बातें हो रही हैं. सो वंस अगेन चलिए अब हम एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे इनसे. और यहाँ पर हमारे साथ हैं दलफिन महमूद, ब्रांच सुपरवाइजर रिटेल एट SBM बैंक. सो हम पहुँच गए हैं हमारे इस प्रोग्राम के आखिरी सवाल की ओर. एंड अगेन वी हैव मिसेस महमूद, द ब्रांच सुपरवाइजर ऑफ SBM फ्लैग. सो मिसेस महमूद, व्हाट द लास्ट मैसेज फॉर टुडे?
1: हेलो वेरिता, हेलो लिसनर्स. टुडे इज ऑल अबाउट मीटिंग पीपल, लिसनिंग टू देम एंड हेल्पिंग देम मूव फॉरवर्ड विद देयर प्रोजेक्ट्स. Whether it's a home loan, leasing or credit card, we're here to guide them step by step.
0: So from your experience, what do people often get wrong when coming to seek a loan or other financial solutions?
1: Many people wait too long before asking for advice. But speaking to a banker early really helps with planning and making better decisions.
0: So it's not just about home loans?
1: Not at all. It's about guidance and support. Sometimes one simple conversation can make a big difference. Every customer is different, so we always try to offer customized solution. I would like to seize this opportunity to invite listeners of RM2 to come meet our teams here at SBM Flag and in other SBM branches that are open today. There are several benefits that they can enjoy as part of our ongoing SBM home loan campaign.
0: All right, thank you so much, Mrs. Mahmood. So dear listeners, अभी जो हैं आपको हम बता रहे हैं कि हम लोग हैं लाइव फ्रॉम SBM बुलेहूज और आज का है ओपन डे. और जितने भी ब्रांचेस हैं अक्रॉस द आइलैंड, जैसे हमने कहा था आपको, बेलेयर, शमे, घनिये, फ्लाक, गुडलैंड, सिघांबे, कैटरबोन, रोजबेल, रोजिल, सैंपिया, ट्रियोले एंड वाकवा, तो यहाँ पर दरवाजे आपके लिए 2 बजे तक खुले रहेंगे. आज का दिन बहुत परफेक्ट रहेगा, सैटरडे का दिन है. अगर आप लोग हाफ डे काम भी करते हैं तो उसके बाद भी आपको मौका मिलेगा, आसपास में जितने भी SBM के बैंक्स हैं वहां पर जाकर आपको सारे सवालों के जवाब मिल सकते हैं कंसर्निंग लोन्स एंड ऑल. तो यहां पर जो है हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को हम बार बार बताते चलें कि आज का जो ओपन डे है वो इसलिए रखा गया है क्योंकि वीकडेज में आप लोग काम करते हैं और जब आपको वीकेंड मिलता है तो आप आराम करते हैं, लेकिन वीकेंड्स में बैंक जो है वो बंद होते हैं. तो आज खास आपके लिए ये दरवाजे खुले गए हैं ताकि आप अपने सवालों के जवाब पा सकें. एंड अगर आपको घर बनाना है, घाड़े लेनी है, शादी करनी है और आपको घर का रिनोवेशन करना है, तो ये सारी चीज़ों के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है. अब ये पैसे आपको कैसे मिलेंगे, कितना पैसा मिल सकता है, आपकी सैलरी कितनी है, ये सारी चीज़ें जो हैं, सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा SBM में. और अभी फ़िलहाल के लिए SBM की टीम जो है हमारे साथ जुड़ी हुई है, यानी कि RM2 रेडियो मस्ती के साथ जुड़ी हुई हैं. और चलिए इसी के साथ हम सबको कहेंगे थैंक यू सो मच, हमारे साथ जुड़े रहे आप लोग. हमारे पास अभी आपके लिए बहुत सारे और सवाल हैं, लेकिन आपके मन में भी बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे, तो आप अपने सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं कि भाई हमें लोन लेना है, हमें पैसे की ज़रूरत है, हम क्या कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं. कोई बात नहीं, घबराए नहीं, SBM के दरवाजे खुले हैं आपके लिए, आप यहाँ पर आ सकते हैं और अपने सारे सवालों के जवाब यहाँ पर पा सकते हैं.
2: वेलकम वेलकम टू RM2 रेडियो मस्ती.
3: Radio Musty.
4: Hits, music only.
3: Feels a musty.

0: में हर जगह रेडियो मस्ती तो चलती रहती है और हमारी भी मस्ती चलती रहती है, लेकिन आज हम सीरियस बात कर रहे थे मस्ती मस्ती में। तो यहाँ पर हम हैं आज SBM फ्लैक ब्रांच, जो कि आज ओपन डे है एट सेंटर फ्लैक। तो हम बुले रूज में हैं। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर हम लोग 10 बजे से हैं और अभी हमारे जाने का भी टाइम हो रहा है, लेकिन 2 बजे तक ये ओपन डे चलेगा। आप किसी भी बैंक के ब्रांच में जा सकते हैं, जैसे बेलेयर, शमे ग्रेनिये, गुडलैंड्स, गांबे, कैथरबोन, रोजबेल, रोजिल, सैम पियर, थ्योरी एंड वाक्वा। चलते चलते यहाँ पर हम डेल्फिन महमूद को धन्यवाद देना चाहेंगे और साथ ही साथ हम यहाँ पर अश्विना उमेर और चांदनी सूबी को भी धन्यवाद देना चाहेंगे और SBM की पूरी टीम जो इस समय हमारे साथ है आर्ट सेंटर फ्लैक। तो इन सबको थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। चलिए, हमारे जाने का टाइम हो गया है। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, पैसे से रिलेटेड कोई भी सवाल आपके पास है, आपको लोन चाहिए घर के लिए, गाड़ी के लिए, आपको पैसा चाहिए घर के रिनोवेशन के लिए, घर खरीदने के लिए, तो कितने पैसे में, सैलरी में आपको कितना लोन मिल सकता है और कितने टाइम तक आपको इसको चुकाना पड़ेगा और यहाँ पर आपको क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं, ये कर सकते हैं, आपको एडवाइस भी दे सकते हैं कि आप लाइफ जो है उसमें स्ट्रेस ना हो, तो ये सारे सवालों का जवाब आपको मिल सकता है एट SBM। SBM फ्लैक आ सकते हैं बेलेयर, शमे ग्रेनिये, गुडलैंड्स, गांबे, कैथरबोन, रोजबेल, रोजिल, सैम पियर, ट्रियोली एंड वाक्वा। तो एक बार फिर सभी हमारी ब्यूटीफुल लेडीज को हम धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने हमारी काफी अच्छी खातिरदारी भी की। तो थैंक यू सो मच काविज, थैंक यू हमारी पूरी टेक्निकल टीम को और वहां पर बैठी रही मनीष्मा, उनको भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। सो गाइस, टाइम फॉर मी टू से बाय बाय टू यू एंड आई होप कि हमारे जितने भी एडवाइस हैं आप तक सीधे पहुंचे होंगे एंड आई वाज वेरी क्लियर कि आपको करना क्या है। तो चलिए, आपको कहेंगे हैव अ ग्रेट ग्रेट ग्रेट वीकेंड, थैंक यू SBM, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, तो चलिए हम चलते हैं बैक टू यू स्टूडियो।
1: RM2 रेडियो मस्ती।

0: crafted clothing and beautiful home pieces at Centerpoint Mall, Triano. Fab India, a celebration of craftsmanship.
1: Come and celebrate Mother's Day with RM2 this Saturday, 30th of May at Fabulous Strand, Nouvelle France. Special Mother's Day promo of 30% discount on all items. Surprises, gifts and a buffet will be served for everyone present. RM2 will be live as from 5pm to 10pm, so don't miss out.
0: Behind every piece at Fab India, there's a pair of skilled hands. Artisans who weave, dye, print, and craft with passion, keeping centuries of tradition alive. Today, that craftsmanship is here for you to discover. Explore Fab India's handcrafted clothing and beautiful home pieces at Centerpoint Mall, Triano. Fab India, a celebration of craftsmanship.
2: Ok Maurice, ce mois-ci, on voit les choses en grand chez McDonald's. C'est Grand May. Tout le mois de mai, profitez d'offres incroyables en restaurant, sur notre application et même en livraison. Du 8 au 31 mai, 5 généreux morceaux de crispy chicken à 460 roupies au lieu de 570 roupies. Plus de valeur, plus de goût et ça change tout. Grand May chez McDonald's, un mois à partager et à savourer.
3: McDonald's, ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
4: Alala, kizoli, zoli. Ou pas connu, kizoli, zoli.
5: Uniquement chez King Savers, du 22 mai au 10 juin, les 500 grammes filet capitaine Mr. Fish sont à 209,80 roupies. Les frites Hungry Toast d'un kilo sont à 89,95 roupies. King Savers, in sports, we believe.
6: RM2 Radio Mystique.
7: The time is brought to you by
3: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
7: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
8: North, South,
9: 103.5.
8: East, West,
9: 96.4.
8: Center,
9: 99.4.
10: RM2
9: Radio Musti.
10: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
8: Radio Musti.
10: Feel the Musti.
11: Time check 12 baj chuke hain. Aaiye sunte hain sankshipt samachar. सुनते हैं संक्षिप्त समाचार अभी के लिए तीना के साथ. नमस्कार आपको.
12: नमस्कार. संक्षिप्त समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें. मंत्रिमंडल ने श्रम मंत्रालय को मर्चेंट कामगारों को कनाडा में रोजगार दिलाने की प्रक्रिया आसान बनाने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है. ये पहल फ्रेंच भाषा बोलने वाले कामगारों की गतिशीलता परियोजना और अन्य समान कार्यक्रमों के तहत शुरू की गई है. इस कनाडियन परियोजना का उद्देश्य ओटावा को फ्रेंच भाषी इमिग्रेशन को बढ़ावा देने के प्रयासों में सहायता देना है. इसका मकसद अंतर्राष्ट्रीय भर्ती प्रक्रिया को व्यवस्थित करना और फ्रेंच बोलने वाले नए लोगों को अल्पसंख्यक फ्रेंच समुदायों में स्थायी रूप से बसने में मदद करना है. साथ ही मॉरिशस की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को भी ध्यान में रखना है. मॉरिशस अब स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम का लाभ लेने वाला 24वां अफ्रीकी देश बन गया है. ये अमेरिका की एक सहयोग योजना है जो लगभग 30 सालों से चल रही है. मॉरिशस पुलिस फोर्स और न्यू मैक्सिको नेशनल गार्ड के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिससे आपदा प्रबंधन, सुरक्षा और आपातकालीन सहायता के क्षेत्रों में सहयोग का रास्ता खुल गया है. यूनियन ऑफ बस इंडस्ट्री वर्कर्स ने एक प्रेस वार्ता के दौरान चिंता जताई और सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र की स्थिति पर सवाल उठाए. यूनियन ने सबसे पहले सड़कों पर चल रही बसों की कमी की ओर ध्यान आकर्षित किया. उनका कहना है कि इसका सीधा असर रोजगार और इस क्षेत्र के कर्मचारियों की कार्य परिस्थितियों में पड़ रहा है. विदेश में अमेरिका द्वारा नए सिरे से सैन्य हमले किए जाने की बढ़ती आशंकाओं के बीच ईरान ने अपना एयर स्पेस पूरी तरह से बंद कर दिया है. इस बीच दोनों देशों के बीच चल रही शांति वार्ता पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है. तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुई. थोड़ी देर में शोक समाचार.
13: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv.
12: नंबर 20 बीचवुड गार्डन्स इलफोर्ड इंग्लैंड में नंबर 20 बीचवुड गार्डन्स इलफोर्ड इंग्लैंड में 57 साल के 57 इयर्स ओल्ड के श्री राजीव कुमार को

0: श्री राजीव कुमार को पुल जो राजीव नाम से ज़्यादा जानी जाती थी और जो HSBC के पूर्व मैनेजर थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी बुधवार 27 मई को सपहर 3:30 बजे उनके घर नंबर 33 बी शूट गार्डन्स हिलफोर्ड इंग्लैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फॉरेस्टबर्ग इंग्लैंड की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन ऑन वेंसडे 27 मई एट 3:30 PM। लकाविया नंबर दो वाकुआमी 62 साल की 62 years old की मिसिज फातमून केडू पैदायशी नाम बुरका ताली और जो फातिमून नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई है और उनका जनाजा आज दिन के डेढ़ बजे उनके बेटे जनाब नौशाद केदू के मकान लकाविया नंबर दो वाकुआ से निकाल कर दफनाने के लिए फिनिक्स के कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 1:30 PM। प्लेन डिगाली कौशालू शमैकोनी में 63 साल के 63 years old के श्री सुनील दत्त लोहाओ जो सुनील नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी आज सपहर तीन बजे उनकी पत्नी श्रीमती संगीता लोहाओ के घर प्लेंडिगाली कौशालू शमैकोनी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वेरीगाली की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। वैसे दफनाने के लिए वेरीगाली की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुडे एट 3 PM। शोक में डूबे सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: RM2 Radio Musti Love Lounge RM2 Radio Musti Love Lounge

0: Love Lounge. प्यार, इश्क, मोहब्बत. Love Lounge.
1: 12:12 हो गया है. इट्स अ प्लेजर टू वेलकम यू ऑन रेडियो मस्ती. शुरुआत हो गई है फॉर आज का सफर जो रहने वाला है आप लोगों के लिए अप टिल 2 PM. दिस इज आवर लव लाउंज और यहाँ पर हंसनी का साथ रहने वाला है टू बी विद यू इन द वर्ल्ड ऑफ लव. और ये जो म्यूजिकल जर्नी है हम सेट करेंगे ऑफ कोर्स टू मेक इट मोर कंफर्टेबल, टू मेक इट मोर रोमांटिक एंड ईजी. सो जहाँ पर भी आपका साथ जारी हो गया है इट्स अ वार्म वेलकम. रियली होप कि सब ठीक है. और खाना जो है अभी आप खा रही हो, इट्स लंच टाइम राइट. सो खाना पीना हो रहा है. हमारे पूरे टीम की तरफ से आप सभी को बोना पिछी. वी आर हियर टू मेक इट मोर रोमांटिक. प्यार की दुनिया में है ना, सो कुछ प्यार भरी बातें हम कर लेंगे आपके साथ. ऑन द 549-1294 पर विल बी वेटिंग फॉर योर डेडिकेशंस एंड योर मैसेजेस.
0: Love Lounge.
2: RM2.
3: Radio Musty.
0: Love Lounge.

0: Welcome to RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: Hits music only.
1: Feels a musti.
3: और यहाँ पर म्यूजिक फॉर एवरीवन हम चलाते रहेंगे, ये सताल सताल मिलाते हम रहेंगे ऑन आवर रेड मस्ती फॉर आवर लव लाउंज। और यहाँ पर इशारा है कि कुछ ही पल में हम बढ़ने वाले हैं पोर्ट लुइस शॉ डे मॉस, जहाँ पर लगने वाला है द वेरी फर्स्ट रेस। सो फॉर ऑल द अपडेट्स स्टे वेल कनेक्टेड ऑन द वन एंड ओनली रेड मस्ती।

0: बिल्कुल यहाँ पर हम जुड़े हुए हैं विद द लव सॉन्ग्स, कुछ प्यार भरे गाने जो हम लेकर आ रहे हैं टू एंटरटेन यू इन द वर्ल्ड ऑफ लव विद लव लाउंज, सेलिब्रेटिंग दिस स्पेशल डे 23rd ऑफ मई. और आप तो बिल्कुल रेडी हो गए हो टू मेक इट मोर यादगार, क्योंकि कहते हैं जब कोई लम्हा है जो हमारे लिए खास होता है एंड वी वांटेड टू मेक इट स्पेशल, तो कुछ ना कुछ तो करना चाहिए. सो अगर है कोई ऐसा मैसेज जो दिल के साथ कनेक्टेड है, दिल से उनका नाता है, तो मेक इट एकदम प्रेशियस विद रेडियो मस्ती, जहाँ पर एक ऐसा शो चल रहा है जहाँ पर दिल से दिल की आवाज़ पहुँच जाती है, दिल से हम सुन लेते हैं आपको और दिल से चलाते हैं हमारे रोमांटिक सॉन्ग्स. ऑन 5499-1294 पर हम कर रहे हैं आप लोगों का इंतज़ार. तो मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत वजह हो, जब से तुम मिले हो हर दिन खास लगने लगा है, तुम्हारी मुस्कान मेरे दिल को सुकून देती है, मैं हर पल सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, तुम मेरे दिल की धड़कन हो, अगर तुम साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है, तुम्हारे बिना सब अधूरा सा लगता है. यह मैसेज कमिंग फ्रॉम ऋषि, तो नंदिनी शी इज़ माई ड्रीम गर्ल. और कई हफ्तों के बाद आज मिलने का मौका मिला है और साथ होकर हम एंजॉय कर रही हैं एक रोमांटिक ड्राइव. एंड थैंकफुली टू रेडियो मस्ती जो हमेशा साथ रहता है सफ़र को यादगार बनाने के लिए. ये तो बिल्कुल सही आपने कहा है. तो लव लाउंज में आप दोनों का दिल से वेलकम है और ये जो प्यार है, ये जो कशिश है, वो बस बनी रहे. गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ सेफ ड्राइव. एंड जहाँ पर भी साथ जारी है, मे बी कुछ हमारे फ्रेंड्स काम कर रहे हैं इस समय, सब कुराज आप सभी को, लेकिन कई तो घर पर हैं, मे बी कुछ आराम फरमा रही हैं. आज नो काम, आज छोटे का दिन है, वेरी नाइस. तो कुछ आराम फरमा लीजिए, जस्ट टू बी इन द वर्ल्ड ऑफ लव.
1: लव लाउंज
2: RM2
3: रेडियो मस्ती.
1: लव लाउंज.

0: Radio Musty.
1: Your life is not complete until you have a little musty in your life. Radio Musty. All the way. Welcome to RM2.
2: Radio Musty.
0: Radio Musty.
2: North, South.
0: 103.5.
2: East, West.
0: 96.4.
2: Center.
0: 99.4.
1: RM2.
0: Radio Musty.
1: Radio Musty. The latest news and the greatest mix of music.
2: Radio Musty.
1: Feel the musty.
3: Good afternoon, everyone. Check your time. It's 1 p.m. आइए सुनते हैं समाचार आस्था के साथ. आपको नमस्कार.
4: नमस्कार. 1 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का. खराब सरकार खराब मौसम से निपटने की अपनी रणनीति को मजबूत कर रही है. मूसलाधार बारिश और भारी वर्षा की स्थिति अब सरकारी निजी और शिक्षा सेक्टरों के लिए एक समान राष्ट्रीय प्रोटोकॉल लागू किया गया है. इस दिशा में ये फैसला कल हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया. स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार मॉरिशस के रोजगार सेक्टर में सुधार दर्ज किया जा रहा है. बेरोजगारी दर में गिरावट देखी जा रही है जो कई आर्थिक सेक्टरों में सुधार के संकेत हैं. इसी क्रम में कैबिनेट ने श्रम मंत्रालय को मॉरिशन कामगारों के कनाडा में रोजगार की सुविधा प्रदान करने के लिए मंजूरी दे दी है. ये पहल श्रमिक गतिशीलता परियोजना और अन्य समान कार्यक्रमों के तहत उठाई जा रही है. रिफॉर्म पार्टी के नेता गोशीबादे का मानना है कि सरकार ने अपने कई चुनावी वादों को पूरा नहीं किया है. उन्होंने आज हेनेसी पार्क होटल में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अगले बजट को लेकर कई प्रस्ताव भी सामने रखे. मॉरिशस और अमेरिका के बीच सहयोग को नई मजबूती मिली है. पुलिस फोर्स और न्यू मैक्सिको नेशनल गार्ड के बीच आपदा प्रबंधन सुरक्षा और आपातकालीन हस्तक्षेप को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए. अफ्रीकी विमानन जगत का एक बड़ा नाम अब मॉरिशस की धरती पर उतरने जा रहा है. अफ्रीका की सबसे विमान सेवा बड़ी विमान सेवा इथियोपियन एयरलाइंस को मॉरिशस के लिए उड़ान संचालन की अनुमति मिल गई है. भारत में ज़्यादातर भाग लू की चपेट में हैं. भारी गर्मी दर्ज की जा रही है. कल तापमान 48 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया. अधिकारियों को स्वास्थ्य निर्देश जारी करना पड़ा. उन्होंने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में इस तरह की भारी गर्मी की स्थिति बनी रहेगी. और चीन के शांजी प्रांत में एक कोयला खदान में भयानक गैस विस्फोट पेश हुआ है. इस दुर्घटना में मरने वालों की संख्या 90 को पार कर चुकी है. इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए. बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर. शोक समाचार सुनिए. लकावेन नंबर 2 वाकवा में बासठ साल की 62 ईयर्स ओल्ड की फातमुन खेदू इंतकाल कर गई हैं. पैदाइश नाम बुरकताली. उनका जनाजा आज दिन के 1:30 बजे उनके बेटे नौशाद खेदू के मकान वाकवा से निकालकर दफनाने के लिए फिनिक्स का कब्रिस्तान ले जाया जा रहा है. फ्यूनरल टुडे एट 1:30 PM. कौशल्यू चमेंग्रोनी में 63 साल के 63 ईयर्स ओल्ड के श्री सुनील दत्त लोहर की मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी आज सुबह 3 बजे उनकी पत्नी संगीता लोहर के मकान चमेंग्रोनी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रिविया दिगाली की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमिशन टू दी एट 3 PM. इंग्लैंड में गेंसिल इल्फोर्ड इंग्लैंड में 57 साल के 57 ईयर्स ओल्ड के श्री राजीव कुमार गोपुल की मृत्यु हो गई है. वे पहले मॉरिशस में HSBC में मैनेजर का पद संभाल चुके हैं. उनकी अर्थी इंग्लैंड में बुधवार को उठाई जाएगी वहां के समयानुसार शाम के 3:30 बजे. शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है.
0: Love Lounge.
1: RM2.
2: Radio Musty.
0: Love Lounge.
5: Nile nile ambar par chand jab aaye pyar barsa.
3: Purane gaane sirf sur aur alfaaz nahi hote.

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: Welcome to RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: Hit music only.
1: Feels a musti.
3: जी हाँ, यहाँ पर इस सुपर हिट गानों के साथ वी आर कनेक्टिंग यू विद आज का लव लाउंज। वी आर ऑलरेडी इन द सेकंड आवर। आफ्टरनून वाला ये सफर चल रहा है यहाँ पर हम सिनी का साथ अफ्टर 2 PM। एंड यस, कुछ गुड म्यूजिक के साथ ये जरूरी है टू हैव सम मी टाइम। हफ्ते भर के लिए कितना सारा स्ट्रेस होता है ना, चाहे हम घर के बारे में सोचते हैं, अपनी जिम्मेदारियों के बारे में सोचते हैं, या फिर ऑन द वे टू वर्क जो ट्रैफिक स्ट्रेस होता है, ओ माय गॉड। लेकिन अभी कुछ है हमारे पास ये टाइम टू रिलैक्स एंड टू बी इन द वर्ल्ड ऑफ लव। कुछ रोमांटिक सॉन्ग्स अच्छा लगता है, दैट्स अ वेरी गुड फील। जो म्यूजिकल जर्नी है सेट होने वाला है 2 बजे तक, और यहाँ हंसनी है जो आपके साथ देने वाली है, और आपका साथ अगर हो तो विल मेक इट मोर प्रेशियस, और यादगार हम बनाएंगे इस सफर को। आपके मैसेजेस आई एम वेटिंग फॉर यू 5499129945। वंस अगेन, अगर अभी आपने सुनना शुरू किया है, इट्स अ वार्म वेलकम।

0: Love Lounge, प्यार इश्क मोहब्बत Love Lounge.
1: कुछ कुछ होता है दिल में, सो वाई नॉट, जो दिल की बातें हैं वो आप कह लीजिए ऑन 549-1294 फॉर योर मैसेजेस. दिस इज आवर लव लाउंज अप टिल 2 PM. कुछ रोमांटिक गाने, वाओ दिस इज सो ब्यूटीफुल. इस दिन को और भी मस्त बनाने के लिए कुछ रोमांटिक सॉन्ग्स, कुछ बिहार भरे गाने टू एड सम स्पाइस. और वैसे स्पाइस के बारे में बात हुई है, सो वाई नॉट लेट अस गो टू स्विट्जरलैंड. वहाँ पर बिरयानी की खुशबू ऑलरेडी आ रही है टू मॉरिशस. A big hello to Antish. Really hope ki sab theek hai on your side. Aur preparations bas jaari hai for a yummy delicious biryani, right? So sabhi radio team to aayenge for a delicious treat. Be ready. To yahan par agla jo gana hai wo definitely aapke liye, for your lovely mom and for all your parivar jo kuch to abroad hai aur kuch to Mauritius mein. A big big hello to everyone. Have a fantastic weekend. Aur yahan par we have got Ashley. Hi, hello and welcome in the show. एक गाना प्लीज मेरे लिए हो जाए फॉर माई स्वीट हार्ट अनुषा के लिए. आई वॉन्ट टू टेल हर शी इज वेरी वेरी स्पेशल एंड आई लव हर वेरी मच. आई एम स्टिल एट वर्क एंड बस आपके गाने सुनना है. इसके बाद मैं उनको कॉल करूँगा टू टॉक, क्योंकि सुबह से बात नहीं हुई है. लेकिन अभी आई जस्ट वॉन्ट टू एन्जॉय रोमांटिक सॉन्ग्स. ये तो बहुत ही अच्छी बातें भी कही है. यू वॉन्ट टू बी इन द वर्ल्ड ऑफ लव, ताकि जो प्यार है वो कुछ और गहरा हो जाए. लगे रहो स्टे वेल ट्यून्ड. हाय हंसनी, हेलो स्वेनल, आई है कई दिनों के बाद. एक 90s सुनना चाहेंगी. आई विल ट्राई इट फॉर भाई श्रवण के लिए, फॉर भाभी कृति, फॉर अभिनव किया नव्या, फॉर रितेश एंड सभी तिलक परिवार के लिए, फॉर भाई गुलशन, वो भी तो जबरा फैन है ऑफ 90s ईरा, ये तो हमें पता है. और चलाने की कोशिश करेंगे एक वेरी नाइस सॉन्ग टू मेक इट वेरी ब्यूटीफुल डे आपके लिए. फॉर मिस्टर बाडवाग विदेशी अवतयाक, हेलो जी, आपका भी वेलकम. यू वॉन्ट टू लिसन टू नेहा कक्कर की आवाज़, ये तो हम कोशिश करेंगे टू प्ले वन आपके लिए, आपकी जाने मन अनुषा के नाम. ऑलराइट, सो जहाँ पर भी आपके स्वीट हार्ट है और उनके नाम है कोई खास मैसेज, सो वाई नॉट, आई एम वेटिंग ऑन 549-1294. यहाँ पे हम सनी है जो आपके साथ है

0: 2. Radio Musti. Behind every piece at Fab India, there's a pair of skilled hands. Artisans who weave, dye, print, and craft with passion, keeping centuries of tradition alive. Today, that craftsmanship is here for you to discover. Explore Fab India's handcrafted clothing and beautiful home pieces at Centerpoint Mall, Triano. Fab India, a celebration of craftsmanship. RM2
1: Radio Musti.
0: Love Lounge.
1: RM2
2: Radio Musti.
0: Love Lounge.
3: Yes, so we are connected with आज का लव लाउंज विद वर्ड्स ऑफ रोमांटिक गाने और यहाँ पर स्टे वेल ट्यून्ड का रिपोर्ट और यहाँ पर इशारा है कि कुछ ही पल में हम बढ़ेंगे पोर्टवेस्टर शादी जहाँ पे लगने वाला है द थर्ड रेस

0: Love Lounge. Yeah, Ishq Mohabbat. Love Lounge.
1: Yes, connecting you with the best of romantic songs. Yahan par time ho chala hai to have some dedications. A big hello to you, Kamaldeep ji. Thank you so much for your caring message. Haan ji, welcome. We need to take very good care of our voices. Aur ye to hai climatic change ki wajah se na. So, jitne bhi hamare friends, abhi haal kuch aisa hai. We need to take lots of vitamin C and... आवाज का ख्याल रखिए प्लीज. नेक्स्ट गाना जाएगा फॉर पति राकेश के लिए. आज उनका बर्थडे है. लॉट्स ऑफ गुड विशेस टू हिम फ्रॉम स्वीट वाइफी, जिन्होंने हम उनको याद किया है. इसके बाद चलेंगे स्विट्जरलैंड, ओमा जी के यहाँ. वेलकमिंग ओमा फ्रॉम स्विट्जरलैंड टू मॉरिशस.

0: आज बड़ी दीदी जो आपके यहाँ रहती है और आज उनका भी बर्थडे है, सेलिब्रेटिंग द स्पेशल डेट विद योर बड़ी दीदी. वी हैव विशेस कमिंग फ्रॉम उमा, रुमीला, बसंती एंड इटली से जितने भी परिवार है, सेंडिंग लॉट्स ऑफ विशेस टू योर बड़ी दीदी. गॉड ब्लेस हर. रोशनी जी का साथ है फ्रॉम कैटबोन. कैसी हो हंसनी? रिकवरिंग ग्रेजुअली. और यहाँ पर गाना है फॉर अच्छा आपके लिए एंड यू हैव अ रिक्वेस्ट फ्रॉम 1921. ये तो हम कोशिश करेंगे, अगर नहीं तो जब हम अगली बार आएंगे तो ज़रूर ये गाना पेश करने आएंगे आपके लिए. थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वी हैव इट फॉर विकास सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे आज. लॉट्स ऑफ गुड विशेस आपके लिए. हैप्पी बर्थडे जी. और रोमांटिक सॉन्ग्स जो आपको बहुत ही पसंद है, रियली एन्जॉय रेडियो मिस्ट्री जब ऐसे रोमांटिक गाने चलते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है. थैंक यू फॉर योर अप्रिसिएशन एंड फॉर योर सपोर्ट. चलिए अगला जो गाना है हम डेडिकेट करेंगे सभी प्यार करने वालों के लिए. और इसके साथ टाइम फॉर मी टू वेव गुड बाय. थैंक यू फॉर आज का प्यार जो आपने पहुंचाया है इन आज का लव लाउंज. 2 बजे सुनेंगे समाचार, इसके बाद आएगी परी लेकर आज का प्लग एंड प्ले शो.
1: लव लाउंज RM2
2: रेडियो मस्ती.
1: लव लाउंज.

0: to Radio Mosti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Pa-da-pa-pa-pa. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
4: 103.5.
3: East, West,
4: 96.4.
3: Center,
4: 99.4.
5: RM2
0: Radio Musti.
5: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Musti.
5: Feel the Musti.
6: Good afternoon, everyone. Check your time. It's 2 p.m. आइए सुनते हैं समाचार आस्था के साथ. आपको नमस्कार.
7: नमस्कार. 2 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का. खराब मौसम से निपटने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाए हैं. मूसलाधार बारिश की स्थिति में अब सरकारी, निजी और शिक्षा सेक्टर के लिए एक समान राष्ट्रीय प्रोटोकॉल लागू किया गया है. ये फैसला कल हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया. स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश के रोजगार बाजार में सुधार दर्ज किया जा रहा है. बेरोजगारी दर में गिरावट आई है जो कई आर्थिक क्षेत्रों में तेज होती गतिविधियों का संकेत मानी जा रही है. इसी क्रम में कैबिनेट ने मॉरिशन कामगारों के कनाडा में रोजगार को लेकर श्रम मंत्रालय को हरी झंडी दे दी है. ये पहल श्रमिक गतिशीलता परियोजना और अन्य समान कार्यक्रमों के तहत शुरू की जा रही है. रिफॉर्म पार्टी के नेता खुशी बादे ने सरकार पर कई चुनावी वादे पूरे न करने का आरोप लगाया है. उन्होंने हेनेसी पार्क होटल में आज आयोजित एक प्रेस सम्मेलन के दौरान आगामी बजट को लेकर कई आर्थिक प्रस्ताव भी सामने रखे. और एक अन्य बड़ी खबर, मॉरिशस और अमेरिका के बीच सुरक्षा सहयोग को नई मजबूती मिली है. मॉरिशन पुलिस फोर्स और न्यू मैक्सिको नेशनल गार्ड के बीच आपदा प्रबंधन, सुरक्षा और आपातकालीन हस्तक्षेप को लेकर एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं. अफ्रीकी विमानन जगत की दिग्गज विमान सेवा इथियोपियन एयरलाइंस अब मॉरिशस के लिए उड़ान सेवा शुरू करने जा रही है. अफ्रीका की सबसे बड़ी एयरलाइन को मॉरिशस के लिए संचालन की अनुमति दे दी गई है. चीन के शांची प्रांत में एक कोयला खदान में हुए भीषण गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या 90 को पार कर चुकी है. हादसे के बाद कई लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं जबकि राहत और बचाव कार्य जारी है. इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए.
8: Quatrième saison débat climat peut continuer. Ban participants pour continuer débattre aux bannes questions climatiques qui concernent nos pays et nos planètes. Débat climat, c'est une initiative MCB et Rajiv Gandhi Science Center avec collaboration Dr François Gemen, spécialiste dans l'environnement. Rendez-vous samedi 23 mai pour la suite compétition débat climat à partir de 8h30 à soir au MBCN et MBCSAT.
9: À l'occasion lancement MBC Play, prépare-vous pour décoller. MBC, en collaboration avec Mauritius Helicopter Limited, peut offrir la chance des grands gagnants pour un pot d'étiquette Saken pour un Helicopter Joyride exceptionnel dans Région Sidis, l'île Maurice. Pour participer, download l'application MBC Play et créez un compte. Depuis les 18 jusqu'à les 28 mai.

सो वेल फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ ब्यूटीफुल सॉन्ग्स आपके लिए. इट्स टाइम जहाँ पर हम प्लग एंड प्ले लेकर आए हैं आपके नाम. सो साथ देते रहिए एंड बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक आपके लिए. आफ्टर ब्यूटीफुल सॉन्ग्स ऑफ हंसनी, इट्स टाइम कि हम थोड़े और गाने आपके लिए पेश करें और साथ ही साथ टाइम टू टाइम लेकर चलेंगे आपको शॉन देमास फॉर योर रेसेस. परी का साथ राइट हियर ऑन आरएम2 रेडियो मस्ती टिल 2-4 PM.

0: RM2.
1: Radio Musty feels a Musty.

0: RM2.
1: Radio Musty. Feels a Musty.

0: quatrième saison débat climat peut continuer. Ban participants pour continuer débattre ban questions climatiques qui concernent nous pays et nous planète. Débat climat, c'est une initiative MCB et Rajiv Gandhi Science Center avec collaboration Dr François Gemène, spécialiste en environnement. Rendez-vous samedi 23 mai pour la suite compétition débat climat à partir 8h30 à soir au MBCN et MBCSAT.
1: RM2 Radio Musty.
2: Hit music only.
3: Radio Musty feels a musty.
4: तो चलिए दोस्तों, इट्स 2:32 कनेक्टेड है आप RM2 रेडियो मस्ती के साथ एंड इट्स टाइम टू प्ले अ गेम आपके साथ. सो स्टे कनेक्टेड RM2 रेडियो मस्ती के साथ एंड खेलिए एक्साइटिंग गेम पावर्ड बाय ग्रेविटी जीरो एंड टिकट बॉक्स MU. जीतिए एक प्लैटिनम टिकट फॉर स्पेक्टेक्युलर जुबिन नौटिया लाइव कॉन्सर्ट होने वाला है ऑन 30th of May 2026 एट SBICC पार्क. इसे जीतने के लिए आपका सवाल, आप भी इस मेस्मराइजिंग आवाज को सुन सकते हैं लाइव जुबिन नौटिया सोलफुल वॉइस रोमांटिक हिट्स एंड हार्ट टचिंग मेलोडीज के किंग. राता लंबिया गाना हो या फिर लुट गए, ये जो गाने उन्होंने एकदम मैजिकल बनाए हैं उनकी आवाज के साथ. और साथ ही साथ अगर उनके मैजिकल लाइव परफॉर्मेंसेस परफॉर्मेंसेस की अगर हम बात करें, देखिए यहां पर इनका नाम आते ही हमारी

जबान थोड़ी सी लड़खड़ाने लगी है, लेकिन जैसे हम कहते हैं कि जुबिन नौटियाल और उनकी आवाज़ एकदम मैजिकल और मेस्मराइजिंग, जहां पर उनकी लाइव परफॉर्मेंसेस से ऑडियंस को वो हमेशा एंटरटेन करते हैं, और इसी एंटरटेनिंग कॉन्सर्ट का हिस्सा आप भी बन सकते हैं। मौका मिल रहा है आपको जीतने का एक प्लैटिनम टिकट। सो आपके लिए सवाल, इट्स वेरी सिंपल, जुबिन नौटियाल का कॉन्सर्ट आपके लिए हम लेकर आए हैं, और अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, अ सिंपल क्वेश्चन, आपके नाम, आपको हमें बताना है उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनका जो जन्म है किस तारीख पे हुआ था। सो यू कैन शेयर योर आंसर्स 54991294 पर, 54991294 पर, आपके पूरे नाम और पते के साथ भेजिए आपके सही जवाब, और क्या पता बन जाए आप हमारे लकी लकी विनर। सो ऑल द बेस्ट।

0: Plug and play.
1: RM2 Radio Musty.
2: So, चलिए दोस्तों, जुबिन नौटियाल से जुड़ा हुआ हमारा ये सवाल है, आपको हमें बताना था उनकी डेट ऑफ बर्थ एंड द राइट आंसर इज 14 June 1989. यहाँ पर हमें मिले बहुत सारे सही जवाब. लकी ड्रॉ के बाद हमें मिल गए हैं लकी विनर भी. एंड द राइट आंसर देने के बाद जो हमारे लकी विनर बने हैं, आप हैं मिस्टर हेमराज सरहोए, आप हैं लाल माटी से. कॉन्ग्रेचुलेशंस.

सो वेल मिस्टर हेमराज दी, आप आरएम टू रेडियो मस्ती के साथ और खेला आपने ये एक्साइटिंग गेम पावर्ड बाय ग्रेविटी जीरो एंड टिकट बॉक्स डॉट एम यू. जीती है आपने एक प्लैटिनम टिकट फॉर स्पेक्टेक्युलर जुवेनॉटिया लाइव कॉन्सर्ट होने वाला है ऑन 30th of May 2026 एट SBICC 5. बुकिंग्स अवेलेबल है ऑन टिकट बॉक्स डॉट एम यू 2146464 2146464. इस नंबर पर आप अपनी बुकिंग्स करवा सकते हैं. एंड वंस अगेन जीत गए हैं एक प्लैटिनम टिकट मिस्टर हेमराज. सो बस अभी के लिए जो नेक्स्ट गाना है गोज आउट फॉर यू एंड इक्वली गोज आउट फॉर ऑल द फैंस ऑफ जुबिन नौटियाल. लेडीज एंड जेंटलमैन डू नॉट मिस दिस स्पेक्टेक्युलर कॉन्सर्ट होने वाला है ऑन 30th of May at SBICC 5 and this game was powered by Gravity Zero and Ticketbox.mu. सो वेल दोस्तों अभी के लिए इट्स टाइम फॉर योर प्लग एंड प्ले. मैं हूं परी आपके साथ. थोड़ी ही देर में लेकर चलेंगे आपको शॉ दे मास फॉर योर रेसेस. कहीं मत जाइए, स्टे वेल ट्यून्ड टू आरएम2 रेडियो मस्ती.

0: FM 2
1: Radio Musti.
2: Celebrate Mother's Day with fabulous trend. Come and visit us on the 30th of May for a special Mother's Day promo of 30% discount on all items with surprises and gifts for everyone. Any amount you spend on that day, we will offer you same amount of other products as gift. A buffet will be served to everyone present. Fabulous Trend, Nouvelle France. Open as from 9 a.m. till midnight. See you there.
0: RM2
1: Radio Musti.
3: So well friends, welcome back after races. It's music time. और इसी गाने के साथ हम बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट आवर की ओर. ठीक 3 बजे सुन पाएंगे आप समाचार. उसके बाद म्यूजिक कंटिन्यूज. इट्स टाइम फॉर योर प्लग एंड प्ले. मैं हूं परी आपके साथ राइट हियर ऑन RM2 रेडियो मस्ती. फॉर नाउ वी हैव जावेद अली की आवाज में ये खूबसूरत सा गाना, एक रोमांटिक ट्रैक आपके सैटरडे को थोड़ा सा मैजिकल बनाने के लिए. साथ दे रहे हमारे सभी लिसनर्स, दिस वन गोज आउट फॉर यू.

0: to Radio Mustin.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Pa-da-pa-pa-pa. I'm loving it.
1: And Alokik, gel air freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2.
0: Radio Musti.
4: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Musti.
4: Feel the Musti.
5: Time check, 3 p.m. सुनते हैं देश विदेश की खबरें आस्था से. आपको नमस्कार.
6: नमस्कार. 3 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का. खराब मौसम से निपटने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. मूसलाधार वर्षा की स्थिति में अब सरकारी, निजी और शिक्षा सेक्टर के लिए एक समान राष्ट्रीय प्रोटोकॉल लागू किया गया है. ये फैसला कल कैबिनेट की बैठक के दौरान लिया गया. स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश के रोजगार बाजार में सुधार दर्ज किया जा रहा है. बेरोजगारी दर में गिरावट आई है जो कई आर्थिक सेक्टरों में तेज होती गतिविधियों का संकेत है. कैबिनेट ने मॉरिशस कामगारों के कनाडा में रोजगार को लेकर श्रम मंत्रालय को हरी झंडी दे दी है. ये पहल श्रमिक गतिशीलता परियोजना और अन्य समान कार्यक्रमों के तहत शुरू की जा रही है. रिफॉर्म पार्टी के नेता गुशीबादे ने सरकार पर कई चुनावी वादे पूरे न करने का आरोप लगाया. उन्होंने आज एबन में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान आगामी बजट को लेकर कई आर्थिक प्रस्ताव भी सामने रखे. मॉरिशस और अमेरिका के बीच सुरक्षा सहयोग को नई मजबूती मिली. मॉरिशस पुलिस फोर्स और न्यू मैक्सिको नेशनल गार्ड के बीच आपदा प्रबंधन, सुरक्षा और आपातकालीन हस्तक्षेप को लेकर एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए. अफ्रीकी विमानन जगत की दिग्गज विमान सेवा इथियोपियन एयरलाइंस अब मॉरिशस के लिए उड़ान सेवा शुरू करने जा रही है. अफ्रीका की सबसे बड़ी एयरलाइन को मॉरिशस के लिए संचालन की अनुमति दे दी गई है. चीन के शानशी प्रांत में एक कोयला खदान में हुए भीषण गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या 90 को पार कर गई है. हादसे के बाद कई लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं. राहत कार्य जारी है. इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए. बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर. मेजोनेट रोड रिविया दिसंगी में 80 साल के 80 साल के श्री सुबाया जगनंदन की मृत्यु हो गई है. लोग उन्हें रामदास के नाम से अधिक जानते थे. उनके अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके बेटे जेसन जगनंदन के मकान रिविया दिसंगी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ताया की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM. केवल नगर बेलरीव में 57 साल के 57 years old के धर्मराज बागेराची की मृत्यु हो गई है. लोग उन्हें आदू के नाम से अधिक जानते थे. उनके अर्थी कल दिन के 10 बजे उन्हीं के मकान केवल नगर बेलरीव से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्वाइलो ओलिविया की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM. शोक में डूबे इन दोनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है.
0: On NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
7: Plug and play.
4: RM2.
3: Radio Musti.
7: Plug and play.

0: RM2 Radio Musti.
1: Hit music only.
2: Radio Musti feels a musti.
3: लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का स्वागत. 3:06 हो गए हैं. सैटरडे आफ्टरनून, इट्स टाइम फॉर योर प्लग एंड प्ले. मैं हूं परी आपके साथ टिल 4 PM. बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक आपके लिए. जैसे हमने कहा कि आपके लिए कुछ खास एंड स्पेशल हमेशा होता रहता है, बिकॉज इट्स योर वीकेंड. एंड वीकेंड हो या फिर नॉर्मल डे, बस आपके इस दिन को खास बनाने की कोशिश हम करते रहते हैं. अभी के लिए इट्स अ म्यूजिकल सैटरडे एंड यू आर कनेक्टेड रेडियो मस्ती के साथ. एंजॉय दिस वन.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti.
2: So well, ladies and gentlemen, with this beautiful track, हम बढ़ने वाले हैं आपके समाचारों की ओर. समाचारों की नहीं, बल्कि आपके races की ओर. Well, लेकर चलेंगे आपको शौंदे मास for your races. So कहीं मत जाइए, stay well tuned to RM2 Radio Musti.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a Musti. Radio Musti.
2: So, well, best mix of music आपके लिए on RM2 Radio Masti. अभी के लिए विजय जी हमारा साथ दे रही हैं आप. Welcome to the show. And कहते हैं that like the song जो धुरंधर में जुबिन नौटियाल ने गाया है, actually it's a very heart touching song. और अब तो हम उनके कुछ live performances enjoy कर पाएंगे on 30th of May. So well, note the date. मुलाकात तो होगी ऐसा हम सोच रहे हैं और आइएगा जरूर. जो भी हमारे listeners हैं, बस आपसे कहेंगे कि ये मौका हाथ से जाने ना दे. 30th of May grand concert of Jubin Nautiyal live in Mauritius. साथ ही यहाँ पर शामिली हुकुम साथ दे रही हैं आप कटरबोन से और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं. सो थैंक यू सो मच. एंड वेल यू सेंट द राइट आंसर, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हुआ. बट कीप पार्टिसिपेटिंग बिकॉज जीतने के मौके तो आपको मिलेंगे बार बार ऑन RM2 रेडियो मस्ती. साथ ही यहाँ पर मैं नाक्षी साथ दे रही हैं आप एंजॉय द सिलेक्शन. सो ऐसे ही कुछ प्यारे गाने आपके लिए हम लेकर आए हैं, साथ दे रहे हैं आप. सो आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशन ऑल्सो 5499-1294 पर. और अभी के लिए एक और ब्यूटीफुल ट्रैक फॉर ऑल जो कनेक्टेड है रेडियो मस्ती के साथ.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.

0: to
1: Radio Musti.
2: Main aa raha
3: Jubin Nautiyal. Live in Mauritius on Saturday, 30th of May. At SVICC Pi, winner of the Best Singer Award of 2025. Join us for a rocking concert with the best singer in Bollywood of our time. Do not miss it. Get your tickets at ticketbox.mu or call hotline 214-6464. Another great event organized by Gravity Zero.
0: RM2
1: Radio Musti.
4: You're listening to RM2 or Radio Musti.
5: तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक आपके लिए एंड कुछ प्यारे गाने अभी के लिए गजेंद्र वर्मा की आवाज़ एंड दिस ब्यूटीफुल ट्रैक गोज आउट फॉर एवरीवन जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं. स्पेशली गोज आउट कविता आपके लिए, साथ देने के लिए शुक्रिया एंड यू एंजॉइंग द सिलेक्शन. सो दिस वन गोज आउट फॉर यू मिस्टर कुमार देवीचंद. साथ दे रहे हैं आप एंजॉइंग द प्रोग्राम एंड डेडिकेटिंग गाना फॉर पापा श्याम देवीचंद. सभी परिवार, सभी अपनों के नाम एक स्वीट सा डेडिकेशन. सो ये गाना हम डेडिकेट कर रहे हैं आपके लिए एंड वेल यहाँ पर निर्मला जी हमारा साथ दे रही हैं आप. थैंक यू सो मच. लालमाती से साथ दे रही हैं आप. कहती हैं कि आज शाम को परिवार घर आने वाले हैं और उनके लिए कुछ स्पेशल तैयारी कर रही हैं. यू आर इन द किचन एंड लिसनिंग टू द सॉन्ग्स ऑन रेडियो मस्ती. धन्यवाद साथ देने के लिए, शुक्रिया. सो वेल, अभी के लिए तो आपके खाने में घुल रहे हैं हम थोड़ा सा म्यूजिकल तड़का. सो दिस वन गोज आउट फॉर यू और साथ देने के लिए शुक्रिया. एंड वी ऑल्सो हैव अंशनी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं आप. थैंक यू जी. डेडिकेटिंग गाना फॉर समवन वेरी स्पेशल. कहती हैं कि अभी तो हमसे थोड़े से नाराज है लेकिन उनके नाम एक डेडिकेशन और बस मैसेज दैट यू आर मिसिंग हिम सो सो मच. चलिए तो ये गाना उनके नाम एंड आपके नाम भी.

0: घर मिलाते चलिए शाम के 4:04 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आस्था से। नमस्कार।
1: नमस्कार। 4 के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। कैबिनेट ने विभिन्न नगर पालिकाओं में लोर्ड मेयर और मेयर के चुनावों की तारीखें तय कर दी हैं। बोबासन रूसल नगर पालिका में चुनाव शनिवार 23 मई को होगा, जबकि कट्रोबोन पोर्टलुई वाकुआ फिनिक्स और क्यूपेप नगर पालिकाओं में नए मेयर के चुनाव सोमवार 25 मई को आयोजित किए जाने वाले हैं। कैबिनेट ने नैरोबी में आयोजित अफ्रीका फॉरवर्ड समिट में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम की भागीदारी के परिणामों का जायजा लिया। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने शांति और सुरक्षा, ब्लू इकोनॉमी, जलवायु परिवर्तन, समुद्री सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जैसे अहम मुद्दों पर अफ्रीकी देशों के बीच साझेदारी मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस अवसर पर उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल माक्रों, केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो, राष्ट्रसंघ संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंटोनियो गुटेरेस समेत कई अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी लगाई। कैबिनेट ने देश भर में मूसलाधार बारिश के दौरान लागू किए जाने वाले राष्ट्रीय प्रोटोकॉल को मंजूरी दे दी है। इसके तहत सरकारी और निजी दफ्तरों, आपातकालीन सेवाओं तथा स्कूल और यूनिवर्सिटियों के लिए एक समान नियम होंगे। नए प्रावधानों में खराब मौसम के दौरान काम, आवाजाही और सुरक्षा को लेकर साफ दिशा निर्देश तय किए गए हैं। रविवार शाम से हज की शुरुआत होने जा रही है और इसी तैयारी के तहत मंत्री शकील मोहम्मद ने सऊदी अरब के जेद्दा में हज से जुड़ी एक अहम अंतर्राष्ट्रीय बैठक में भाग लिया। बैठक में हज के इंतजाम, यात्रियों की सेहत और दूसरी सुविधाओं को लेकर सऊदी अधिकारियों के साथ चर्चा हुई। एमओआरए के इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग सिस्टम से अब तक 1000 से ज़्यादा कंपनियां जुड़ चुकी हैं। साल 2024 से चरणबद्ध तरीके से शुरू की गई ये प्रणाली अब मध्यम स्तर की कंपनियों तक भी बढ़ाई जा रही है। ई इनवॉइसिंग का उद्देश्य कंपनियों की टैक्स व्यवस्था को आधुनिक बनाना, पारदर्शी बनाना और प्रक्रिया को अधिक तेज और प्रभावी बनाना है। चीन के शांजी प्रांत में स्थित एक कोयले खदान में हुए भीषण गैस विस्फोट में कम से कम 90 लोगों की जानें चली गई हैं। ये हादसा शुक्रवार देर रात उस समय हुआ जब खदान के भीतर 240 से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे थे। राहत और बचाव अभियान जारी है, जबकि दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने घायलों के इलाज और बचाव कार्य में कोई कसर न छोड़ने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए।
2: Music, Dr. Gutter. RM2, Radio Musti.

0: Music Taktakata.
1: RM2 Radio Musti.
2: ऑलराइट कल मिलने का वादा किया था और मूड तो अभी वही है, यानी कि वीकेंड को हम ऑल सेट और ऑल वेलकम कर रहे हैं. ऑफ कोर्स आप सभी का हम वेलकम भी कर रहे हैं ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती, जहां पर दिव्या का साथ है भी से लेकर शाम के 7 बजे तक. कहने को तो वक्त बहुत ही है, लेकिन बिलीव मी इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई बस ये वक्त निकल जाएगा. और चलिए जब वक्त निकलेगा तभी आपको याद दिलाएंगे. फिलहाल के लिए आगे देखेंगे और what's next. Of course, खूबसूरत गीतों के साथ हमको entertain करते रहेंगे and we have loads and loads of beautiful गाने आप लोगों के लिए. और साथ में आज खाली हाथ बिल्कुल नहीं आए हैं, क्योंकि लेकर आए हैं आपके लिए कुछ games. तो of course आप तैयार हो जाइए और हम भी कुछ question के साथ तैयार हो जाते हैं, आपके साथ खेलेंगे गेम. सो बिल्कुल आप अपने सही जवाब हम तक पहुंचा सकते हैं 5499-1294. और ये सिर्फ गेम खेलने का नंबर नहीं है, बल्कि आप अपने मैसेजेस भी हम तक पहुंचा सकते हैं on the same magical number that is 5499-1294.
0: Music Taktakata.
1: RM2 Radio Musti.

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: ऑलराइट, हमने कहा था कि हम बिल्कुल खाली हाथ नहीं आए हैं और ऑफ कोर्स विल बी प्लेइंग सम गेम्स विद यू। और अभी के लिए हम खेल रहे हैं विद रीवा एक्सेलेंस। और आपको ज़रूर अगर हमारे साथ खेलते हैं तो आपको मौका मिलता है टू विन अ गिफ्ट वाउचर वर्थ 500 रुपीज ऑफर टू यू बाय रीवा एक्सेलेंस एट सेंटर पॉइंट थ्रियानो दिस मदर्स डे। तो डोंट Miss the Champions League final live at Center Point Triano, big screen, big vibes. And चलिए इसके सिलसिले में आपको ज़रूर डिटेल्स शेयर करते रहेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए गेम तो आपको ज़रूर खेलना होगा इस इनाम को जीतने के लिए। तो आपसे बस यही सवाल करेंगे, इट्स अ वेरी वेरी ईजी क्वेश्चन। अगर आप इस सही जवाब जानते हैं तो

0: तो आपके मैसेजेस का हम बिल्कुल हम इंतजार करेंगे ऑन 5499-1294। बस आपको अगला डायलॉग सुनना है और हमें बताना है कि ये कौन सी मूवी से लिया गया है। बस आपको अगला डायलॉग सुनना है और हमें बताना है कि ये कौन सी मूवी से लिया गया है।
1: मौसम मौसम मौसम मस्ती मित्र ना थे तुम तो वीराना, अब जो आ गए हो तो जहां मैं बाहर आ गया है। अब क्यों फिक्र करें हम अंजाम की यारो, आओ जान से जान टकराए यारो।
2: RM2 Radio Musti in the mix. Radio Musti in the mix.
0: ऑलराइट, आपको हमें बताना है कि ये जो डायलॉग आपने अभी अभी सुना ये कौन सी मूवी से लिया गया है। वेटिंग फॉर योर राइट आंसर्स ऑन 5499-1294।

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती.
2: Wow, that was a beautiful गाना taken up from the movie Fiza. And चलिए अभी के लिए हमने कुछ ही देर पहले आपसे एक डायलॉग सुनाया था और आपको हमें बताना था कि ये कौन सी मूवी से लिया गया है. चलिए एक बार फिर से वो डायलॉग हो जाए.

0: फिक्र करें हम अंजाम की यारो, आओ जान से जान टकराए यारो।
1: ऑल राइट, आपको हमें बताना था कि ये कौन सी मूवी से लिया गया है और काफी लोगों ने सही जवाब दिए, ऑलमोस्ट सब लोगों ने सही जवाब दिए। बट आपको तो पता है कि गेम का रूल है कि बस एक ही लकी विनर को चुना जाता है, एंड द राइट आंसर इज देवदास। यस, द राइट आंसर इज देवदास। एंड यहाँ पर लकी ड्रॉ करने के बाद हमारा लकी विनर कौन है, चलिए हम देखते हैं। यस, हमारा लकी विनर है विदुषा कुसौ सिंह ऑफ सिबास्तुपोल। Congratulations to you, Vidusha. Of course, आपको मौका मिला है to play with Riva Excellence और आपको मिल रहा है ₹500 का gift voucher offered to you by Riva Excellence at Centerpoint Trianon this Mother's Day. And don't miss the Champions League final live at Centerpoint Trianon. Big screen, big vibes. तो जरूर वहाँ पर जाइए and feel the vibes and get the vibes. तो thank you so much, Vidusha, हमारे साथ खेलने के लिए। और आपको हम बता देते हैं कि ये जो voucher है आप तक post किया जाए एंड चलिए जितना पॉसिबल हो सके तो आप यहां पर अपने आपका एड्रेस भी लिखा है, तो आवर टीम विल गेट बैक टू यू फॉर मोर डिटेल्स। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग विद अस।
2: म्यूजिक टक टक आता
3: आरएम2 रेडियो मस्ती।

0: म्यूजिक टक टक टक
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: बिल्कुल आप गुमशुदा नहीं हैं और आपको गुमशुदा नहीं होने देंगे क्योंकि यहाँ पर ऑफ कोर्स कल की तरह वी हैव सम गुड न्यूज़ टू शेयर विद यू एंड वो ये है कि बहुत ही जल्द हमारे बीच द वर्सटाइल द वेरी वन एंड ओनली जुबी नौटियाल मॉरिशस आने वाले हैं फॉर अ धमाकेदार कॉन्सर्ट. तो डेफिनेटली आपसे हम मांग करेंगे कि आप इसको बिल्कुल ना मिस करें. एंड द कॉन्सर्ट विल बी हेल्ड ऑन सैटरडे 30th May 2026 as from 8 PM at SVICCPI. और वैसे अगर आप इंटरेस्टेड हैं टिकट्स को बुक कराने के लिए या फिर आप रिजर्वेशन कराना चाहते हैं तो यू कैन डू इट थ्रू हॉटलाइन और हॉटलाइन का नंबर है 2146464 2146464 और ये आप कर सकते हैं ऑन ticketbox.mu. एंड लेट मी टेल यू कि इस कॉन्सर्ट को ऑर्गेनाइज किया गया है बाय ग्रेविटी जीरो एंड टिकट बॉक्स. सो डू नॉट मिस दिस वेरी स्पेशल कॉन्सर्ट जो होने वाला है सैटरडे 30th May 2026. तो चलिए जुबिन नौटियाल के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है. वेरी वेरी हम्बल वेरी डाउन टू अर्थ सिंगर एंड वैसे ये अच्छाई उनके चेहरे पर झलक ही जाता है और एक आर्टिस्ट की खूबियत यही है कि ही नीड्स टू बी डाउन टू अर्थ ताकि लोगों का दिल वो जीत पाए. एंड जुबिन नौटियाल एक से बढ़कर एक गाने गा रहे हैं आजकल इन द बॉलीवुड इंडस्ट्री और वैसे आजकल उनका बहुत बहुत ही डिमांड है. आवाज़ तो उनका

0: बहुत ही गोल्डन है। तो चलिए अभी के लिए एक जुबिन नौटियाल की आवाज में एक खूबसूरत सा गाना हो जाए।
1: म्यूजिक टक टक आता है।
2: RM2 रेडियो मस्ती।

0: साथ एक गेम खेलने के लिए एकदम तैयार हैं। एक बार फिर से वी आर प्लेइंग विद रुईवा एक्सेलेंस एट सेंटर पॉइंट। एंड चलिए एक बार फिर से, अगर आपकी जीत होती है तो आपको मौका मिलता है टू विन अ 500 गिफ्ट वाउचर ऑफर टू यू बाय रुईवा एक्सेलेंस एट सेंटर पॉइंट त्रियानो दिस मदर्स डे। तो चलिए इस बार हम डायलॉग लेकर नहीं आए हैं बल्कि एक गाना लेकर आए हैं। यस, अ वेरी ब्यूटिफुल वन। बस इस गाने को सुनना है और हमें बताना है कि ये गाना कौन सी मूवी से लिया गया है। अगर आपको सही जवाब पता है तो वेटिंग फॉर योर राइट आंसर्स ऑन 5499-1294 पूरे नाम और पते के साथ। प्लीज नोट कि ये वाउचर आप तक पोस्ट किया जाएगा तो आपका एग्जैक्ट और सही एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिस तरीके से आपका नाम आईडी कार्ड में लिखा जाता है उसी हिसाब से आप अपना नाम भी हम तक भेजें। सो वेटिंग फॉर योर राइट आंसर्स ऑन 5499-1294 ऑल द वेरी बेस्ट। डोंट फॉरगेट, अगला गाना ध्यान से सुनिए और दीजिए सही जवाब।
1: Music, tuk-tuk-tuk. RM2, Radio Musti.

0: जवाब दिए, बट चलिए यहाँ पर कुछ कुछ लोगों ने सही जवाब दिए एंड इसी के साथ हमने लकी ड्रॉ किया. एंड द राइट आंसर इज दिस गाना इज टेकन फ्रॉम द मूवी चार दिन की चांदनी. यस, एंड यहाँ पर लकी ड्रॉ करने के बाद वी हैव आवर लकी विनर. कंग्रेचुलेशंस टू यू प्रेमिला जी, आप है प्रेमिला सीताराम ऑफ Petit Riviera, and aapko once again many congratulations, and you are getting 500 rupees voucher offered to you by Riva Excellence Artist Center Point Trianon this Mother's Day. And also don't miss the Champions League final live at Center Point Trianon. Big screen, big vibes, to zarur jaakar isko feel kijiyega. So once again Premila ji, aapko many many congratulations. Ye जो वाउचर है अब तक पोस्ट किया जाएगा. सो चलिए एंजॉय कीजिए एंड कीप प्लेइंग विद रेडियो मस्ती.
1: म्यूजिक टक टक आता
2: आरएम2 रेडियो मस्ती.

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: के राधा रानी नाचे एंड चलिए खुशी से हम भी नाच रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पर हमारा लकी विनर मिल गया है। वेल, हमने सवाल किया था कि ये गाना कौन सी मूवी से लिया गया है। काफी लोगों ने

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: RM2
1: रेडियो मस्ती.
3: Attention moustiques, plus qu'il y a 1 million de monde dans le monde beau s'acclané à cause moustiques. Et un risque qu'il y a un chikungunya et dingue. Pas oublier, prends ou précaution. Moustiques peuplés dans d'îlot qui posait. Débarrasse d'îlot qui accumulait l'eau dalle. Couvert bien ban réservoir d'îlot. Débarrasse d'ouvan kitseuse qui ramasse d'îlot. Comment boîte conserve vide, capsule et que les œufs décès. Mette ban vieille la roue dans une place couverte ou soit sévili pour planter. Sans d'îlot dans vase à flair au moins une fois par semaine. Dévite d'îlot qui accumulait dans ce qui nous connaît comment. Sous-coupe pour flair. Nettoie bien ou l'entourage et débarrasse tout feuille et ban saleté. Mette ban linge qui bien couvert pour éviter que moustique pique ou. Servi moustiquaire. Servi ban produit anti-moustique. Pour tout renseignement, téléphone hotline ministère de la Santé et Bien-être, l'O 89D4. C'est une initiative ministère de la Santé et Bien-être en collaboration avec l'Organisation Mondiale de la Santé.
2: RM2
1: Radio Musti.
0: Music Taktakata
1: RM2 Radio Musti.
4: इसमें तो कोई शक नहीं है कि कोई आप जैसा मिल जाए तो बात बन जाए एंड आपके आने से तो बाहर आ जाती हैं और हमारा दिल भी लगा रहता है और आपके मन को थोड़ा सा और बहलाने के लिए दिल को थोड़ा सा और करार पहुंचाने के लिए वी हैव द बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती जहां पर दिव्या का साथ है न्यू म्यूजिक टकटकाटक टिल 7 PM. तो चलिए जहां से भी साथ दे रहे होंगे थैंक यू सो मच. वैसे फर्स्ट आवर वॉज क्वाइट फन जहां पर हमें कुछ खूबसूरत गाने सुनने को मिले कुछ आपके मैसेजेस को भी ने शेयर किया और साथ में आपके साथ कुछ गेम्स भी खेले. तो वंस अगेन वी विल बी वेलकमिंग योर मैसेजेस ऑन 5499-1294. तो मौका मत गवाइएगा. जस्ट मेक इट मोर स्पेशल बाय डेडिकेटिंग अ स्पेशल सॉन्ग फॉर समवन वेरी स्पेशल.

0: Music tak tak tak.
1: RM2 Radio Musti.
2: वाओ, सच ए ब्यूटीफुल गाना. शाम के 5:25 एंड यही गाना हमने डेडिकेट किया हुआ था फॉर ऑल द ब्यूटीफुल लेडीज कनेक्टेड विद अस. एंड चलिए यहाँ पर आपके मैसेजेस तो जरूर हम तक पहुँच रहे हैं. राधा जी, आप हैं कनाडा से. थैंक यू फॉर लाइकिंग द शो एंड डेडिकेटिंग द नेक्स्ट ब्यूटीफुल गाना फॉर योर ब्यूटीफुल फैमिली इन कनाडा मॉरिशस. और रेडियो मस्ती टीम लिसनर्स के लिए हर हर महादेव, आपको भी थैंक यू सो मच बहुत ही प्यार से हमारा साथ देने के लिए. साथ में अगला गाना हम डेडिकेट करेंगे एज यूजुअल ज्योति जी फिर शातो बनारस से. नेक्स्ट गाना जाएगा फॉर आशनी, रेखा, सुरेखा, मदब फैमिली के लिए और हमारी टीम के लिए. दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू. और जितने भी सारे लोग इस वक्त हमें सुन रहे हैं प्यार से, और शायद आप थोड़े बिजी होंगे लेकिन शायद आपको मैसेज भेजने का टाइम भी नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, हम समझते हैं. लेकिन बस आप हमारे जहन में, हमारे दिल में, हमारे दिमाग में ऑफकोर्स हैं और हर एक गाना आपके लिए हम डेडिकेट करेंगे जरूर.
0: Music, Dr. Gutter.
1: RM2, Radio Musti.

0: म्यूजिक टक टका टक
1: RM2 रेडियो मस्ती
0: फैशन टिप्स पावर्ड बाय हलकरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स म्यूजिक टक टका टक
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: ऑलराइट एज यूजुअल हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक टिप्स एंड ऑफ कोर्स हम शादी के सीजन के बारे में बात करते रहते हैं तो लेट मी गिव यू वन इम्पोर्टेंट टिप्स जो आजकल बहुत ही ट्रेंड कर रहा है वो है हेयर एक्सेसरीज चाहे आप बन बनाओ या फिर ब्रेड्स बनाओ इसके चलते इतने खूबसूरत हेयर एक्सेसरीज एक्सेसिबल हैं अवेलेबल हैं कि आप जब भी कोई इंडियन आउटफिट पहने ना तो वो उसके साथ बहुत ही एथनिक लगता है तो डेफिनेटली कभी भी आप कहीं पर शादी में जा रही हैं तो डू ट्राई दीज हेयर एक्सेसरीज ये बहुत बहुत ही खूबसूरत लगता है और कभी भी आपने एक बहुत ही सिंपल आउटफिट पहना होगा तो आप अपने इस इंडियन लुक को इस एथनिक लुक को और भी एथनिक बनाने के लिए यू कैन ऑप्ट फॉर झुमका और झुमके के साथ जो ईयर चेन आता है वो भी आप ऑप्ट कर सकते हैं इट लुक्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड क्लासी लेकिन बियर इन माइंड अगर आप हेयर एक्सेसरी डाल रही हैं तो उसमें चेन यानी कि ईयर चेन डालने की ज़रूरत नहीं है वरना ये आउट ऑफ एक्स्ट्रा लग जाएगा तो अगर आप सिंपल रखना चाहते हैं या तो आप दोनों में से एक को ऑप्शन में रखें और इट विल लुक वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी एथनिक
0: Fashion Tips was powered by Halkori Fashion, House of Ready-Made Garments. Music, Tak Tak Tak.
1: RM2, Radio Musti.

0: म्यूजिक टक टक टक
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: ऑलराइट, यहाँ पर बहुत बहुत सारे मैसेजेस आ रही हैं। थैंक यू सो मच। आई नो कि आज एक्स्ट्रा स्पेशल डे है, अभी आप सोच रहे हैं क्यों। एक तो सैटरडे है और एक वो ये है कि शायद वीकेंड में बहुत सारे लोगों का बर्थडे भी है। अभी देखिए ना, कुछ कुछ फैमिली में डबल सेलिब्रेशन होता है, यानी कि एक ही फैमिली में दो दो बर्थडेज भी होते हैं, ऐसा भी होता है। तो चलिए, आपको बहुत बहुत सारा प्यार टू ऑल दोज सेलिब्रेटिंग द बर्थडे टुडे। नमस्ते जी, वेलकम इन माई किचन। किचन में क्या बनाया आपने ये तो बताइए। एंड आप कहते हैं कि आज मैं बहुत ही खुश हूँ, आपके दो ग्रैंड चिल्ड्रन आपके यहाँ आए हुए हैं, सोनाक्षी और रिद्धि, उनके लिए आप आलू की चटनी बना रही हैं, आगे को तूफे और साथ में दाल भी बना रही हैं, रोटी बना रही हैं, ओ माय गॉड, फुया पे भी बना रही हैं, क्या बात है। आप ज़रूर, आपको टाइम मिले ना तो बाद में थोड़ा बहुत खाना पार्सल करा दीजिएगा। अब तो भूख के मारे अभी मेरी जान निकल रही है, कोई बात नहीं। एंड चलिए, सुया बिहारी जी आप है कुंगुमा से, थैंक यू सो मच। नानी

ये चलिए यहाँ पर साथ में नेक्स्ट गाना गोज आउट फॉर बदवक विदेशी ऑफ तायक टू योर लव अनुषा ऑफ मोताबा सभी लिसनर्स के लिए और एमबीसी क्रू के लिए थैंक यू सो मच इट मींस अ लॉट. चलिए आज बहुत ही खास दिन है जैसे हम कह रहे हैं और कुछ कुछ लोग एक्स्ट्रा स्पेशल होते हैं और उनके लिए एक्स्ट्रा स्पेशल डेडिकेशन हम करते हैं. सो वी हैव रियश हमारे साथ. आज आपका बर्थडे है तो हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू लिटिल प्रिंस. आप ज़रूर अपना ये बर्थडे और भी ख़ास बनाइए रेडियो मस्ती के साथ और आपको लोग ग्लॉस के नाम से भी जानते हैं. तो चलिए ग्लॉस वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू एंड विशेज़ कमिंग फ्रॉम अमित नताशा नानी नाना एलिना दीदी और स्पेशली आपकी दा की तरफ से जो आपको बहुत ही प्यार से याद कर रही है. और उन्होंने कहा कि क्योंकि आज मेरे रियश का बर्थडे है वो तो मेरा बेटा है और बेटे के लिए तो ज़रूर हम हैप्पी बर्थडे वाला जिंगल ना चलाएं ये तो पॉसिबल ही नहीं है.

नमस्कार, 6 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। नजर सबसे पहले डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बोबासन रुजिल में नगर पालिका चुनाव की शुरुआत, लुई टुसा ओंद्रे सर्वसम्मति के साथ मेयर चुने गए। सफाई और चिकुनगुनिया पर रोकथाम पर रहेगा ध्यान। कैबिनेट ने विभिन्न नगर पालिकाओं में मेयर और लोर्ड मेयर चुनावों की तारीखें तय की। कैट्रोबोन, पोर्टविवा, क्वाफेनिक्स और क्यूपिप में सोमवार को होगा मतदान। अफ्रीका फॉरवर्ड समिट में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने शांति, ब्लू इकोनॉमी और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर अफ्रीकी सहयोग मजबूत करने पर अपील की है। ये बात कैबिनेट की बैठक में कल नोट की गई। मुकाम में पब्लिक सर्विस एक्सलेंस अवार्ड का आयोजन, मंत्रालयों, अर्ध सरकारी संस्थाओं और डिसिप्लिन फोर्सेस को सम्मानित किया गया। हद से पहले जेद्दा में अहम अंतर्राष्ट्रीय बैठक, मंत्री शकील मोहम्मद ने यात्रियों की सुविधा और इंतजामों पर चर्चा की। कोंगो में एबोला का खतरा बढ़ा, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्थिति को बहुत गंभीर बताया। युगांडा में भी मामले सामने आए हैं। चीन के शांशी प्रांत में कोयला खदान में भीषण गैस विस्फोट, कम से कम 90 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। इस बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। इन सुर्खियों को अब देते हैं विस्तार। नगरपालिका चुनावों की शुरुआत आज बोबासन रुजिल से हुई, जहां लुई टुसा ओंद्रे सर्वसम्मति के साथ मेयर चुने गए हैं। साल 2012-2013 के बाद ये उनका दूसरा कार्यकाल होगा। पूर्व सामाजिक कार्यकर्ता रहे लुई टुसा ओंद्रे का कहना है कि उनकी प्राथमिकता शहर में सफाई की जो समस्या है उससे निपटना और चिकुनगुनिया के बढ़ते मामलों पर भी ध्यान दिया जाएगा। कैबिनेट ने विभिन्न नगर पालिकाओं में लोर्ड मेयर और मेयर के चुनावों की तारीखें तय कर दी हैं। बोबासन रुजिल नगर पालिका में आज चुनाव लगाए गए, जबकि कैट्रोबोन, पोर्टविवा, क्वाफेनिक्स और क्यूपिप नगर पालिकाओं में नए मेयर को चुनने के लिए सोमवार 25 मई को चुनाव आयोजित किए जाने वाले हैं। कैबिनेट ने नैरोबी में आयोजित अफ्रीका फॉरवर्ड समिट में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम की भागीदारी के परिणामों का जायजा लिया। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने शांति और सुरक्षा, ब्लू इकोनॉमी, जलवायु परिवर्तन, समुद्री सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जैसे अहम मुद्दों पर अफ्रीकी देशों के बीच साझेदारी मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस अवसर पर उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल माक्रों, केन्या के राष्ट्रपति विलियम रुटो, संयुक्त राष्ट्र महासचिव समेत कई अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी लगाई। इस बात का जायजा कल कैबिनेट की बैठक में लिया गया। कैबिनेट के कुछ अन्य अहम फैसले कुछ इस प्रकार हैं। कैबिनेट ने देश में मूसलाधार बारिश के दौरान लागू किए जाने वाले राष्ट्रीय प्रोटोकॉल को मंजूरी दे दी है। इसके तहत सरकारी और निजी दफ्तरों, आपातकालीन सेवाओं तथा स्कूल और यूनिवर्सिटियों के लिए एक समान नियम लागू होंगे। नए प्रावधानों में खराब मौसम के दौरान आवाजाही, काम और सुरक्षा को लेकर साफ दिशा निर्देश तय किए गए हैं। कैबिनेट ने साल 2026 के पब्लिक हॉलीडे में बदलाव की बात नोट की। अब गणेश चतुर्थी का पर्व बुधवार 16 सितंबर की जगह मंगलवार 15 सितंबर 2026 को मनाया जाएगा। ये बदलाव मॉरिशस मराठी मंडली फेडरेशन के अनुरोध पर किया गया। कैबिनेट ने पानी की पाइपलाइन बदलने की बड़ी परियोजना की प्रगति का जायजा लिया। भारत सरकार की आर्थिक सहायता से शुरू होने वाली इस काम के तहत घोंबे के श्रमय वैंपिय इलाके में मुख्य पाइप बदली जाएंगी, ताकि उत्तरी क्षेत्र में पानी की आपूर्ति बेहतर हो सके। परियोजना अक्टूबर 2026 से शुरू होगी। कैबिनेट ने मोबाइल फोन पोर्टेबिलिटी परियोजना की प्रगति को मंजूरी दी है। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद लोग अपना मोबाइल नंबर बदले बिना किसी दूसरे टेलीफोन सेवा प्रदाता की सेवा ले पाएंगे। इससे ग्राहकों को अधिक विकल्प मिलेंगे, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और सेवाओं में सुधार आने की उम्मीद है। सरकारी सेवा में उत्कृष्ट कार्य और नवाचार को कल शाम मोका में सम्मानित किया गया। मंत्रालयों, अर्ध सरकारी संस्थाओं और अन्य सेवाओं को एक भव्य समारोह के दौरान पुरस्कृत किया गया। जनता की सेवा में उनके योगदान को सराहते हुए ट्रॉफी, सम्मान और नकद पुरस्कार प्रदान किए गए। रविवार शाम से हज की शुरुआत होने जा रही है और इसी तैयारी के तहत मंत्री शकील मोहम्मद ने सऊदी

0: जबकि जेद्दा में हज से जुड़ी एक अहम अंतर्राष्ट्रीय बैठक में भाग लिया। बैठक में हज के इंतजाम, यात्रियों की सेहत और दूसरी सुविधाओं को लेकर सऊदी अधिकारियों के साथ चर्चा हुई। मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी के इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग सिस्टम से अब तक 1000 से ज्यादा कंपनियां जुड़ी हुई हैं। साल 2024 से चरणबद्ध तरीके से शुरू की गई ये व्यवस्था अब मध्यम स्तर की कंपनियों तक भी बढ़ाई जा रही है। ई इनवॉइसिंग का उद्देश्य कंपनियों की टैक्स व्यवस्था को आधुनिक बनाना, पारदर्शिता बढ़ाना और प्रक्रिया को अधिक तेज और प्रभावी बनाना है। इस देश के आर्थिक सेक्टर में डिजिटल बदलाव की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। सुनिए।
1: कैथरबोन में हमारी मुलाकात सिल्वेन से हुई। उनकी कंपनी इलास्टिक एक स्थानीय सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है जिसे मॉरिशस की कंपनियों को अपने संचालन को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद देने के लिए तैयार किया गया है। पूर्व में देखें तो वेबसाइट, बिक्री, अकाउंटिंग तथा वैट इत्यादि सबके लिए एक प्रणाली थी, जो कि एक ठेकेदार के लिए इनका संचालन करना काफी जटिल हो जाता है। इसलिए इन सभी को आसान बनाते हुए इन्हें एक ही प्लेटफॉर्म पर लाया गया है। ये सॉफ्टवेयर कंपनियों को अपनी बिक्री, स्टॉक खरीद या अकाउंटिंग सहित कई कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण रखने की सुविधा देता है। एक डायरेक्टर होने के नाते इस प्लेटफॉर्म पर आने पर आपको अपने टर्नओवर दिन, सप्ताह और महीने तथा वित्तीय साल के दौरान निकले गए बिल्स और इसके साथ ट्रेंडिंग बिजनेस भी प्राप्त होगा, जिससे कि पता चले कि किस ब्रांच ने अच्छा काम किया है, कैसे ऐसे छोटे मध्यम उद्योग भी हैं जो क्रेडिट पर काम करते हैं। तो यहाँ ऊपर आपको बिल मिला और नीचे आपको कितने पैसे चुकाए गए ये भी मिलेगा। मजूल्स के स्तर पर कई उपलब्ध हैं, जैसे ग्राहक का डैशबोर्ड, सप्लायर आइटम, सेल्स इत्यादि, जो एक वेबसाइट से जोड़ा जा सकता है। ई कॉमर्स के लिए एक अलग पैकेज है। वाकवा में अपने इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की दुकान में युवा शोएब अपने स्टॉक को संभालते हुए बिल्स का भी प्रबंधन कर रहा है। हाल ही में अपने कामकाज को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म उसने अपनाया है। इस नई प्रणाली के माध्यम से हम आसानी से सब कुछ डिजिटल बना पा रहे हैं और प्रक्रियाओं को भी आधुनिक किया जा सकता है। हम अपने अकाउंटिंग, स्टॉक सब का अच्छी तरह से संचालन कर पा रहे हैं। हमें एमओआरए से पत्र मिला है कि सितंबर महीने से हमें इनवॉइसिंग का इस्तेमाल करना होगा। एमओआरए की एक समर्पित टीम इस बदलाव में कंपनियों का साथ दे रही है। ये प्रक्रिया 2024 में चरणबद्ध तरीके से लागू की जा रही है कंपनियों के कारोबार के अनुसार। ये एक डिजिटल प्रणाली है जहां एक कंपनी अपने ग्राहक को एक इनवॉइस निकाल कर दे सकती है। इस इनवॉइस में पाए जाने वाली सभी जानकारियां एमओआरए को प्राप्त होगा और टैक्सेशन के लिए एक क्यूआर कोड मिलता है, जहां जिन कंपनियों का टर्नओवर 100 मिलियन से अधिक है उन्हें 2024 में इस प्रणाली में शामिल होने के लिए सूचित किया गया था, और जिन कंपनियों का टर्नओवर 40 से 80 मिलियन होता है उनके लिए जून तक का
0: हम आपको बता रहे थे कुछ देर पहले कि नगर पालिका चुनाव की शुरुआत आज बूबा सेंट रोजिल से हुई, जहां लुई टूसैन ओंत्रे को सर्वसम्मति के साथ मेयर चुना गया। उनको सुनते हैं।
2: Parce que nous remarquons dans beaucoup la ville, il y a beaucoup de terrains dans des enfants abandonnés, terrains de foot, pas un adjimoun. C'est là que nous travaillons, nous relevons, c'est pour faire ça, ben adjimoun là, ben jeune là, réintéressé, au lieu qu'ils rentrent dans ce problème fléau de la drogue qu'ils ont dit, il y a un problème terrible dans nos pays.
0: फ्रॉम मिलिटेंट प्रोग्रेसिस्ट का कहना है कि सरकार को अर्थव्यवस्था संभालने और लोगों को राहत देने के लिए जल्दी कदम उठाने होंगे। आज सुबह बन में एक प्रेस वार्ता में पुल बिहोशे ने पेट्रोल और डीजल पर टैक्स कम करने और बाजार में एक अधिकार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि आने वाले बजट में इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
3: फ्रॉम मिलिटेंट प्रोग्रेसिस्ट के नेता ने चार

0: कदमों का उल्लेख किया जो उनके मुताबिक सरकार को उठाना चाहिए ताकि मुद्रास्फीति और दामों में बढ़ोतरी का सामना किया जा सके। इनमें प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के अतिरिक्त पदार्थों को जोड़ने और एकाधिकारों तथा कार्टेल्स के खिलाफ समर्थित कदम की कमी शामिल है।
1: Fabriquer localement, les créateurs qui puissent faire des efforts et diminuer les taxes et TVA, les produits pétroliers importés. Et moi, j'espérais que le gouvernement pouvait aller vite à l'occasion de ce budget qui peut venir là. Depuis l'élection, au moins, la dépréciation de la roupie fin stabilisée. Sauf ces derniers jours. Là, malheureusement, il y a une appréciation de la roupie par rapport au dollar. Ils surveillent ça de près. Et la Banque de Maurice vient agir dans toute la mesure du possible pour aider nous de sa côté-là.
0: दूसरी तरफ पॉल बेरांजे ने उम्मीद जाहिर की कि कंपटीशन कमीशन को अधिक हक देने के लिए कानून में सुधार लाए जाने चाहिए। इसके अलावा उन्होंने खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा में तेजी लाने के महत्व पर भी बात की। हाल में अदरिया जीवाल द्वारा बुलाए गए प्रेस सम्मेलन पर भी सवाल किया गया। पॉल बेरांजे ने कहा कि वे और अदरिया जीवाल साथ काम नहीं करते हैं।
2: बजट 2026-2027 की तैयारी के बीच रिफॉर्म पार्टी ने सरकार के सामने चार प्रमुख प्रस्ताव रखे हैं। शनिवार सुबह एबेन के हेनेसी पार्क होटल में आयोजित एक प्रेस सम्मेलन के दौरान महंगाई, चिकुनगुनिया के बढ़ते मामले तथा देश में कानून व्यवस्था और सामाजिक शांति जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की गई।
0: भावी बजट के चलते रिफॉर्म पार्टी के लीडर होशी बादल ने सरकार को चार प्रस्ताव पेश किए ताकि जीवन खर्चों का सामना करने के लिए लोगों को थोड़ी राहत मिल सके।
3: TVA, seuil 3 millions qui vise à regretter parce qu'il perfectait tout le business de Maurice. Le taux hybride électrique, vrai hybride et électrique qui vise à retirer du type pour qu'il pas dépense 50 stécas là, l'eau diesel, l'eau l'essence. Troisièmement, l'eau prix l'essence diesel, l'eau ça bout en plus qui nous veut dire prix augmenté à cause de la guerre, mais pas mettre du type l'eau là, pas mettre TVA, l'eau ça bout qui inaugmenté là. Au moins, frise sa boutte là, revoit sa situation avec cette politique aux pensions qui pas adresse le vrai problème de sustainability.
0: बहुत जल्द रिफॉर्म पार्टी के साथ जुड़े नए लोगों की प्रस्तुति निर्धारित है। इसके अलावा पार्टी ने कहा कि वो भावी ग्राम चुनावों के सिलसिले में तैयारी कर रही है।
2: हम आपको बता रहे थे सुर्खियों में कि रविवार शाम से हज की शुरुआत होने जा रही है और इसी तैयारी के तहत मंत्री शकील मोहम्मद ने सऊदी अरब के जेद्दा में हज से जुड़ी एक अहम अंतर्राष्ट्रीय बैठक में भाग लिया। बैठक में हज के इंतजाम, यात्रियों की सेहत और दूसरी सुविधाओं को लेकर सऊदी अधिकारियों के साथ चर्चाएं हुई।
4: सऊदी अरब जेद्दा में हज के ग्रैंड सिंपोजियम का 50वां संस्करण आयोजित किया गया। इस महत्वपूर्ण बैठक में कई देशों के मंत्रियों जिनमें शकील मोहम्मद भी शामिल थे, प्रतिष्ठित इस्लामी विद्वानों और सऊदी अरब की उच्च हस्तियों ने भाग लिया। इस बैठक के दौरान हज यात्रा के आयोजन पर बात की गई, विशेष रूप से स्वास्थ्य, परिवहन, लॉजिस्टिक्स और हजियों के मार्गदर्शन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। हमने हज मंत्री तौफिक बिन फौजान अल रबिया और डेप्यूटी मिनिस्टर डॉक्टर अब्दुल फताह बिन सुलेमान मशद से मुलाकात की और मॉरिशस तथा सऊदी अरब के बीच पाए जाने वाले द्विपक्षीय संबंधों के चलते ये तय हुआ है कि मॉरिशनों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इन विषयों पर कई कार्यशालाएं भी आयोजित की गई ताकि दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए हज की व्यवस्थाएं और बेहतर बनाया जा सके। मंत्री शकील मोहम्मद ने सऊदी अरब तथा हज और उमरा के उप मंत्री डॉक्टर तौफिक बिन फौजान अल रबिया और डॉक्टर अब्दुल फताह बिन सुलेमान मशद के साथ अलग से मुलाकात की। चर्चाओं में अगले हज यात्रा की तैयारियों पर भी बात की गई, जिसका उद्देश्य बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करना और मॉरिशस के हज यात्रियों को सर्वोत्तम अनुभव प्रदान करना है। इस्लाम के पांचवें स्तंभ हज को अदा करने के लिए 1500 मॉरिशन पहले ही वहां पहुंच चुके हैं, जिसकी शुरुआत रविवार 24 मई से होगी।
2: कोंगो में फैल रहे एबोला को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन

0: ने खतरे का स्तर और बढ़ा दिया है। संगठन का कहना है कि देश के भीतर स्थिति और बहुत गंभीर हो चुकी है। अब तक 750 संदिग्ध मामले और 170 से ज्यादा संदिग्ध मौतें सामने आ चुकी हैं।
1: विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एबोला के खतरे को बहुत ही उच्च करार दिया। एबोला के फैलाव पर काबू पाने के लिए अंतिम संस्कारों के वास्ते एक प्रोटोकॉल लागू किया गया है। 750 संदिग्ध मामले हैं और 177 मौतें दर्ज की जा चुकी हैं। कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में अधिकारियों ने हुक्म दिया कि सिर्फ खास टीमें लाशों को दफन कर सकती हैं। सभी स्वास्थ्य सावधानियों को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक जुटावों में सिर्फ 50 लोगों की भागीदारी की अनुमति दी जा रही है। अभी तक एबोला के लिए कोई टीका या कारगर इलाज नहीं है। कुछ मुल्कों ने एबोला से प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों के लिए पाबंदियां लागू की हैं। मकसद एबोला के संक्रमण पर नियंत्रण पाना है।
0: और भारत में गर्मी अपनी चरम पर है। उत्तर भारत में विशेषकर पारा 48 डिग्री को पार कर चुका है।
1: भारत की गर्मी 45 डिग्री सेल्सियस के पार है। भारत के मौसम भवन ने चेतावनी जारी की कि ये स्थिति बहुत ही गंभीर होने वाली है, खासतौर पर आने वाले 6-7 दिनों तक उत्तर पश्चिम पूर्व और केंद्र में। कई राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दी गई है। अस्पतालों और प्रांतीय प्रशासनों में फौरी हस्तक्षेप के लिए तैयारियां मजीद तेज कर दी गई हैं। इस मौसम गर्मा की वजह से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगाना और गुजरात में गर्म हवाएं और कम पानी है। डॉक्टर हाइड्रेशन पर जोर दे रहे हैं।
2: दिल्ली इज करंटली एक्सपीरियंसिंग हीट वेव वेयर द टेंपरेचर्स गो फ्रॉम 42 टू 43।
1: दिल्ली में तापमान 42 से 45 डिग्री सेल्सियस है और 48 डिग्री सेल्सियस वाली गर्मी महसूस की जा रही है। ऐसी स्थितियों में लोगों को उल्टियां हो सकती हैं, डिहाइड्रेशन भी होता है। इस तरह की हालत को जल्दी इलाज की जरूरत है।
2: दे माइट गेट कंफ्यूज्ड, दे माइट फील डिहाइड्रेटेड, सीवियरली थर्स्टी एंड दे आल्सो माइट have throw they might throw fits or seizures. It's a medical emergency where we have to rapidly cool the patient's temperature.
1: गए 4 दिनों में बिजली नेटवर्क ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। बिजली की बहुत बड़ी मांग है। अधिकारियों ने सावधान रहने की मांग की। 14 सालों में इस मई महीने में दिल्ली में सबसे गर्म रात दर्ज हुई। आने वाले दिनों में पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और दूसरे इलाकों में 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज होगा।
0: अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबरों में ही चीन के शांजी प्रांत में स्थित एक कोयला खदान में हुए भीषण गैस विस्फोट में कम से कम 90 लोगों की जानें गई हैं। यह हादसा शुक्रवार देर रात उस समय हुआ जब खदान के भीतर 250 से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे थे। राहत और बचाव अभियान अब भी जारी, जबकि दुर्घटना के कारणों की जाँच शुरू कर दी गई है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने घायलों के इलाज और बचाव कार्य में कोई कसर न छोड़ने के निर्देश दिए हैं। साथ ही हादसे की गहन जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश भी दे दिए गए हैं। और अब चलिए जानते हैं मौसम का हाल।

चले जानते हैं कि मौसम का हाल कैसा रहेगा रात को और कल सुबह के दौरान। देश भर में मौसम सुहाना रहेगा, बेशक बाद में ऊंचे इलाकों और दक्षिण में कुछ कुछ वर्षा हो सकती है और बादल भी घिरे रहेंगे। शाम को देश भर में मौसम सुहाना रहेगा और धूप खिली रहेगी। हवा दक्षिण की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके दक्षिण पूर्व की दिशा में बढ़ सकती है। तापमान, न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटो पर 16 से 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान साहली इलाकों पर 20 से 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। प्रवाल रेखा के बाद समुद्र खराब रहेगा, खासकर दक्षिण में 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी, इसलिए समुद्र में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। सूर्यास्त 5:48 पर हो गया है, सूर्योदय होगा कल सवेरे 6:35 पर।

0: देश विदेश और मौसम संबंधी जानकारियों के साथ हम पहुंच गए हैं इस बुलेटिन के अंत में। तकनीकी सहायक हमारे साथ रहे यज, उनको हम धन्यवाद देते हैं। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर।
1: Your news on NBC Play, MP3

0: केवल नगर बेलगीव में 57 साल के 57 ईयर्स ओल्ड के श्री धर्मराज भगीरथी की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें आदू के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी कल सुबह के 10 बजे उन्हीं के घर बेलगीव से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्वाइलो ओलिविया की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। मेसोनेट रोड रिविया दिस अंगी में 80 साल के 80 ईयर्स ओल्ड की सुबाया जगनंदन की मृत्यु हो गई है। सुबाया जगनंदन की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थे कल दिन के 11 बजे उनके बेटे जेसन जगनंदन के मकान रिविया दिस अंगी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तायाक की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: This is something

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: Ladies and gentlemen,

0: Music Taktakata.
1: RM2 Radio Musti.
2: Well, फाइनली एक बार फिर से हमारी और आपकी मुलाकात ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती, जहां पर दिव्या का साथ है टिल 7 PM। तो चलिए कुछ और खूबसूरत गीतों के साथ आपके मन को बहलाते रहेंगे एंड आपके मैसेजेस को भी वेलकम करेंगे ऑन 5499-1294। और उम्मीद करते हैं कि इस वक्त यू हैविंग सम चिलैक्स मोमेंट्स, या फिर वीकेंड है तो शायद आप लोग निकल चुके हैं शादियों में जाने के लिए, आज हल्दी है या फिर किसी की शादी है, जो भी आप कर रहे होंगे बस रेडियो मस्ती को एक साथ में इंक्लूड करने के लिए थैंक यू सो मच। चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे एक खूबसूरत गीत की ओर।
0: म्यूजिक टक टकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती।

0: दिल जीता अपने वर्सिटैलिटी से, और इंडियन सिनेमा में आजकल उनका बहुत ही धूम मचा हुआ है, स्पेशली उनके गानों की। एंड चलिए आपको एक बार फिर से याद दिला देते हैं दैट बहुत ही जल्द यू गोना हैव एन एक्स्ट्रा स्पेशल कॉन्सर्ट जो होने वाला है 30th May 2026 को एट SVICC पाए एज फ्रॉम 8 PM। और अगर आप टिकट्स रिजर्व करना चाहते हैं या फिर आपको हम बता देते हैं दैट टिकट्स आर अवेलेबल ऑन एंड रिजर्वेशंस कैन बी मेड थ्रू हॉटलाइन। हॉटलाइन का नंबर है 2146464 ऑन ticketbox.mu। एंड इस कॉन्सर्ट को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है बाय ग्रेविटी जीरो एंड टिकट बॉक्स। तो चलिए डोंट फॉरगेट नोट द डेट, क्योंकि ये डेट एक्स्ट्रा स्पेशल होने वाला है 30th May 2026 एज फ्रॉम 8 PM एट SVICC पाई।
1: Music Taktakata RM2 Radio Musti।
2: आओ एक भीगी हुई सी कहानी सुनाता हूं। जब आसमान से बूंदे नहीं मोहब्बत बरसी थी, बरसात ने ऐसी धुन छेड़ी जिसके लिए जिंदगी सदियों तरसी थी।
3: अरे सुन सुन।
4: यस मां।
3: एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है, ये फोटो देख ले, मुझे तो लड़की बहुत पसंद है।
4: माँ मैं बाद में देख लूंगा, बहुत लेट हो रहा हूँ।
3: अरे सुन सुन, एक बार देख तो ले।

0: Ladies and gentlemen, you are listening to Jungle Beats.
1: RM2, Radio Musti.
2: रेडियो मस्ती के सभी लिसनर्स को संजय की ओर से प्यार भरा नमस्कार आदाब एंड वेरी वेलकम इन रेडियो मस्तीज झंकार बीट्स एवरी सैटरडे की

0: झंकार बीट्स
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: सो आज इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैचेस नहीं खेले जा रहे, सभी के सभी मैचेस कल खेले जाएंगे एंड दैट विल बी द लास्ट डे ऑफ दिस सीजन 2025-2026 फॉर द इंग्लिश प्रीमियर लीग। आज स्पेन में मैचेस खेले जा रहे हैं, इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। सो लेट मी गिव यू द फिक्स्चर्स फॉर टुमारो। ब्राइटन, सबसे पहले तो सभी के सभी मैचेस एक साथ ही खेले जाएंगे एट द सेम टाइम। अर्ली किक ऑफ नहीं होगा, लेट मैच नहीं होगा, सब के सब सेम टाइम 1700 आवर्स। ब्राइटन अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड, बर्नली अगेंस्ट वोल्व्स, वेस्ट हैम स्वागत करेगा लीड्स का, फुलहैम न्यूकासल, नॉटिंघम फॉरेस्ट बोर्नमुथ, लिवरपूल ब्रेंटफोर्ड। ये दो मैचेस काफी महत्वपूर्ण है, आपको बाद में बताएंगे। नॉटिंघम फॉरेस्ट बोर्नमुथ, लिवरपूल ब्रेंटफोर्ड, मैन सिटी एस्टन विला, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, नॉट फॉर सिटी बट मोर सो फॉर एस्टन विला। लेकिन एस्टन विला के लिए भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि इस मैच का नतीजा होगा फॉर बोर्नमुथ। टॉटनहम हॉटस्पर वर्सेस एवर्टन, सनडरलैंड वर्सेस चेल्सी और क्रिस्टल पैलेस वर्सेस आर्सेनल, इन सभी मैचेस का कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। सो वेस्ट हैम खेलेगा अगेंस्ट लीड्स और टॉटनहम हॉटस्पर खेलेगा अगेंस्ट एवर्टन, दोनों विल बी प्लेइंग होम। और इन दोनों के लिए यानी कि टॉटनहम हॉटस्पर और वेस्ट हैम के लिए कल का जो आखिरी मैच है विल बी वेरी इंपॉर्टेंट।

0: Ladies and gentlemen, you are listening to Junga Beats.
1: RM2 Radio Musti.
2: A big hi to all those जो इसमें हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसमें राधा जी के नजर से हमें सुन रही हैं. Enjoying RM2 music. लिखती हैं thank you for the lovely songs. She's a great fan of Bobby Deol. So next song for her and for all those listening to Radio Musti in Canada. साथ ही साथ काजल जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं. हेलो काजल जी, थैंक यू फॉर योर मैसेज.

0: Ladies and gentlemen, you are listening to Junker Beats.
1: RM2, Radio Musty.
2: So, आपकी बार में taking a mathematical turn to explain कि किस तरह से जिस तरह से अभी हैं इन इंग्लिश प्रीमियर लीग आर्सेनल सिटी यूनाइटेड एस्टन विला और लिवरपूल पांचों के पांच और क्वालिफाइड फॉर द चैंपियंस लीग ये तय है एस्टन विला क्योंकि उसने यूरोपा लीग जीता तो ऑलरेडी क्वालिफाइड इरेस्पेक्टिव वो रेलिगेशन जोन में भी होता तब भी क्वालिफाइड हो जाता So for the timing, Aston Villa is on position number 4. 37 matches played, 62 points. With a goal difference of 48-54, yani ke plus 6. Panchi position per Liverpool, 37 matches played, 59 points. A goal difference of plus 10. Aur chhati position per Bournemouth, 37 matches played, 56 points, a goal difference of plus 4. So, 5 teams already qualified for the Champions League. Bournemouth, apne history mein pehli baar ke liye, is going to play European football. Lekin, Bournemouth ke liye, under one condition, Bournemouth next year Champions League mein khel sakta hai agar. अगर ये सभी कंडीशंस सफल होते हैं सो पहला है अगर वे छठे पोजीशन पर आते हैं और एस्टन विला पांचवें पोजीशन पर गिरते हैं अब ये कैसे हो पाएगा हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं

0: Ladies and gentlemen, you are listening to
1: Jhankar Beats.
2: RM2, Radio Musti.
3: So, आज के Jhankar Beats में we are analyzing कि कल क्या हो सकता है concerning कौन कौन सी टीमें चैंपियंस लीग में जाएंगी नेक्स्ट सीजन और कौन सी टीमें यूरोपा लीग में. सो अभी क्वेश्चन मार्क बना हुआ है कि बोर्नमुथ जाएगा चैंपियंस लीग में या नहीं, किस स्थिति में जाएगा. हियर आर द फैक्टर्स, हियर आर द पॉइंट्स टू कंसीडर. अगर कल एस्टन विला की हार होती है, अगर कल एस्टन विला की हार होती है और वो चौथे पोजीशन से पांचवें पोजीशन पर गिर जाती हैं, तो हैविंग वन द यूरोपा कप दे ऑटोमेटिकली क्वालिफाई फॉर द चैंपियंस लीग. अगर वे पांचवें पोजीशन पर आते हैं और लिवरपूल तो देन ऑटोमेटिकली गोज इन फोर्थ पोजीशन, तो विला का जो एक्स्ट्रा यूरोपियन परफॉर्मेंस स्पॉट होता है ड्रॉप्स टू द सिक्स पोजीशन टीम. तब उस स्थिति में बोर्नमुथ विल नॉट प्ले यूरोपा लीग, इट विल प्ले चैंपियंस लीग. अगर कल विला की हार होती है और लिवरपूल की जीत होती है, तो सो इसके लिए फर्स्ट Villa needs to lose to Manchester City, जो बहुत मुमकिन है, and Liverpool needs to beat Brentford, कि ये भी बहुत ही मुमकिन है, जबकि Liverpool home में खेल रहा है, लेकिन not so definite. और साथ ही साथ Bournemouth must need to avoid defeat against Nottingham Forest. So ये सभी conditions अगर भर्ती होते हैं, पूरे होते हैं, then Brentford, then Bournemouth will play Champions League next season.

0: Ladies and gentlemen, you are listening to
1: Chunka Beats.
2: RM2, Radio Musti.
3: चंगार बीच संजय के साथ ऑन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ रेडियो मस्ती. एक ऐसी मैच जिसका कोई एंजू नहीं है कल, लेकिन एंजू सिर्फ ये है कि दोनों टीमें विल बी प्लेइंग इन द फाइनल्स, इन द यूरोपियन कप फाइनल्स. और वो मैच जो कल निर्धारित है विल बी बिटवीन क्रिस्टल पैलेस एंड आर्सेनल. Crystal Palace जो वनसडे को खेल रहा है अगेंस्ट रायो वालेकानो फॉर द फाइनल ऑफ द कॉन्फ्रेंस लीग. और ये मैच रात के 11 बजे शुरू होगा एंड इट विल बी प्लेड एट इन द स्टेडियम ऑफ आरबी लाइप्ज़िग. सो क्रिस्टल पैलेस और नेक्स्ट सैटरडे को रात के 8 बजे will be having the final of the match between Arsenal and PSG for the Champions League final. So, filhal ek European Cup for this season, the Europa League has already come to England. There is a possibility ki aur jo do baki hain wo bhi aa jaye. So, iske liye Crystal Palace need to be on top of its form, aur iske liye Arsenal need to do the perfect hold up. इसे हो सकता है कि tomorrow वाले मैच में दोनों टीमों की ओर से it will be reserve team जो खेलेगी, just to preserve the force of the main teams and to avoid कि कोई खास खिलाड़ी घायल ना हो जाए. So that will be for tomorrow in the match concerning Crystal Palace and Arsenal.

0: Ladies and gentlemen, you are listening to
1: Chunga Beats.
2: RM2, Radio Musti.
3: के साथ में नमस्कार आदाब एंड वेलकम इन द सेकंड आवर ऑफ झंकार बीट्स. फर्स्ट आवर में वी स्पोक लॉन्गली अपॉन द रेडी मेरिट्स की बोर्नमुथ और बोर्नमुथ भी जाएगा इन चैंपियंस लीग और इस पर हमारे दोस्त मिस्टर कमलदीप ने कहा ही वोट्स फॉर बोथ Liverpool and Bournemouth to go into the Champions League. Thank you, Kamaldeep ji, for participating in the program and for listening so attentively to our commentaries. So keep on sending me, dear listeners, up your messages on 549-9294. Thori Der Mein, we're doing a tour d'horizon of the main championships in Europe. And this one going for the fans of Arsenal, 22 saal ke baad champions once again.

0: Ladies and gentlemen, you are listening to
1: Jungle Beats.
2: RM2, Radio Musti.
3: सो आपको ले चलते हैं स्पेन के लालिगा में, जहां पर बार्सिलोना हैज ऑलरेडी बीन प्रोक्लेम्ड चैंपियन। आज

31वां दिन खेला जा रहा है बिटवीन अलावेस एंड रायो वालेकानो बेटिस लेवांटे सेल्टा सेविला एस्पान्योल रियल सोसेदाद रेताफे ओसासुना जिरोन एल्चे मालोका ओवेडो रियल मैड्रिड एथलेटिक और वालेंशिया वर्सेस बार्सिलोना Barcelona, Real Madrid, Villarreal, Atlético Madrid. Already is certain to be playing in the Champions League next season. Jabki Oviedo relegated. Aaj ke matches, so Mallorca, Girona, Levante. Osasuna, Elche, all are within 2 points, 3 points. Mallorca, jo 19 sthan par hai, is on 39 points, aur Elche on 42 points. So we can say that Elche and Osasuna and Levante are within reach of Girona. Girona जो 18वें स्थान पर है, most probably playing the kickoff for the maintenance in Premier Division, जबकि Mallorca and Levante are

0: Ladies and gentlemen, you are listening to Chunga Beats.
1: RM2, Radio Musti.
2: डियर लिसनर्स, जैसे कि हमने आपको पहले बताया था, कल इट विल द फाइनल डे ऑफ द चैंपियंस ऑफ द प्रीमियर लीग सीजन 2025-2026। आज मैचेस नहीं खेले जा रहे हैं। स्पेन की लालीगा में मैचेस खेले जा रहे हैं एंड ऑल विल बी स्टार्टिंग लेटर इन द इवनिंग, जबकि बुंडेसलीगा में मैचेस समाप्त हो चुके हैं। The league is over already. Bayern Munich consecrated once again champion with 89 points. दूसरे स्थान पर Borussia Dortmund और Leipzig तीसरे और चौथे Stuttgart, Hoffenheim पांचवे और Bayer Leverkusen छठे पोजीशन पर qualified for the Europa League. Relegated Hoffenheim और St. Pauli. जबकि 16वीं पोजीशन पर Wolfsburg will be playing in the playoff, relegation playoff. So already all set in the German Bundesliga, जहां पर क्योंकि वहां के पहले चैंपियनशिप में 18 टीमें हैं, तो वहां पर कुछ समय पहले समाप्त हो गया।

0: RM2.
1: Radio Musty feels a musty.
2: आओ एक भीगी हुई सी कहानी सुनाता हूं। जब आसमान से बूंदे नहीं मोहब्बत बरसी थी, बरसात ने ऐसी धुन छेड़ी जिसके लिए जिंदगी सदियों तरसी थी।
3: अरे सुन सुन।
4: यस मां।
3: एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है, ये फोटो देख ले, मुझे तो लड़की बहुत पसंद है।
4: माँ मैं बाद में देख लूंगा, बहुत लेट हो रहा हूँ।
3: अरे सुन सुन, एक बार देख तो ले।

0: Ladies and gentlemen, you are listening to Jhumka Beats.
1: RM2 Radio Musti.
2: अगर ऐसी धुने आपको और सुननी है तो यू नीड टू बी देयर इन द कंसर्ट ऑफ जुबिन दौडियाल ऑन द 30th. यहाँ पर चलते चलते नेक्स्ट सॉन्ग गोइंग फॉर नाशरीन डबल सेलिब्रेशन उनकी है नेक्स्ट 20th को जब ईद उल अदा भी और साथ ही साथ उनकी फैमिली में किसी का जन्मदिन है यानी कि आप ही का जन्मदिन है So, happy birthday to you and Vans and Ashrin. And the next one goes to everyone listening right now. ये है आशा जी की ओर से संदेश for each and every listener जो इस समय RM2 के साथ जुड़े हुए हैं. So, time for me to sign off. Catch you once again tomorrow afternoon as from 2, as from 4. Take care, love you, and bye-bye.

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: North, South,
2: 103.5.
1: East, West,
2: 96.4.
1: Center,
2: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music.
1: Radio Musti.
0: Feel the Musti.
3: चांद जब आए प्यार बरसा।
4: पुराने गाने सिर्फ सुर और अल्फाज नहीं होते,

0: मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: RM2.
1: Radio Musty. Feels a Musty.

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: RM2.
1: Radio Musty feels a musty.

0: RM2.
1: Radio Musty feels a musty.

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: North, South,
2: 103.5.
1: East, West,
2: 96.4.
1: Center,
2: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music.
1: Radio Musti.
0: Feel the Musti.
3: Nile nile ambar par चांद जब आए प्यार बरसा।
4: पुराने गाने सिर्फ सुर और अल्फाज नहीं होते।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।

0: RM2.
1: Radio Musty. Feels a Musty.

0: जो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते